साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

वेलकम बैक आफ्टर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, एंड देन दुनिया के भी किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड, डाउनलोड द ऐप। एंड ऑन दैट नोट, द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

0: नहीं मिली है।
1: ओहो, ते तो सा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback, Williams and Royce Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

Welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

Welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मैं आशा करता हूँ कि इस गाने को आपने काफी पसंद किया होगा. मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. I hope you know that. हमारा ऐप है ना, सो गूगल प्ले नहीं तो ऐप स्टोर पर आप जा सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो ज़रूर जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर हैं तो हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा. एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट है ना, www.sunriseradio.fm. लॉग ऑन कीजिएगा, सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स जो हैं, सब कुछ, सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं हमारे रेडियो के द्वारा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

once again. Welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

What a lovely song. क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 100.6 एफएम और 100.32 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में आप सुन सकते हैं और डीएबी पे आप ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप अटाबी में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस होगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपसे लेकर दो बजे तक आपका साथ रहेगा। अब से लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को एंजॉय किया होगा। हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए गीत पेश किया। तो चलते हैं दोस्तों, इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तो वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपके नाम गीत करेंगे। उसके बाद आप सोच रहे होंगे उसके बाद क्या हुआ कि आप हंस पड़े। वो बात ही हंसी वाली है, क्योंकि क्योंकि जो दूसरी कॉल थी वो अयूब चौहान साहब की थी, और पता है ना आपको, अयूब चौहान साहब जब फ़ोन करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, रो रहा बंदा हो तो भी हंस पड़ता है। इतनी मासूमियत से वो जो है वो बात करते हैं, और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दी जनाब। पहले एक गाना गाया, रंगीला रे पता नहीं क्या, वो गाना सुनना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, आज रंगीला को रहने दो, मस्ताना को जो है वो पेश कर देता हूँ। बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, फिर गाना गा दिया, दैया दैया दैया रे वो लगा दो। मैंने कहा यार कमाल करते हो, मैंने कहा ना कोई और रखा हुआ था क्यों करके। चलिए, क्योंकि अयूब चौहान साहब का दिल तो नहीं तोड़ सकते ना हम लोग, क्योंकि बड़े प्यारे हैं वो माशाल्लाह, और आप उनकी बातें तो हमेशा सुनते रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका दिल तो कभी भी बंदा नहीं तोड़ सकता है। तो कमर्शियल के बाद जो गीत होगा तो अलका याग्निक की आवाज़ में दहिया दहिया रे होगा, और वो अयूब चौहान साहब की पसंद पे उनके तमाम दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं, और मुदस्सर कियानी साहब आप भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन माजी चाहता हूँ मैं आपकी कॉल आप भी लगे रहे कि मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं बातें कर रहा था, जो बातें शुरू की आपकी कॉल आ गई, तो एनीवे आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद अयूब चौहान साहब की पसंद पे गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अय्यूब चौहान साहब की पसंद पे सुना। और अब आसमा बिटिया, आपने भी फरमाइश कर दी, आप भी गीत सुनना चाहती हैं और आपका फेवरेट गीत जो है वो मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ, आप अपनी मम नसरीन के लिए गीत सुनना चाहती हैं, तो आसमा आपकी पसंद का गीत आपके नाम। और उसके बाद भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब मचस्से से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके, और आपके नाम भी गीत करते हैं। और उसके बाद राणा नवीद साहब स्वीडन से आपने फ़ोन किया, आपने भी फरमाइश कर डाली, तो जनाब आपकी पसंद का गीत भी इस गीत के बाद आएगा। और सारे दोस्त अभी आज फरमाइशें कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, कुछ और प्ले करूंगा, आप दोस्त कुछ और सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए आपकी पसंद के लिए तो बैठा हूँ मैं, आपकी खुशी के लिए बैठा हूँ, आप के लिए ही तो बैठा हूँ, तो आप जिस तरह के गीत सुनना चाहें आप ज़रूर फरमाइश कर सकते हैं, अगर हमारे सिस्टम में हुआ तो ज़रूर जो है वो हम आपके लिए प्ले करेंगे। तो चलते हैं, आप दोस्तों के लिए अब ये गाना जो है अब आसमा बिटिया की पसंद पे उनकी इमाम नसरीन के लिए और दीगर तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन रेडियो के निशात को सुन रहे हैं, स्पेशली भाई रुखसार अहमद साहब।

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना और आसमा बिटिया आपकी पसंद पे आपके लिए पेश किया। आप अपनी मम्मी के लिए, नसरीन के लिए सुनना चाहती थी। तो अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। और राणा नवीद साहब, आपने जिस गीत की फरमाइश की वो आपके नाम करते हैं और साइमा जी आपके नाम भी करते हैं और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा की सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। और अभी जो गीत आपने सुना, ये राणा नवीद साहब ने इसकी फरमाइश की थी। अभी पाकिस्तान से चौधरी फयाज साहब, आपका फ़ोन आया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और जनाब आपने तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज किया, सबके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा, तो जनाब आप की जन्म से सभी दोस्तों के नाम करते हैं गीत। और उसके बाद जावेद मीर भाई, आपका भी फ़ोन आया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने सदाबहार पुराने गीत की फरमाइश की, तो आपकी पसंद का गीत इस गीत के बाद जो है वो ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे, तो शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का। और उसके बाद तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया और आपने भी तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहा। और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे, तो चलते हैं सुनते हैं ये प्यार भरा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये प्यार भरा गीत सुना और क्या गीत था यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा और अब दोस्तों चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं, वो बता रही हैं 11:45, यानी के 11:45. इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा सदाबहार गीत जनाब हमारे प्यारे भाई प्यारे दोस्त जनाब जावेद मीर भाई ने इस गीत की फरमाइश की है तो उनके नाम करेंगे और उनके साथ साथ हीरा खान साहब तारिक जुल्फी साहब चौधरी फरियाद साहब और जनाब राणा नवीद साहब भाई रुखसार अहमद साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम मदसर कियानी साहब और अयूब चौहान साहब उनके नाम भी करेंगे और डसवीर से वाजिद भाई आपके नाम भी करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल कमर्शियल के बाद गीत गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है सुनते रहिएगा
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
6: 24 hours a day, Sunrise Radio.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। क्या गीत था, और इसकी जावेद मीर भाई आपने जो है वो फरमाइश की थी, तो आपकी फरमाइश जो है वो पूरी की, और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी जो संडे का प्रोग्राम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहला आवर जो होता है यही जो है डेडिकेशन का होता है, क्योंकि बाकी प्रोग्राम के दो हिस्से जो होंगे 12 से लेकर 2 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स के होंगे, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होंगी, कोई उसमें डेडिकेशन नहीं होगी। तो जनाब चलते हैं, आप एक और कोई प्यारा सा गीत सुनते हैं, और अभी डबल माइंडेड हूँ कि कौन सा गीत प्ले करें, कोई पुराना गीत प्ले करें या कोई जो है वो मीडियम गीत प्ले करें या क्या करें, क्योंकि टाइम जो है वो बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा गीत हो, छोटा सा हो, जो आप दोस्तों के लिए अच्छा हो, आपकी पसंद का हो, और आप उसे एंजॉय करें, क्योंकि डेडिकेशन का ये आखिरी गीत है। चलिए एक गाना जो है वो हम प्ले कर देते हैं, और चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से फिर फ़ोन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो चाहेंगे कि अभी हम उन्हें होल्ड कर लें ताकि अगले आवर में वो जो है वो पहले आ जाए। तो एनीवे काफ़ी टाइम है बीच में, तो देखते हैं क्या होता है, और जो है वो गाना मैंने कोई सोचा नहीं है कि फ़ोन पे लगा रहा दोस्तों से गपशप करता रहा, और ये नहीं सोचा कि कौन सा गाना जो है वो आप दोस्तों के लिए प्ले करें। तो एनीवे गीत तो लंबा है, लेकिन चलिए थोड़ा सा आप इसे इंजॉय कर लें।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और संडे के प्रोग्राम में जो पहला हिस्सा होता है 11 और 12 के दरमियान वही डेडिकेशन का होता है। अब से लेकर आप प्रोग्राम के आखिर तक यानी 2 बजे तक लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई हैं, मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब और ब्रैडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब। तो जनाब ये दो प्यारी हस्तियाँ जो हैं इनसे मुलाकात होती है अब हिट ऑफ द आवर सुनने के बाद। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा और इस गीत को इंजॉय करते रहिएगा।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं बता रही हैं 12:12, यानी कि 12:12, और अब कमर्शियल का टाइम हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, एक मैनचेस्टर से अयूब चौहान साहब और ब्रेडफोर्ड से जनाब हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम जनाब नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद इन दोस्तों से मिलते हैं।
2: 24 hours a day, Sunrise Radio. कुल्लू नफ्सेन मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स

0: मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बारी फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
0: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेफर्न 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: Sunrise Radio.
4: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अब जैसा कि पता है आपको लाइव कॉल का सिलसिला होता है और ये सिलसिला प्रोग्राम के आखिर तक यानी कि दो बजे तक चलता रहेगा। तो कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा था हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, जिनमें हैं मैनचेस्टर से ओल्डम से अयूब चौहान साहब और ब्रैडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में ओल्डम जहाँ हमारे साथ अयूब चौहान साहब जुड़े हुए हैं। अयूब चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ऐसा करें कि नदीम मंसूर साहब को पहले ले जाएं क्योंकि उन्होंने तो गाना ही सुनाना होता है। तो मैं तो
4: आपने कवाली सुनानी है?
5: तो मैं तो बेकार सा आदमी हूँ, निकम्मा।
4: नहीं मैं बेकार निकम्मे ना मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ ना निकम्मा बैठा हूँ ना निकम्मे और बेकार लोगों से मेरा काम है। आप पहले बताइए आप हैं क्या?
5: मैं क्या हूँ? मैं तो सीधा साधा मासूम सा इंसान हूँ।
4: ऐसा बोले ना, ये ना बोले निकम्मा बेकार इस तरह का ना बोला करे ना। आज कोई बात नहीं, आज संडे है और नदीम मंसूर साहब घर है तो वेंसडे को हम इसलिए उन्हें पहले लेते होते हैं क्योंकि वो काम पे होते हैं और उनकी ब्रेक होती है। तो इस वजह से हम उनके ब्रेक के दौरान ही हम इसलिए पहले उन्हें लेते हैं।
5: चलो ठीक है, जैसे आपकी खुशी, क्योंकि हम तो हमेशा आपकी खुशी के दीवाने हैं।
4: इसमें खुशी या ना खुशी वाली कौन सी बात है? सिर्फ खुशी की ये बात है कि आज जो है वो नदीम मंसूर साहब छुट्टी पे हैं, घर में आराम फरमा रहे हैं तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है, घर बैठे हुए हैं।
5: नहीं मैं तो
4: खैर ना, आप तो पता नहीं मुझे क्या करते हैं। काम तो कुछ करते नहीं है, बस विंडो के आगे बैठे रहते हैं, लोगों को ताड़ते रहते हैं कौन किधर से गुजरा और क्या कोई बात कर रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, बस आपका ये काम है। तो वो करते रहना थोड़ी देर के बाद।
5: नहीं आपकी सोच ही गलत है, मैं विंडे के सामने बैठा नहीं हुआ, बेसमेंट
4: खड़े होते हैं। अच्छा खड़े होते हैं आप, बैठते नहीं?
5: बेसमेंट में मैं
4: तो वहाँ भी तो विंडा लगा हुआ है ना, विंडो है ना वहाँ, वहाँ क्यों विंडो नहीं है?
5: लेकिन लोग मुझे नजर नहीं आते ना, दरवाजा खुला हुआ विंडा
4: चौका। तो आज आप फिर इसका मतलब ये हुआ पर मैं ना चाहते हुए भी कहने लगा हूँ क्योंकि आपके काम ऐसे हैं कि भाभी ने आपको बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है।
5: नहीं बंद तो नहीं किया हुआ मैंने, वो पहले था ओपन स्पेस ही तो वहाँ पर मैंने।
4: नहीं मुझे फिर अच्छी वजह बताएं ना कि आप बेसमेंट में क्यों बैठे रहते हैं सारा दिन,
5: ये मुझे
4: जहाँ कहीं आप कोई देख नहीं सकते हैं, कुछ नहीं सकते हैं, दीवारों को देखते हैं।
5: नहीं मुझे सुकून आता ना, आराम आता है। ये आपके
4: ये पहले बार सुना है कि कोई जंदा बेसमेंट में बंद पड़ा है और उसको वहाँ सुकून आ रहा है, क्योंकि वो अगर आप ऊपर कमरे में बैठेंगे जाहिर है फिर भाभी को देखेंगे आप, तो फिर शायद आपको भाभी अच्छी नहीं लगती है आप इस उम्र में।
5: उनको तो मैं रोज ही देखता है
4: तो इसलिए आप बेसमेंट में छुप जाते हैं, नहीं तो इसी वजह से आप बेसमेंट जाके बैठ जाते हैं। खाने के वक्त फिर देखना ही पड़ता है क्यों खाना खाना होता है, आप समझ गया मैं। चलिए आप बेसमेंट में ही रहें, बेसमेंट में ही रहें।
5: आपको आज बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं क्योंकि आप छुट्टी करके आए हैं।
4: अच्छा
5: आप आज तो मैं साहब का मुकाबला नहीं कर सकता, आपने बहुत सी चीजें सोची हुई है क्योंकि जब आप घर में बैठे थे तो छुट्टी कर रहे थे तो आप बस यही चीजें सोचते रहेंगे किससे कैसे बातें करेंगे क्या करेंगे।
4: मैं वो चलिए चलिए वो बात है।

0: बड़ा सोचता रहता है, लेकिन मैं इतना पहुंचा हुआ तो हूं नहीं कि मैं जो है घर में बैठे हुए लोगों को जहन पढ़ूंगा कि फिर अंदाजा कर लूंगा, जब मैं प्रोग्राम करूंगा अयूब चौहान साहब आएंगे मुझे ये कहेंगे मैं आगे से ये कहूंगा, क्या मैं इतना पहुंचा हुआ आपके मुझे पता होता है कि 5 दिन के बाद आप क्या बात करने जा रहे हैं?
1: आप इतने पहुंचे हुए हैं जो 35 साल से यहाँ पर कोर्ट चेयर पर बैठे हुए हैं।
0: इसका मतलब काम का आदमी हूँ ना, इसलिए बचा हुआ हूँ।
1: सीधे मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं।
0: नहीं, पहुंचा हुआ ना, काम का आदमी हूँ। जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे ना, अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो फिर जी
1: डिपेंड है, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी आप कह सकते हैं।
0: तो खुद को बनाना पड़ता है ना अयूब चौहान साहब, इम्पोर्टेंट पर्सन दूसरों को बनाना बताना पड़ता है ना, काम करके बताना पड़ता है। यस, आई एम अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ यू नो दिस टीम।
1: यस सनराइज रेडियो ब्रेडफोर्ड एंड फॉर द पीपल ऑफ द ब्रेडफोर्ड यू आर डूइंग वेरी नाइस जॉब मेकिंग पीपल हैप्पी।
0: क्या बात है, मैं तो कुछ समझा ही नहीं, आप अंग्रेजी मुझे आती नहीं, आपने आपको अभी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी कि आप ने क्या कहा अंग्रेजी में, मुझे बुरा भला कह रहे थे या हमारी कुछ तारीफ कर रहे थे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती मेरे भाई।
1: नहीं, मैं आपकी भला बुरा कैसे कह सकता हूँ,
0: पर बताएं ना आपने मुझे अंग्रेजी में क्या कहा।
1: मैंने ये कहा कि आप वही बात आ जाती है ना, आप बहुत पहुंचे हुए, आप
0: फिर पहुंचे हुए लफ्ज को रहने देना।
1: अच्छा, आप बहुत अच्छे,
0: जब आप फैक्ट्री में काम करते होते थे, जब आप फैक्ट्री में काम करते होते थे, अगर आप अच्छा काम नहीं करते वहाँ तो आपको निकाल देते होते थे, ये पता है ना आपको।
1: हाँ, ये तो पता है।
0: तो जो अगर कोई अच्छा वर्कर होता था, अच्छा काम करता था, जैसे आप अच्छा काम करते थे, आपकी वो बहुत इज्जत करते थे, यही सही है ना?
1: बिल्कुल सही है।
0: तो फिर मैं भी यहाँ यार मजदूरी कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी इज्जत है, 35 साल से टिका हुआ हूँ ना, आपको क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं?
1: नहीं, मुझे कोई
0: ये 35 साल से यहाँ क्यों पड़ा हुआ है,
1: मुझे कोई मरोड़ नहीं पड़ा।
0: तो भाई आपको इस बात का क्यों दुख खाया जा रहा है? जाए
1: मुझे आपको कोई जॉब लेनी नहीं है, ना ही आपसे कोई
0: नहीं, आप ले सकते हैं, आप आए मुझे पता है आप आएंगे तो जरूर मुझे यहाँ से निकलवाएंगे और मेरी जगह बैठ सकेंगे आप, मुझे पता है आप में इतनी काबिलियत है।
1: नहीं, ऐसी कोई
0: तो कब आ रहे हैं आप, तो कब आ रहे हैं भाई?
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी जहाँ पर रिटायरमेंट तक बैठाए रखे, और मेरी दुआ है आपको सेहतियाब रखे अल्लाह ताला। आपकी जो सोच तो खैर अच्छी है, आप मेरे साथ दिल लगी कर रहे हैं, कर लें कोई बात नहीं, जब दुनिया करती है तो आप कर लेंगे तो मेरा
0: नहीं, दिल लगी जो है ना, जो दिल में होते हैं ना वही करते हैं, आम लोग नहीं दिल लगी करते आपसे।
1: जी बस ठीक है, मैं मुझे शायरी सुना दे। इसीलिए मैंने कह रहे पहले कहा था नदीम साहब को ले जाए।
0: वो कोई बात नहीं, वो सब्र वाला आदमी है, और मजे की बात यह है कि नदीम जो है वो इज लाइक माई फैमिली मेम्बर, मैं हमारा आपस में आना जाना है बिल्कुल फैमिली की तरह है, तो इसलिए मुझे डर नहीं है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे।
1: इमरान साहब आएंगे, फिर राणा नवीद साहब आएंगे, पता नहीं और
0: सारे आएंगे, माशाल्लाह साहब सुनाए आप
1: जी। मोहब्बत का कोई पौधा लगाना भी जरूरी है, उसे फिर शक की आंधी से बचाना भी जरूरी है।
0: वाह, बहुत खूब।
1: चलो, आपस में तल्खी और रंजिश हो ही जाती है।
0: वाह,
1: तमाशा क्या जमाने को दिखाना भी जरूरी है।
0: हाय हाय,
1: किसी का नाम कागज पे लिखना और मिटा देना।
0: हाय हाय,
1: एक ऐसे काम पर खुद को लगाना भी जरूरी है।
0: बहुत खूब।
1: फसाने चख्तों के लुत्फ देते हैं मगर तुमको, चिदाई का कोई किस्सा सुनाना भी जरूरी है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: यूं ही उड़ते हुए पंछी मडेरों तक नहीं आते।
0: हाय हाय,
1: मोहब्बत के लिए कुछ दाम व दाना भी जरूरी है।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: कदम तो मिल गए अरशद, मगर ये जहन में रखना, मोहब्बत को मोहब्बत से नबाना भी जरूरी है।
0: वाह, क्या कहने।
1: तो ये तो शायरी थी,
0: बहुत अच्छी,
1: वो अब लतीफे सुना दूं।
0: जी जी,
1: तीन पागल बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा। एक पागल बोला
0: शुक्र है दो नहीं कह दिए।
1: एक पागल बोला मैंने सारी दुनिया खरीद ली है।
0: अच्छा।
1: दूसरा बोला और मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है।
0: हाय हाय।
1: तीसरा बोला मल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है तुम दोनों पागल हो। हाँ। जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम दोनों ने खरीदी कैसे ली।
0: सही है सही
1: सही है ना
0: सही।
1: कंजूस एक नौजवान कंजूस अमीर से जनाब अपनी जनाब अपनी कंपनी का एक कैलेंडर मुझे अनायत करे। कंजूस अमीर आज की तारीख की आज क्या तारीख है। नौजवान जनवरी की 10 तारीख है। कंजूस अमीर जब आपको तारीख याद रहती है तो बस कैलेंडर की क्या जरूरत है।
0: अच्छा सही। अच्छा क्या बात।
1: एक और है एक शख्स छत से गिरकर अपनी दोनों टांगे तोड़ बैठा।
0: ओए होए।
1: उसको देखने के लिए आने वाले एक साहब ने कहा यार मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी दोनों टांगे कैसे किस तरह टूट गई। उस शख्स ने जल कर जवाब दिया छत से गिरकर दिखा लो सब समझ में आ जाएगा।
0: फिर दोहराइए दोहराइए।
1: उसने कहा
0: हाँ।
1: उस शख्स ने जल का जवाब दिया छत से गिर कर दिखा लो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
0: सही, सही सही
1: सही सही है ना
0: सही।
1: तो एक और है।
0: हाँ।
1: एक साहब डॉक्टर के पास चले गए।
0: अच्छा।
1: डॉक्टर साहब ने फीस जब मांगी तो उसने डॉक्टर साहब से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे पास फीस तो नहीं है लेकिन मैं जिंदगी में आपके किसी काम आ जाऊंगा।
0: अच्छा।
1: तो डॉक्टर साहब बोले तुम क्या काम करते हो। है मैं कब्र है खोदता।
0: अच्छा सही।
1: तो ठीक है जब हमारे चौधरी फरियाद साहब को बहुत बड़ा सलाम और चौधरी मुजफ्फर साहब को और भी जितने आपको लिसनर हैं
0: तो बातें। लेकिन एक बंदे का सलाम मैंने उठाया हुआ है जनाब उन्होंने भेजा हुआ है आपको और उन्होंने कहा था कि अयूब चौहान साहब चौधरी फरियाद साहब और जनाब गजाला जबीन बहना आए तो उन्हें मेरा सलाम अर्ज करना तो आप तो आ गए आपको सलाम दे दिया जनाब।
1: वालेकुम सलाम। आज मैंने बातें बहुत करनी थी देखते हैं अब क्या होता है लेकिन कोई बात नहीं।
0: किसके साथ बातें करनी थी आपने।
1: आपके साथ बातें करनी और कौन हम किसी
0: 15 मिनटों से आप लगे हुए मुझसे बातें करते हुए अभी आपका मन भरा नहीं है।
1: नहीं बिल्कुल जब आप इस तरह हमारे दिल में बसते हैं तो कैसे दिल भरेगा।
0: हाय हाय क्या बात है। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब हमारे बहुत ही प्यारे जनाब अयूब चौहान साहब उर्दम से। और दोस्तों वक्त एक बार फिर कमर्शियल का हो चुका है और नदीम मंसूर साहब हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं और आज मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हूं कि इनको बड़ा लंबा जो है वो होल्ड पे रखा हुआ अयूब चौहान साहब से गपशप करते रहे और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब जावेद मीर भाई भी। तो छोटी सी कमर्शियल है यूं गए और यूं वापस आए।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: For your family treat this summer,
5: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
6: Sunrise Radio,
0: Sunrise. जी दोस्तों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए जनाब नदीम मंसूर साहब, माशाल्लाह बड़े सब्र वाले हैं। अभी 29 मिनट्स वो होल्ड पे रहे और अब जावेद मीर भाई भी जुड़ गए हमारे साथ। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन यू, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं जनाब?
7: मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप
0: दुआ चाहिए भाइयों की, माजरत भी चाहता हूं कि आप काफी देर से होल्ड पे हैं और मैं ऐसे ही यू चौहान साहब से गपशप में लगा रहा ना।
7: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: तो जनाब आप क्या लेकर आए हैं आज?
7: वही रूटीन, पहले आपको मैं कुछ मैं सुनाऊंगा।
0: हाय हाय सदके जाऊं,
7: तो फिर नेक्स्ट आवर में अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर पवित्र।
0: ठीक है, मेरा जान, मेरी जान, ठीक है।
7: चलिए, आपकी नजर और सबकी नजर है।
0: थैंक यू।
7: चन्ना जाने आज

सा संग संग वे ओए रैसा संग संग वे वादे तेरे नाल चन्ना रैसा संग

0: भी है।
1: वाह जी, शुक्रिया आपका नदीम मंसूर साहब, इतना प्यारा माया टप्पे सुनाए कि क्या बात है जनाब, बहुत सुकून है। क्या कर रहे हो? हाय हाय, स्पीकर ऑन किया हुआ, क्या किया हुआ नदीम मंसूर?
0: नहीं,
1: सारी वो इतनी बुरी आवाजें आ रही थी मेरे कानों में कि क्या कहने। तो एनीवे बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतना प्यारा, ये ऐसी चीज़ें सुनने को कम मिलती हैं और ये आप ऐसे नई नई चीज़ें लेकर आते हैं और इस दौर में जो है ये चीज़ें सुनने को मिलती नहीं और आप जो है ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल से निकाल के लाते हैं कहीं से और बड़ा मज़ा आता है। पर मज़े की बात यह है कि आप ख़ुद भी लिखते हैं, लेकिन आजकल सुनने में नहीं आया कि आप कहें कि शायद मैं भी दो महीने बाद आया हूँ तो आप कहें कि ये मेरा लिखा हुआ है। तो आप भी लिखते भी बहुत अच्छा हैं और कभी आपने ख़ुद ऐसे टप्पे लिखा करें और सुनाया करें, मज़ा आ जाए। और बड़ा लुत्फ आया, बड़ा सुकून आया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और अगले आवर में आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज के मालिक जनाब नदीम मंसूर साहब, क्या कहने इनके जनाब, क्या कहने इनके। और जनाब अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब एम खान साहब भी। तो चलते हैं ढेर सारी तालियों में जावेद मीर भाई साहब को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी एन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जावेद मीर भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: कैसे हैं मेरे भाई, आप सुनाइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: से ठीक है,
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ ठीक है।
1: अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे। दुआ चाहिए भाइयों की, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है अल्लाह का। जी जी,
2: तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को
1: जी
2: बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जनमियां में शहजाद साहब हैं, गुल सफीना साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं, तौकीर शाह, तारिक भट्टा, आसफ रियासत, अमजद किंग भट्टी में, अबू बेलाई, कामरान शहजाद, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम, परवेज इस्लाम, मुगल सफीउल्ला साहब हैं, खालिद भट्टी, शरफद्दीन भाई हैं, तारिक जुल्फी भाई हैं, शकील साहब हैं, चौधरी महमूद साहब हैं, चौधरी फरियाद, हमीदा साहब हैं, सादिया बहन हैं, गजाला साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, अतीका साहब हैं, अंसर महमूद शाह मामूरी हैं, मेहरमान साहब हैं, चौधरी तारिक और राजी अयूब साहब, शकील साहब, और तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और गीजर भाई और सुमित्रा बहन को नमस्ते
1: जी।
3: जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, लज्जत

कहीं जब सकून न पाएगा, दिल कहीं जब सकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।

तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, जम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार

जाओगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार

0: वाह वाह क्या बात है, मेहदी हसन की आवाज में गाया गया गीत आपने सब सुनने वालों के लिए ये पेश किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गीत, बड़ा भूला बिसरा गीत था, आपने इसकी याद करा दी और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अंदाज में आपने गाया।
1: आपके मेरे ख्याल है सिस्टम में
0: नहीं, नहीं है, नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है।
1: जिंदगी कितनी हसीन है,
0: ये नहीं है। जी जी लेकिन यहाँ नहीं है जी।
1: और क्या नाम है खान साहब जो आए हैं,
0: जी जी
1: मस्किन साहब हैं, क्या नाम है,
0: एम खान साहब,
1: उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब जावेद मीर भाई के लिए, और क्या गीत जावेद मीर भाई ने गुनगुनाया, और जनाब अगले आवर में हमसे मुलाकात होती है और तालियों की गूंज में खुशामदीद वेलकम कहेंगे, जी एनू कहेंगे जनाब एम खान साहब को। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको सब सुनने वालों को एक शेर सिर्फ आपके लिए।
0: जी जी
2: तो गिला शिफा उसमें इसी में ही है सब कुछ।
0: अच्छा जी।
2: सहार का वक्त है लेकिन सहार नहीं होती, सहार का वक्त है लेकिन सहार नहीं होती, अगला मैं फिक्र भूल ही गया हूँ। सहार का वक्त है लेकिन सहार नहीं होती, मैं फिर इंशाल्लाह फिर मतलब ये है कि आपसे जुदाई, आपसे इतना अच्छा बिछड़ कर बड़ी परेशानी और बड़ा दुख रहा,
0: कई बार कभी कभी हो जाता है।
2: अल्लाह ताला जहाँ भी आप रहे हैं अल्लाह सलामती से वापस लाए और पता सलामती बख्शे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत जी आपके जो चंद लफाज है ना हमारे लिए बहुत माना रखते हैं, और आप जो हैं काबिल कदर हैं और हमारे नहायती मोहतरम हैं, और आपने हमारे लिए इतना सोचा इतना कहा, अल्लाह आपको इसका अजर दे और हमेशा आपको खुश रखे।
2: शुक्रिया। अल्लामा इकबाल का इरशाद कलाम इरशाद आप फरमाते हैं।
0: जी जी।
2: इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन।
0: वाह वाह।
2: इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीनो जन।
0: बहुत खूब।
2: बंदा तखमीनो जन करमे किताबी ना बन।
0: क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब।
2: इश्क सरापा हुजूरे इल्म, सरापा हिजाब।
0: बहुत खूब।
2: साहब की पाक बारगाह में हाजिरी देता हूँ।
0: जी जी।
2: मियां साहब इरशाद फरमाते हैं अव्वल ते कुछ शोक ना किसे, अव्वल ते कुछ शोक ना किसे, ओ कौन सुख ना आज सुनदा, जे सुनसी ता किस्सा उतला, ओ कोई ना रमजा पुन दा, लद गे ओहो यार प्यारे, ओ सुखन शनास हमारे,

0: मजलस बह बे सियाने ओ कर कर होश सुमाले एक दे संग वर्ती उल्फत ओ जैने पलियां दे चाले। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब एम खान साहब और उन्होंने अलामा इकबाल की लिखी हुई शायरी भी सुनाई और फिर मियां मामून बख्श का कलाम भी सुनाया। उनका बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई रुखसार अहमद साहब भी, लेकिन क्या है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है, यूं गए और यूं वापस आए।
2: ऋषि's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: My favourite radio station, Sunrise Radio.
7: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो जैसा कि कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब मैनचेस्टर से भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब जुड़े हुए हैं। तो जनाब उनको तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन यू सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। चौधरी रुखसार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं मेरे भाई?
1: मेरे प्यारे भाई आमिर शहजाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात एंड वेरी गुड आफ्टरनून।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड गुड आफ्टरनून सर। जी सर,
1: कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है।
1: माशाल्लाह, इतने तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ। तो हमारी तो आज ईद होगी है ना, क्योंकि आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इतने अरसे बाद आवाज सुनी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए। आपकी फैमिली में, आपके अलयाल में, संगत साथ में अल्लाह ताला हमेशा खैर और फ़ियत अता फरमाए।
0: आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और आपके अहले अयाल को भी सलामत रखे और लंबी उम्र दे और सेहत वाली दे, किसी का मोहताज न करे।
1: अल्लाह मेरा आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहत है और आपकी माशाल्लाह इतनी बेलोस खिदमत है, जो माशाल्लाह आप इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतनी उल्फत से हमारे जैसे जो है ना आम से बंदे को भी आप माशाल्लाह इतना प्यार देते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते कि हम किस अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें।
0: नहीं सर, आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो हैं यहाँ हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, आप दोस्तों की वजह से, आप लोगों की वजह से हमारी रोजी रोटी लगी हुई है, आप दोस्तों की वजह से। तो आप दोस्तों का शुक्रिया। आप इतने प्यारे सुनने वाले ना हों, प्यार करने वाले ना हों, तो जनाब फिर चौधरी रुखसार अहमद साहब हमें यहाँ कौन रखे और कौन हमें जनाब इतनी जो है वैल्यू दे। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए मेरी जान, क्या कहना, कोई शायरी करना चाहेंगे?
1: जी मैं सबसे पहले तो अगर आपकी जात तो सलाम कर लूं तमाम साहब।
0: जी जी जरूर जरूर जरूर।
1: सैम भैया मेरे बाद कोई हस्ती है?
0: है सही है, महबूब अल्लाह साहब होल्ड पे हैं, लेकिन आप आराम से बात कर लें, कोई बात नहीं।
1: अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज के मालिक हैं।
0: हाय क्या बात है, क्या बात।
1: मैं क्योंकि वो कहती है ना कि मैं उनके और आपके और माशाल्लाह आपके खूबसूरत सामीन के दरमियान ज्यादा हल भी नहीं होना चाहता। तो सबसे पहले माशाल्लाह साहिबान अकल, साहिबान दानिश, इतने खूबसूरत सुनने वाले आपके हैं, इनकी समातों के क्या ही कहने। तो मैं सबसे पहले में सलाम पेश करता हूँ। और माशाल्लाह हमारे चैंपियन हैं, खान परवेज साहब हैं, उस्ताद मोहतरम शकील साहब हैं, अभी हम खान साहब आए थे, चौधरी फयाज साहब हैं, जनाब मोहतरम महबूब लाई जो लहर में लगे हुए हैं, माशाल्लाह वो तो मेरे साथ नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन राणा नवीद साहब हैं, वाजिद भाई हैं, जवेद मीर साहब हैं, जंगीर भाई हैं और मोहतरम काशिफ भाई हैं, कामरान भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, आपकी गजा जबीर साहब हैं, आपकी अतीका जी हैं, अतीबा आपकी हैं, आपकी शनाज मंसूर साहब हैं, मेरा जी हैं, आपकी नईद हैं, मोहतरमा सैम जी हैं, कंवल जी हैं और जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो हमारी माएँ, हमारी बहनें जो इस वक्त किचन में काम कर रही हैं और माशाल्लाह आपके रेडियो की खूबसूरत आवाज़ सुन रही हैं, तो सभी को मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, अकीदत भरा, नहायत अदब एहतराम से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम जी।
1: तो सर ये पंजाबी की एक शायरी है, अगर
0: जी जी जरूर जरूर जरूर सर।
1: बहुत शुक्रिया सर। शेर लिखता है, अख खोली ते दुखां दे जाल वेखे,
0: ओए होए होए होए,
1: उत्तू हंडदे जिंदड़ी नाल वेखे।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया। एक दिन सी हिजर दा साल वरगा,
0: वाह
1: असी दिन नहीं सालां दे साल वेखे।
0: हाय हाय हाय क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया। तू कीड़े दे रिजक दी सोच रब्बा,
0: आह
1: तू कीड़े दे रिजक दी सोच रब्बा, असी भुख तू विकदे बाल वेखे।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: असी वेख्या लहू दा रंग चिट्टा,
0: होए होए,
1: असी फूल कपावां दे लाल वेखे।
0: होए होए होए क्या बात है, क्या बात है चोई साहब।
1: बहुत शुक्रिया। मैं नचिया जग दे सुख पारू
0: ओए होए
1: साध बुल्ले नु मेरी तमाल वेखे
0: ओए होए क्या बात है।
1: आखिरी शेर जनाब आपकी समाप्त की नजर करना
0: चाहता हूँ।
1: इस चले करीम नु रोक दिला
0: वाह
1: इस चले करीम नु रोक दिला उनु आख वेले जी चाल वेखे
0: हाय हाय क्या बात क्या बात। कलेजे कलेजे मुठ पा दी जे कोई कहते कलेजे कट लिया जे कोई की कहना बड़ा जड़ी जड़ी भी मुहावरे बने ने उस कलेजे से सारो समझो ये तुम्हारे तो पूरे उतरते ने जनाब
1: सही फरमा रहे हैं आप।
0: बहुत अच्छी शायरी
1: सलामत रखे और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ है और उस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि आप भी मुझे अपने नेक दुआओं में याद रखें।
0: थैंक यू सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब चौधरी रुखसार साहब माचस्टर से ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब और तालियों की गूंज में ही खुश आमदीद वेलकम जी एन ओ सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब महबूब अलाई साहब को बड़े दिनों के बाद इनकी भी प्यारी सुरीली मीठी आवाज़ सुनेंगे तो महबूब अलाई साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी हजूर फरमाइए कैसे हैं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह का आप कैसे हैं। ठीक है
0: दुआ चाहिए भाइयों की। आज क्या लेकर आए शायरी या गाना।
2: नहीं शायरी है अभी।
0: अच्छा गाने का मूड नहीं है।
2: नहीं गाड़ी अभी खड़ी की है।
0: कोई अगले आवर में मूड हो सकता है
2: देखेंगे अगर मिला तो।
0: चलिए जरूर
2: मैं काम पर भी होना साथ।
0: हाँ हाँ अच्छा क्या बात रोजी पहले
2: जी तो चौधरी साहब को सुना एम खान को बाइजल अमीर साहब सभी को सुना और बहुत अच्छा लगा और बड़ी देर बाद आपके साथ बात हुई।
0: थैंक यू सर
2: आपको तंदुरुस्ती से दे
0: आमीन सर आपको भी आपको
2: तो ये शायरी है सब साथियों के नाम करना चाहेंगे चौधरी मुजफ्फर हैं चौधरी फरियाद चौधरी जुलक्सार हैं और तारिक जुल्फी हैं महमूद सुल्तान कराची वाले हैं भाई तोहान साहब आए और आसफ रियासत हैं जवेद मीर हैं पापा शफीक अनवीद भाई हैं मंसूर भाई हैं
0: जी जी
2: और हमीदा जी गजाला जी और बाकी जितने भी सब और आपके नाम शायरी लिखते हैं
0: जी।
2: मुझे कहना है तुमसे ये कि तुम बिना नहीं सकते।
0: वाह वाह
2: थैंक यू। मुझे कहना है तुमसे ये कि तुम बिन रह नहीं सकते ना सो सकता हूँ एक लम्हा कि तुम बिन जी नहीं सकता।
0: वाह बहुत खूब।
2: ना सो सकता हूँ एक लम्हा कि तुम बिन जी नहीं सकता।
0: वाह।
2: नहीं है चाहे दिन कोई न रातें भी सुहानी है।
0: हाय हाय।
2: नहीं है चाहे दिन कोई न रातें भी सुहानी है तेरे बिन हाँ ये लगता है कि सांसें आनी जानी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब।
2: तेरे बिन हाँ ये लगता है कि सांसें आनी जानी है। मुझे कहना है तुमसे ये कि मेरी जान तुम ही तुम हो।
0: वाह।
2: मुझे कहना है तुमसे ये कि मेरी जान तुम ही तुम हो कि मैं तो हूँ फकत मिट्टी मेरी रूह रवा तुम हो।
0: वाह वाह बहुत खूब।
2: कि मैं तो हूँ फकत मिट्टी मेरी रूह रवा तुम हो। तुम्हें कैसे बताऊं मैं दिलों में क्या गुजरती है। तुम्हें कैसे बताऊं दिलों पे क्या गुजरती है। तड़पता है ये दिल मेरा के सांसें भी मचलती हैं। तड़पता है ये दिल मेरा के सांसें भी मचलती हैं। मगर ये दिल तो नादा है समझता ही नहीं कुछ भी।
0: वाह वाह वाह।
2: मगर ये दिल तो नादा है समझता ही नहीं कुछ भी। किस दिल में तुम ही तुम हो मुझे कहना है तुमसे ये।
0: वाह क्या बात।
2: कि इस दिल में तुम ही तुम हो मुझे कहना है तुमसे ये।
0: हाय हाय क्या बात।
2: के लिए इतने
0: बहुत खूब और ये आपकी शायरी सुन के ना मुझे गाना याद आ गया जो हमारे सिस्टम में नहीं है।
2: अच्छा
0: वो सुना होगा आपने तुम ही तुम हो मेरी निगाहों में तुमको मांगा है दुआओं में दिल से आती है सदा तुम ही हो प्यार मेरा रब ने भेजा है मुझे। ये बहुत अच्छा गीत है वो मुझे याद आ गया उसकी याद आ गई लेकिन हमारे सिस्टम में होता तो मैं आपके लिए जरूर प्ले करता। बहुत ही प्यारा गीत था और बहुत प्यारी शायरी आपने की बहुत अच्छा लगा। आप एक तो आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है महबूब अल्लाई साहब और जब आवाज़ प्यारी हो तो साथ में प्यारी शायरी हो हाय हाय हाय हाय फिर तो जनाब वो ईरा साहब कहते होते हैं ना मुझे पहले पहले कहते होते थे कोई गाना अच्छा लगा दूँ ना तो वो फ़ोन करके वैसे तो उर्दू में बात करते होते थे लेकिन जब कोई गाना ऐसा सुनते थे कि मैंने ऐसा लगाया उनको अच्छा लगा, तो आते ही जब मैं फोन उठाऊं तो आगे से सीधी ऐसी आवाज आती थी, हाय अमर साहब, ओ आज कोई छड़े ना, आज कोई छड़े क्यों साहब आपका जनाब, पर जब आवाज खूबसूरत हो, प्यारी हो, ऊपर से प्यारी शायरी हो, तो जनाब वो बात हो जाती है जनाब। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, ये थे जनाब महबूब अलाई साहब। और दोस्तों इसके साथ ही हमें वक्त बता रहा है कि अब कोई कॉल नहीं होगी क्योंकि खबरों का वक्त हो गया है, तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं खबरें, मिलते हैं खबरों के उस पार।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 1, Israel has rejected Donald Trump's 15-point peace plan for Gaza. Prime Minister Benjamin Netanyahu says it won't withdraw from the enclave until Hamas fully disarms. Last month, the US president announced there had been a breakthrough in his proposal to end the war. Andy Burnham will be asking the public how he can help them when he kicks off a national tour tomorrow. Downing Street officials say the Prime Minister will be in listening mode and plans to spend most of this month meeting people as he travels the country. But our political correspondent Rob Powell says there'll be some awkward questions.
5: When are we going to hear detail about how to tackle the root causes of the cost of living crisis? In its clever politics of coming in and striking a more hopeful tone, but at some point he will have to turn his eye to the huge, difficult trade-offs, and that's maybe what we haven't had so far.
4: Political opponents have criticised the Prime Minister's plan as breathtaking hypocrisy. FIFA's criticising what it describes as an ongoing effort to undermine its president, Gianni Infantino. There are claims that UEFA paid off an alleged mistress, which he denies. A heatwave record set in 1995 could be equal today. We're one day off the 34 days recorded more than three decades ago when temperatures went above 30 degrees Celsius somewhere in the UK. Sport now, and assistant manager Sean Maloney will take charge of Celtic as Martin O'Neill recuperates from a small hospital procedure. The Scottish Premiership champions take on Kilmarnock at Rugby Park later this hour. Maloney says he'll be missed.
6: The impact that he's had over, since October? Yeah, it's been nothing short of incredible, really, the things that he does with the players and the staff. So we will miss him, but we'll be prepared.
4: There are three other Scottish Premiership games this afternoon, including Rangers at home to Hibs. And finally, Whitney Houston joined stars included David Bowie and Diana Ross in having a Barbie doll made. It replicates the late singer's look from the video for her 1987 hit, I Wanna Dance With Somebody. That's the latest. I'm Chris Milligan.
7: My favourite radio station, Sunrise Radio.
8: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनडे रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी कि जनाब ये प्रोग्राम का आखिरी आवर जो है, इसमें अगर मुझे कुछ मौका मिला तो आपके लिए ज़रूर प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करूँगा। और हमारे साथ जो दोस्त आना चाहते हैं ज़रूर आइएगा। सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स हैं जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं जनाब ब्रेडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब। तो जनाब अब हिट ऑफ द आवर सुनेंगे और हिट ऑफ द आवर के बाद नदीम मंसूर साहब को सुनेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट अवधावर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, और कमर्शियल के बाद नदीम मंसूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जनाब कुछ सुनेंगे और पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:12, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट वन। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। माजे चाहते हैं, गीत ज़रूर सुनेंगे लेकिन नदीम मंसूर साहब से। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल।
2: नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.

0: साहबा जो है इस लाइन पे मौजूद हैं, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन।
1: जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं जनाब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए आप कैसे हैं?
0: दुआ चाहिए भाइयों की, मजे कर रहे हैं, मजे मजे की बातें सुन रहे हैं, मजे मजे के गाने सुन रहे हैं, और क्या चाहिए जनाब?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है
0: जी।
1: तो अभी मोहम्मद रफी साहब का गीत है।
0: जी जी जरूर,
1: तो वो आपकी नजर हो, सबकी नजर करता हूँ।
0: जी शुक्रिया।
1: कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, हाय बहुत

0: तो नाजुक सी लड़की।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है नदीम मंसूर भाई, क्या बात है, बड़ा प्यारा गीत है रफ़ी साहब का आपने गुनगुनाया, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मज़ा आया, यकीन मानिए। और ये गाना हमारे सिस्टम में है, अगर गुंजाइश मिली तो ज़रूर आपकी जानिब से सब सुनने वालों के नाम भी करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप आए और प्रोग्राम को रौनक बख्शी, पहले आवर में भी और इस आवर में भी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे जनाब नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए, और तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी अनुसत बिस्मिल्ला कहेंगे जनाब हमारे चौधरी फरियाद साहब को। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह जी करा
1: बिस्मिल्लाह करा आज घाटा पै गया जनाब सानू तुसी जनाब पिछले आवर ही गायब थे इस आवर च ओ तुसी फोन कीता जदू मैं उन्हूं होल्ड करन लगा मैं गल्लां कर रहा सीगा आन रेडियो ते ते जदू मैं होल्ड करन लगा ते तुहाडी लाइन ओ कट गई ते मुड़ के फिर
0: मैं दो बार कीता फोन मैं आया हुण तुसा कोई मसरूफ होई गयो
1: अच्छा
0: फिर आने उन्हें ना किस बार क्या बाने उन्हें ना करे
1: जी सजनो तुहाडे कोलो सुनना चाहुंदे आ क्योंकि बड़ा गैप पिया असीं नहीं सुनिया तुहाडे कोलो कुछ मोहताज ना करे दुआ कर दे जनाब ते अल्लाह बहुत बेहतर करेगा जी
0: जनाब सब तू पहले
2: चौधरी मुसफर साहब ने चौधरी संगी और चौधरी मालिक साहब ने चौधरी नुसार साहब अहम खान साहब नदीम मंसूर साहब नजम खान साहब नजरकमैन और जेडे शहजादे सिकंदर अली ते बिशारत अली दारफ अली और अतिका बाजी ने नशीन जी ने रजाला बाजी ने सीमा जी सबा की मेरा बहुत बहुत सलाम
1: जी वालेकुम सलाम जी
2: लिखने ने के रोशन प्यार दी विच दुनिया
1: वाह वाह
2: रोशन प्यार दी विच दुनिया मेरे वास्ते सदा अंधेरे होई गए
1: होए होए
2: ओया मुद्दता विछड़िया यार नालो बुरे याद फराक विच मेरे
1: वाह वाह क्या बात है
2: ओया मुद्दता विछड़िया यार नालो बुरे याद फराक विच मेरे होई गए
1: होए होए
2: अरे अरे जदी रात अंदर बार पता नहीं कितने सवेरे
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात है
2: रब दे तारियां कोलो जमुर्द वध के ओ मेरे दिलिया ने दर्द गलेरे होई
1: होए होए क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब
2: अच्छा फिर ना कर दे जिने आवना तो ना कर दे जिने आवना तो क्यों नित नवे थी नवा सन यार दसना है कदे लारा महीने दा ला देवे कदे हफ्ता ते कदे दिन चार दसना है
1: हां क्या बात
2: अल्लाह वास्ते चक्कर चला नहीं सची दस ते जड़ी एक बार दसना है केड़े रोज दी आस जमुर्द करा अर्ज मुर्द रखा कदे बार दसना है कदे चार दस
1: क्या बात है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब
2: अच्छा फिर मन्ना ता जे मेरे नजदीक आवे
1: हाय हाय
2: मन्ना ता जे मेरे नजदीक आवे दूरों बाद के उसने चराग दसना है मेरे रात से पर्दे परेल तेरे सूरत ग्यारह नो पागल सूरत ग्यारह नो पागल दिमाग दसना है
1: वाह वाह क्या बात
2: अखा नाल वेखा औरा नाल फिरदा अखा नाल वेखा औरा नाल फिरदा फिर भी साबित हो के बेदाग दसना है
1: यदि
2: तम जी पासे जबुद या के मैं रोज मैंने सबद बाग दसना है
1: वाह जी वाह क्या बात है
2: अच्छा खैर साकिया बर बर पनाए सबनो साकिया सबनो बर बर पनाए सबनो मैंने एक खुट पीन थी बंद करना है मेरी आरजू भी ना गवार तेनु कल लोकां दी बड़ी गल लोकां दी बड़ी पसंद करना है
1: वाह वाह बहुत खूब
2: वफादारी नो जेर थी जेर करके वफादारा नो जेर थी जेर करके बेवफा दी गुड्डी बुलंद करना है जे तू आना नहीं आंदा जमुर्द चांगी है मैं रोज क्यों मेनू को बंद करना है
1: वाह वाह क्या बात है बहुत खूब
2: मेहरबानी आख्या हां भी कर हां भी यार कर छोड़ हां भी यार कर छोड़ किधरे मुड़ ना वाले पासे जोर करना है आख्या मरम वसल दे जख्म ते लान बंदे उल्टे होर कलेजे विच मोर करना है
1: वाह
2: मैं नित खैर मंगा तू नित छिड़क देंदा तेरी मेहनत उते तू मेरी मेहनत उते ना तू गौर करना है हो के इतना सियाना जमुर्द आपे मैं कुछ और आखा दे तू कुछ और करना है
1: क्या बात है क्या बात है बहुत खूब
2: अच्छा आखिरी शेर भूल जा
1: जी।
2: तुम भी ख्याल उस दे भूल जा तुम भी ख्याल उस दे और यादा तेरिया जिसने मुड़ आईया ही नहीं उस बेदर्द की करनी वफा किधरे कदना के रिका विच पाईया ही नहीं बेरी जिया नु कौन तस्लीम करदा जिस मुड़ नजरा नसंग नजरा मलाईया ही नहीं
1: बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: अपने आसिफ भाई ने मेरा सलाम भेजे
1: जनाब स्पेशल सलाम तुहानू वाजिद भाई ने भेजे होया है
2: वालेकुम सलाम मेरा वाजिद भाई ने मेरा भी सलाम भेजे
1: ठीक है सर जरूर जरूर बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी अपना बहुत सा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज ये थे हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी फरियाद साहब और क्या शायरी इन्होंने की ढेर सारी तालियां उनके लिए और अब एक बार फिर तालियां वालों शुरू हो जाओ क्योंकि राणा नवीद साहब आ रहे हैं जनाब राणा नवीद साहब स्वीडन से ढेर सारी तालियां उनके लिए राणा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
3: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू
1: जी सजनो
3: ओए सजन ते किते होरी गवाचे सण
1: क्यों की होया किधर गए सो
3: सजना नु तुसी जगाता
1: क्यों अच्छा सुते पे सी
3: सुते सी सजन सुते सण किते होर
1: होल्ड का अच्छा फोन करके मैं होल्ड ते रखया तुसी सो गए क्या बात
3: मैं क्या भरा मेरा भूल गया ते मैं को अपने
1: नहीं ओ जिस टाइम ते चौधरी फरियाद साहब आए ने ना उसे टाइम तुसी फोन किया है इस वास्ते उन्होंने कॉल नहीं हुई सी ते फिर तुहाडी जनाब होल्ड की थी तो चौधरी साहब ने अपनी शायरी की थी है उन्होंने शायरी सुनी है बड़ा दिल सी उन्होंने को मैं मजीद सुनदा अगर तुसी होल्ड ते ना होंदे तो
3: ओ सर जी चौधरी साहब ने मौका दिया करो पूरा
1: यार तो तुसी अगे ही सुते पे सी ए ना होया के ओ कितने उधर टूट जांदे फिर की करदा
3: ओ क्या कहता है कि ओ शेर याद आ गया कि नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ सकती है
1: तो नींद सूली ते भी आ जाती है सर नींद दा की है
3: तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं
1: है
3: ना
1: जी
3: कुछ यार दोस्त थोड़े मेरे भरा मिल जाते हैं वो गल मेरी बात कितने हो रही थी ते मसूर नु सलाम भी मेरा ते कनाडा तो मेरे गल हो रही थी बहुत ही प्यारा बंदा ओनू भी सलाम ते तुहाडा मैं रेडियो का भी पैगाम दिता गया सुनया कर यार
1: अच्छा जी
3: ते तुहाडी नजर करा
1: जी जरूर जरूर
3: पहले सलाम सारे नु चौधरी साहब नु चौधरी फयाज साहब नदीम मसूर भाई महबूब राई भाई सारे हुन मैं लिस्ट केड़ी दुरामा
1: सही है सही
3: उन्हें क्या अकेले चले आओ जहां हो अकेले हैं

0: चले जहां हूं। बाकी का गीत आप ही सुन ले सर।
1: ठीक है, रफी साहब का गाना। बिल्कुल रफी साहब का गाना है, गाना साढ़े सिस्टम में चाहे
0: ये हूं तुम्हें सुना देना।
1: हाँ जरूर सुना दे।
0: हाँ, जरूरत है किसी भी ख्वाब की तामीर से पहले।
1: हाँ हाँ, क्या बात है।
0: बना लो जहन में नक्शा कोई तामीर से पहले।
1: वाह बहुत खूब।
0: बना लो जहन में नक्शा कोई तामीर से पहले।
1: वाह।
0: अजल से आशना है दिल तेरे जलवों से है हमदम।
1: क्या बात है।
0: तसव्वुर में तेरी तस्वीर थी तस्वीर से पहले।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: अमन भाई। तसव्वुर में तेरी तस्वीर थी तस्वीर से पहले। और बड़ी कोशिश करे इंसान कुछ हासिल नहीं होता।
1: वाह क्या बात है।
0: मिला है वक्त से पहले ना कुछ तकदीर से पहले।
1: वाह वाह।
0: हाय हाय हाय। मिला है वक्त से पहले ना कुछ तकदीर से पहले।
1: वाह बहुत खूब।
0: और नशे मन बर्क की जद पर बनाना चाहता हूँ मैं। नशे मन बर्क की जद पर बनाना चाहता हूँ मैं। तसलसल है मेरा कायम हर एक तामीर से पहले।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: सुनिएगा बात।
1: जी जी जरूर।
0: ना दो जहमत मेरे महबूब नाजुक हाथ को अपने।
1: हाय हाय हाय
0: हाय हाय।
1: आयु चौहान साहब जनाब दैन लग पे ने मिस काला के तारीफ कर रहे होने ना तुम्हारी सुन रहे होने।
0: बड़ी मेरे आयु बड़ा प्यारा बंदा।
1: हाँ
0: ना दो रुख ना दो जहमत मेरे महबूब नाजुक हाथ को अपने।
1: हाँ हाँ।
0: मैं जख्मी हूँ अदाए नाज की शमशीर से पहले।
1: वाह
0: आए हाय। और यहाँ डूबी हुई जहाँ डूबी हुई थी आदमियत गुप अंधेरे में।
1: वाह बहुत खूब।
0: यहाँ डूबी हुई थी आदमियत
1: गुप अंधेरे में।
0: अंधेरे में जहालत का अंधेरा था तेरी तनवीर से पहले।
1: क्या बात क्या बात।
0: आए हाय हाय। और किसी के नक्शे पा को हम बना लें रहनुमा अपना। किसी के नक्शे पा को हम बना लें रहनुमा अपना। कोई गालिब ना हो पाया जानिब मीर से पहले।
1: बहुत खूब।
0: कोई गालिब ना हो बड़ी शायरों के नाम शेर है कि कोई गालिब ना हो पाया जनाबे मीर से पहले।
1: वाह।
0: और जुबान शाज पर आता है तेरा नाम है खालिक। हाय अल्लाह अकबर। जुबान शाज पर आता है तेरा नाम है खालिक। हर एक आगाज से पहले हर एक तहरीर से पहले।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: तो अब क्या बात करूं, इंतखाब तो मेरे पास और भी था। मैं चाहता हूं किसी और को मौका मिले। तो आमिर भाई बहुत मेहरबानी।
1: बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी।
0: तवज्जो से इतना प्यार मिलता है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब राणा नवीद साहब स्वीडन से। और क्या गीत भी इन्होंने गुनगुनाया रफ़ी साहब का। और क्या बहुत ही प्यारी शायरी भी इन्होंने की। और इसके साथ ही वक्त जो है वो बता रहा है हमें कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। और कमर्शियल के बाद अगर कोई ना आया तो जो नदीम मंसूर साहब ने रफ़ी साहब का गीत गुनगुनाया था वो आप सभी दोस्तों की नज़र करेंगे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, लाइव कॉल का सिलसिला है और इसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो चलते हैं तालियों की गूंज में। जनाब रोचडेल जहां हमारी प्यारी बहना गजाला जबीन साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। गजाला जबीन बहना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसी है मेरी बहना, कैसी है आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई की आवाज गूंज रही है।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहनों को हमेशा भाई अच्छे ही लगते हैं और उनके लिए दुआ गो रहती हैं, तो आप बहनों की दुआ हो हमें तो फिर क्या हो सकता है।
1: बस हम दुआएं कर सकते हैं भाइयों के लिए, अल्लाह पाक ने सदा सलामत रखे।
0: आमीन,
1: हमारे सरों पे सलामत,
0: आमीन, आपको भी
1: आमीन। और भाई, बस मैंने कहा कि टाइम है थोड़ा सा, चलो हम भी हाजिरी लगाए
0: आपके लिए। बहुत सारा, ढेर सारा टाइम है बहना, थोड़ा सा किधर से,
1: ये ना हो गैर हाजरियां लग लग के नाम कट जाए।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदे को अपना कोई बार प्रॉब्लम होता है, काम होता है, उसमें मसरूफ होते हैं।
1: नहीं, मैं सुन रही थी, बस थोड़ी बिजी थी ना।
0: चलिए, अब वही कह रहा हूँ ना, कभी कभी बंदा बिजी होता है, टाइम नहीं मिलता तो हाजिरी लग ही जाती है, इसमें क्या होता है।
1: दूसरा ये सोचते हैं कि इतनी देर जो हमने होल्ड करना है तो वो बेहतर है, हम अपने काम
0: से क्या करें। फिर आगे एक बंदा बात कर रहा हो, दूसरे को होल्ड करना ही पड़ता है ना। अभी देखिए, कोई बंदा नहीं था, कमर्शियल चल रही थी, तो कमर्शियल जू खत्म हुई, आपको मैंने ले गया आने।
1: नहीं नहीं, थैंक यू। वैसे मैंने भी यही अंदाजा लगा लगू के सारा मैंने काम फोन किया, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, वाजिद भाई को बहुत बहुत सलाम,
0: दादा
1: फरियाल साहब।
0: वाजिद भाई ने आपको स्पेशल सलाम भेजा हुआ है, मुझे कहा था प्रोग्राम के शुरू में ही, तीन बंदों के लिए उन्होंने सलाम भेजा था, दो का तो हो गया, अपने चौधरी फिराज साहब का और अयूब चौहान साहब का, और आपने, और स्पेशली आपके लिए उसने कहा था गजाला जबीन बहनों को मेरा सलाम, स्पेशल सलाम देना।
1: हम तो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआगो रहते हैं, अल्लाह ताला हमारे भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे,
0: आमीन।
1: ये तो मेरा छोटा सा भैया है, मैं तो इनसे बड़ी बाजी हूँ ना।
0: हाँ सही है, वो तो फिल्म में कहता होता है ना, वो शक्ति को छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा,
1: बिल्कुल वो यही है, सलामत रखे
0: जी जी।
1: और अभी बड़ी देर के बाद स्वीडन से भाई आए थे
0: जी जी,
1: और दूसरा महबूब साहब भी आए थे,
0: मीर
1: साहब भी आए थे, सबको मेरा सलाम
0: जी। वालेकुम सलाम।
1: एक पहले गदल चपती हूँ, अगर कोई ना आया थे
0: नहीं, बस उसके बाद लेनी भी नहीं कॉल मैंने आप के बाद, क्योंकि उसके बाद जोर की अजान आएगी ना, इसलिए मैं कोई कॉल नहीं लूंगा।
1: ठीक है
0: जी।
1: ये अलामा इकबाल साहब का है, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं।
0: आहा, क्या बात।
1: दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरा निकाब रखते हैं।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: सब अपने चेहरों पे
0: दोहरा निकाब रखते हैं,
1: हमें चिराग समझ कर बुझाना पाओगे।
0: हाय हाय,
1: हमें चिराग समझ कर बुझाना पाओगे।
0: बहुत खूब।
1: हम अपने ही घर में कई आफ्ताब रखते हैं।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: हम अपने ही घर में कई आफ्ताब रखते हैं, ये मैं कदा है, वो मस्जिद है, वो है बुतखाना।
0: वाह,
1: ये मैं कदा है, वो मस्जिद है, वो है बुतखाना, कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं।
0: वाह क्या बात है,
1: कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: अच्छा टाइम है कि नहीं?
0: नहीं नहीं, पल अभी दो मिनट है।
1: अच्छा चल, मैं जहाँ ना होगा मुझे बता देना, मैं बंद कर दूँ।
0: ठीक है ठीक।
1: कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना।
0: वाह बहुत खूब।
1: दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना।
0: आहा।
1: जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी।
0: आहा।
1: जिंदगी हम पे भी ये आसान हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना।
0: क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने।
1: लेते जो किसी दर्द का चारा करना, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन।
0: वाह।
1: कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना।
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू भाई। हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग।
0: बहुत
1: कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करें।
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिंदगी हम तो चलो मान के सह भी गए। जिंदगी हम तो चलो मान के सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से ना दोबारा करना।
0: वाह वाह।
1: थैंक यू भाई। कितना मुश्किल है अजियत है गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना।
0: वाह।
1: थैंक यू भाई बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया बहना आपका, क्यों शर्मिंदा करती हैं, आपने कीमती वक्त निकाला भाई। और
1: शर्मिंदा क्यों करें, हमारे इतना अच्छा प्रोग्राम होता है तो उसमें सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक किस्म के बात करते हैं, नाम लेते हैं, तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी। ये
0: सही बात, सही बात, सही बात।
1: तो इसमें आपका भी शुक्रिया और आने वालों का भी शुक्रिया, और अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सेहतियाबी से वापस।
0: थैंक यू बहना, थैंक यू। और हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया बहना।
1: ओके अल्लाह भाई को मेरा दोबारा बहुत बहुत सलाम।
0: थैंक यू।
1: छोटा भाई है।
0: ठीक है मेरी बहन। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थी प्यारी बहना गजला जबीन साहबा रोज दिल से, ढेर सारी तालियां उनके लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी कॉल के बाद कोई कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समाइन, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45, तो कमर्शियल पे चलेंगे। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे नदीम मंसूर साहब ने जो गीत गुनगुनाया था वो सुनेंगे। उसके बाद अगर चांस मिला तो जनाब जो हैं हमारे नदी अपने अपने राणा नवीद साहब, उन्होंने भी गीत गुनगुनाया था और कहा था कि टाइम मिला तो वो भी सुना देना, तो ज़रूर सुनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। और सदके जाऊँ सदके जाऊँ, मेरा चन वर्गा वीर है तो काशिफ आ गया है जल्दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और ये गीत था जनाब जो अपने जो हमारे प्यारे हैं नदीम मंसूर साहब, उन्होंने ये गीत गुनगुनाया था। और अब जो गीत पेश करने जा रहा हूँ जनाब, क्योंकि टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे लगा हुआ है और हम गप्पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शहजादा है ना, वो इस वक्त आज जल्दी आ गया, क्योंकि काफ़ी दिनों का गैप पड़ा हुआ था, मिले नहीं थे, तो ये जल्दी आ गया आज के भाई से गप से आप लगाएंगे, तो अच्छा किया इसने, वरना मैं इसके 15 मिनट लेता, फिर मैं खड़ा रहता यहाँ। चलो अच्छा हुआ इसने मुझे यहाँ खड़ा रहने से बचा लिया। तो एनीवे, अब जो राणा नवीद साहब ने गीत गुनगुनाया था और फरमाइश की थी, उनका गीत भी उनकी नज़र करते हैं।

0: अल्लाह अकबर। अच्छा हुआ मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है काशिफ, तुम तो मुझे वैसे ही क्या बात है
1: फर्क कर दिया।
0: ठीक है दोस्तों, मेरे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पसीर हुआ जाता है और अब जनाब काशिफ साहब की बारी आती है, इनको सुनिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे काशिफ के समेत, और अगर अल्लाह ने चाहा जिंदगी में वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात जनाब कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

मौजूद हैं आप इस वक्त गैरों के आस पास या बैठे हैं हमारी तरह अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आई नो, वेलकम, खुशामदी, कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ। सुनते हैं हम सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे, 100.6 एफएम पे, डीएबी के जरिए दुनिया भर में आप साथ निभाते हैं, यानी कि हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो डॉट एफएम के जरिए। और जनाब, हमारा 3 घंटे का साथ होता है आज के दिन, आपको तो पता है, बहुत ही खूबसूरत सी महफिल होती है, क्योंकि जनाब आप सब हमारे संग संग होते हैं। जब खूबसूरत और हम सफर जो है ना, आपके प्यारे प्यारे हों, खूबसूरत हों, तो सफर जैसा भी हो, फिर वो अंग्रेजी वाला सफर नहीं होता, वो उर्दू वाला सुहाना सा सफर बन जाता है। लेकिन कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और जनाब आज बड़ा अच्छा लगा इस खूबसूरत से सुहाने सफर को, इसका आगाज करते हुए बड़ा अच्छा महसूस हुआ बड़े ही दिनों के बाद। उसकी वजह आपको मालूम है, जो बड़े सियाने हैं मेरी तरह सीधे और सादे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में मेरी तरह सीधे सादे अभी जलेबी की तरह हैं, उनको समझा दूं कि खूबसूरत और सुहाना सफर इसका आगाज आज मजेदार क्यों हुआ। क्योंकि जनाब आज मुलाकात हुई बड़े ही दिनों के बाद आमिर भाई से, और जब मुलाकात हो खूबसूरत सी, और मुलाकात जिससे हो उससे आपका दिल का रिश्ता हो, दुआओं का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, एहसास का रिश्ता हो, लेकिन इन सबसे बढ़के, इन सबसे बढ़के एक चीज होती है, अगर मोहब्बत में, प्यार में, चाहत में, एहसास में इज्जत ना हो तो सब बेकार है दोस्तों। तो जनाब इस सबसे बढ़के जो एक इज्जत का रिश्ता है हम दोनों के दरमियान, उसकी वजह से जनाब बड़ी बेचैनी से, जैसे एक इंतजार था मुझे, तो वो इंतजार आज खत्म हुआ। बड़ा मजा आया, बड़े कहकहे लगे, बड़ी गप्पे हुई और बड़ी छेड़छाड़ हुई जनाब जो हम उनके साथ करते हैं। बहुत हंसाया हमने उनको, ताकि वो जल्दी, मजीद जल्दी रिकवर करें। और उनका कोई, मैंने कोशिश की कि आधा किलो का जो है ना ताज़ा ताज़ा खून बने, कहते हैं हंसने से खून बनता है, तो कोशिश की कि उनको हंसाया जाए। बस एक कमी रह गई कि मैंने थोड़ा लिहाज कर दिया, वो बड़े भाई हैं।

जैसे दिल का मौसम एक हलचल सी हो गई है, धूम मचा दी है जनाब, अंदर बाहर हमारे चारों तरफ आपकी इस मुलाकात ने, और बाकी रही से गजर हमारे लिसनर्स पूरी करेंगे तो मजे आ जाएंगे, या मुझे या आपको या हम सबको। तो फिर धूम मचाते हैं वंस अगेन।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 2:19।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी

0: ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: जी जनाब, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं काशिफ को सनराइज रेडियो पे, बिल्कुल आपका अपना सनराइज रेडियो, और हवा पे बिखरती हुई मेरी आवाज कहीं ना कहीं पहुंचेगी आपके दिल के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाएगी। अगर आपके दिल में जनाब ऐसी ख्याल आए, थोड़ा सा एहसास आए कि कोई अपना है, किसी अपने की आवाज है, कोई अपना अपनाइयत से हमसे अपनी बातें अपनों की तरह कर रहा है, जी चाहे आपका साथ निभाने का, जिस तरह कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं जनाब, उनसे भी ऑफ एयर बातें होंगी जनाब। ऑन एयर कॉलें नहीं होती हैं, सिर्फ राजो न्याज होते हैं, आपकी डेडिकेशंस होती हैं, आपके फेवरेट गीत होते हैं या हमारी मर्जी के गीत होते हैं, आपके खूबसूरत नामों के साथ जोड़ जाड़ के, और कुछ हमारी टूटी फूटी बातों को मजीद तोड़ ताड़ के आपके लिए पेश करते हैं, आपका दिल बहलाने के लिए। जनाब कॉल आई आज, सबसे पहले बाजी जिन्होंने मार ली। अगर आप भी कॉल करना चाहे, फुर्सत हो, टाइम मिले, दिल करे, तो फिर कॉल कीजिएगा जनाब, वरना खामोशी से काम करते रहे, लगे रहे, कीमे वाले चावल पकाते रहे। और एक हांडी थी वो भूल गया मैं, दोबारा बताएंगी सोनिया। सोनिया ने तीन डिशेस बताई थी कीमे वाले चावल, बस वो मेरे दिमाग में अटक गए। अच्छा, मैंने कभी खाए नहीं है कीमे वाले चावल कैसे होते हैं। वैसे कीमा मुझे पसंद है, लेकिन कीमे वाले चावल, अच्छा चावल भी मुझे पसंद है, लेकिन कीमे वाले चावल इकट्ठे करके ये साइंस में कब दरियाफ्त किया, ये डिस्कवरी कब हुई? मैं मैथ में भी बड़ा निकम्मा था, हिसाब में बड़ी मार पड़ती थी, और साइंस में भी बड़ा निकम्मा था, और ज्योग्राफी में भी बस मैं बड़ा निकम्मा था, अंग्रेजी में भी बस मैं बड़ा पूरा ही था, उर्दू में भी तो बिल्कुल पूछे ही ना जनाब, बड़ी मार पड़ती थी। पीछे क्या रह के गया, खेत इसवा यानी कि कुल में ला के बात यह है कि मैं आपकी तरह था बिल्कुल, पढ़ाई में बिल्कुल जनाब लायक होते तो वहां ना होते जहां होना चाहिए था वलायत कैसे पहुंचते हम अगर इतने लायक होते, क्यों जनाब? बात दिल को लगी ना? नहीं लगी, अच्छा चले, या तो दिल को लगी या फिर ठा करके लगी। अच्छा, तो वो उन्होंने कीमे वाले चावल बनाए हैं और उन्होंने पहली कॉल उनकी रही और उन्होंने कहा है कि आंखों से दिल में उतर के या आंखों से उतर कर दिल में, समथिंग लाइक दैट। मूवी का नाम उन्होंने कहा है, शायद साथ में लगाया उन्होंने कहा शायद फरेब है। और दूसरा गाना जो आपने बताया था वो था रोने धोने वाला था, तो वो नहीं ना। और एक और कॉलर हमारे साथ रहे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा जी वेलकम। अच्छा, खवातीन नाम छुपाती हैं, मुझे ये नहीं पता था कि मर्द हज़रात भी डरते हैं किसी से, या फिर मर्द हज़रात ही डरते हैं ज्यादा। आजकल तो मर्द हज़रात ज्यादा डरते हैं मेरे ख्याल में, जैसा मैंने देखा है। खवातीन निडर हो गई हैं, कम डरती हैं, कम शर्माती हैं, दौर बदल गया है ना। मीन टाइम जनाब, जिन्होंने वेलकम कहा बड़े प्यार से, बड़े खामोशी से साहब ने, उन्होंने गाना कहा था जनाब ये वाला।

जी जनाब वाजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हडर्सफील्ड से आपने कॉल की। हमेशा कॉल करते हैं। आपने कहा जितने भी सलाम आपने मुझे दिए थे जिस के लिए दिए थे, आपने कहा कि वो आपने पहुंचा दिए या कोई नहीं। जनाब पोस्टमैन का काम भी मैं करता हूँ। पोस्टमैन इसलिए हूँ कि जब जो मुझे जो जो अमानत देता है ना, जिस साथी प्रेजेंटर के लिए, जैसे ही आप मुझे कोई सलाम दुआ देते हैं, कोई भी प्यार भरा कोई जुमला कोई पैगाम देते हैं, तो जब भी हमारी मुलाकात होती है ना मेरे साथी प्रेजेंटर से, तो मैं ज़रूर जनाब नाम ले के आपकी बुराई करता हूँ मतलब जनाब नहीं बुराई है, नहीं मतलब आपका जिक्र करता हूँ कि आपने जो जो पैगाम दिए हैं, सलाम दिया है, कोई मोहब्बत भरा कोई जुमला कहा है, तो वो ज़रूर मैं पहुँचा देता हूँ। अभी ऑनियर इसलिए मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि आपको पता लग जाए कि जनाब हम अमानत में खयानत करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ना बाबा ना, इज्जत रब देने वाला है, जिल्लत भी रब की तरफ से होती है। वाला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो जनाब सारे ओहदे सारी इज्जतें सारी आजमाइशें रब की तरफ से होती हैं, तो फिर क्यों जनाब हम बीच में डंडी मारे, इसके बीच में हम कौन होने वाले हैं, आने वाले कौन होते हैं। तो इसलिए जनाब आपके पैगाम पहुंच जाते हैं, और जो पैगाम आप मेरे लिए देते हैं किसी को भी मेरे साथी प्रेजेंटर्स को, वो मुझ तक पहुंचते हैं। और जनाब बड़ा अच्छा लगता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और जनाब वाजिद भाई आपके पैगाम मजीद जो आपने हमें दिए हैं वो भी पहुंच जाएंगे। और यासमीन जी आपका शुक्रिया, आपने कहा काशिफ हम आइस कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब मैंने तो जिंदगी में कभी आइस कॉफी नहीं पी है। हमने पूछ लिया आपसे, हमने कहा जी क्या हो रहा है, मैंने समझा कि हांडी रोटी। यूजली जब मुझे खवातीन कॉल करती है ना, तो मैं पूछता हूँ कि जी क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि वो किचन में बेचारी काम कर रही होती है वीकेंड पे, या ज्यादा से ज्यादा तीर मार लिया तो वॉशिंग मशीन चला ली होगी उन्होंने, कपड़े वगैरह पूरे घर के वो धो रही होती है, वीकेंड ही होता है उनके लिए। लेकिन मैं भूल गया जनाब बच्चों की हॉलीडेज है। तो आपने कहा नहीं जी हम तो बाहर निकले हैं घूमने के लिए, साथ में आपको सुन रहे हैं, आपका शो अच्छा लगता है, इसलिए कॉल की आपको बताने के लिए। और जब आइस कॉफी का आपने बताया ना, तो मुझे थोड़ा सा ना मेरा सर चकरा गया। अच्छा वैसे मैंने आगे लोगों को ये बात करते हुए सुना है, कॉफी तो हम हमारी पहली मोहब्बत जनाब है ही कॉफी है, और दूसरी का मैं बताऊंगा नहीं आपको, तीसरी का आप पूछेंगे नहीं, चौथी का मैं जिक्र नहीं करूंगा, और पांचवी मोहब्बत बताते हुए मुझे थोड़ा सी शर्म सी आती है, और छठी मोहब्बत जनाब उसके बारे में मैं कहीं लिख के आपको बता दूंगा, और सातवीं मोहब्बत जो है ना मेरी वो मुझे खुद याद नहीं है। आठवीं मोहब्बत तो बिल्कुल ही भूल गया हूं। नौवीं मोहब्बत थी कभी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, याद आई तो मैं दसवीं मोहब्बत जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मीन टाइम इतना प्यार भरा दिल आपके काशिफ का, बिल्कुल जनाब आपके काशिफ का ही है। शादीन भाई आपसे गपशप होगी, अभी मैं अपने वो प्यार मोहब्बत बांट रहा हूं आप सबके साथ, आप भी अपनी मोहब्बत शेयर करना चाहें थोड़ी बहुत तो जरूर आइएगा। इतना बड़ा दिल है भाई साहब हमारा, क्योंकि आप प्यारे हैं ना, कुछ हम आपके फैन हैं, कुछ हमको वहम है कि हम सुपरमैन हैं, और कुछ सलमान खान के हम फैन हैं। तो ये सारे स्यापे मिलके ये गाना सुने आपको समझ लग जाएगी।

जनाब, आप आए उसके बाद हमें कुछ समझ ना आए। कुछ लोग होते हैं ना, वो बस कुछ लोग ही होते हैं। बड़े प्यारे होते हैं, बड़े आपकी आंखों के तारे होते हैं, पर उनके नखरे बड़े होते हैं। पर आपको उनके नखरे उठाने अच्छे लगते हैं, पता है क्यों? उनका एक कहकहा, उनकी एक मुस्कुराहट, उनकी एक हंसी, एक पल की सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए। मेरे जैसे सीधे साधे बंदे को, सीधी राह से भटकाने के लिए बिल्कुल काफी होती है एक मुस्कुराहट। अभी आप मुस्कुरा रही हैं, मैं देख रहा हूं अपनी दिल की नजर से, बस आपको नजर ना लगे। एक तो आपको नजर बड़ी लगती है, आप बीमार बहुत रहती हैं, आप हंसले आप, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं आपकी शान में। आपने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि गोश्त खाया करो, मैंने कहा ठीक है खाएं गोश्त। और जनाब आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आप जिम जाया करें, ठीक है जी आप जिम जाएं। फिर आपने कहा डॉक्टर ने आपको कहा कि काशिफ से दूर रहा करें, मैंने कहा ठीक है दूर रहें जनाब। तो आपने कहा बाकी दो काम तो हमारे बस में है, गोश्त खाना और जिम जाना, पर ये जो तीसरा काम है ना, ये हमारे बस में नहीं है। हाय बच्चे की जान ले ले आप, बस पीछे यही रह गया है, और क्या रह गया है। अब सुनने वाले नु मजे आ रहे ने, पर मेनो सब तो ज्यादा मजा आया ने थोड़ी गल दा। आज बहुत सारी कॉल आई, लेकिन सबसे मजे की कॉल जो थी ना, वो यही थी। अब मुझे बताएं कि मेरे जैसा सीधा साधा बंदा जब ऐसे कोई बातें करेगा तो फिर उसका नाम लिखना तो पड़ेगा ना हाथों पे। फिर हाथों पे लिख के हाथों को धोना नहीं है, क्या करना है सना जी, क्या करना है

जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। रुखसार भाई जान, बड़ी लंबी गैर हाजिरी। मैं सोचू कि वीर साडा सानू भुल ते नहीं सकता, पर होया कि माजरा की है, एक की सेंस है। फिर तुसी दस्या तुसी ते होलीडेज ते गए सो, ते बड़ी खूबसूरत होलीडेज तुसी साडे नाल शेयर कीतियां। अपना सारा जो तुहाडा सफरनामा सी, बड़ा प्यारा जहा सब जरा होलीडे सन, थोड़ी जर्नी वो तुसी बड़े प्यार शेयर की, तो मैं इंज लगा मैं थोड़े नाल नाल सा। बड़ा चंगा लगा जनाब, तुसी बड़े दिनों बाद आए हो, साढ़े दिल के तार खड़क गए जे, बहुत शुक्रिया। तो सारे तुसी सलाम दुआ दी जनाब, साड़ी पूरी टीम नू, थोड़े सुनने वाले दे ना एक गाना। तो बाकी जनाब कुछ कॉलर होर ने साढ़े नाल, उन्होंने लिए भी गाने हो गए। यासर भाई जान, क्या हाल है तुसा ना? ठीक हो ना? तुस आ गया सरकार, असा भुलने तक होना कदा कदा, तो दिल करना भी दौड़ी अच्छा स्टूडियो ने बाहर, तो तुसा की आ गया कलावा लाई कि ना, वैसे तो तुसा लभने को ना। यासर भाई एवं दूरों दूरों सानू तरसांदे हो।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 FM और 100.6 FM डीएबी के जरिए और दुनिया भर में सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप हमें सुनते हैं, साथ निभाते हैं आप। आए, आए, आए। आप साथ निभाने वालों में से हैं, मान गया आपका काशिफ, मान गए हजूर। जनाब पहले आवर में आज बहुत वीक्स के बाद आपकी मोहब्बत बरसात बन के बरसी हम पे, तो जो बात होती है उसको उस तरह से उन खूबसूरत लोगों का दिल खुश करने के लिए मुझ पे उधार चढ़ जाता है। तो जितने भी दोस्तों ने मुझे कॉल्स की, कुछ दोस्तों ने बार बार कॉल्स की, उनका बार बार आना और जिन्होंने एक बार कॉल की उनका एक बार आना भी हजार बार के बराबर। जिन्होंने मुझे याद किया, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिन्होंने मेरा इंतजार किया, आप सबके नाम ये खूबसूरत सा गीत होगा। गौर से सुनिएगा, इस गीत की एक वजह है। कुछ बातें मेरे जैसा नासमझ, नकम्मा, नालायक, हकीर फकीर सा बंदा। दिल में मोहब्बत का समंदर जब हो और समंदर ठाठे मारता हुआ तूफान हो मोहब्बत का दिल में, और वो भी सामने आप जैसे प्यारे लोग हों, तो फिर मेरे जैसा नकम्मा बंदा दिल के ख्यालात, दिल के जज्बात, दिल के एहसासात, वो सारी बातें जो आपके लिए मैंने करनी होती हैं वो मैं कर नहीं पाता। अल्फाज नहीं मिलते, अंदाज नहीं मिलते। और जब मिलते हैं तो आप मसरूफ होते हैं, आप नहीं मिलते। तो जनाब इसलिए इस गीत का सहारा ले रहे हैं, इस गीत को सुनिएगा। हम क्यों आते हैं आपके लिए, सारा कुछ छोड़ के, सारी मसरूफियत में से टाइम निकाल के, आपसे जैसे बातें करते हैं किसी और से ऐसे बातें करने को दिल नहीं करता। आपके बारे में जो सोचते हैं ऐसा किसी और के लिए सोचने का दिल नहीं करता। जितनी बातें भी कर लें आपके साथ फिर भी मुझ काशिफ का दिल नहीं भरता। तो ऐसे हैं आप जनाब। और किसी ने कहा जनाब हमें कॉल करके, उन्होंने कहा कि हम आपसे बातें तो ढेर सारी करना चाहते हैं। कह दूं, कहना पड़ेगा, आदत ही अपनी ऐसी है, दिल में नहीं रखते बातें हम। आपने कहा काशिफ आज कूचा काची का दिन है, यानी सफाइयों का दिन है। आप इंग्लिश में बात करती हैं लेकिन आप कहती हैं कि मेरी पोठवारी कुछ अच्छी नहीं है, तो क्या आपको मेरी पोठवारी समझ लगती है? तो हमने उनको कहा कि जनाब हम आपसे तो पंजाबी और पोठवारी सीखते हैं, ये कूचा काची का लफ्ज तो मैंने आज से पहले सुना ही नहीं था। आप मुस्कुरा रही हैं, साथ में कूचा काचियां यानी सफाइयां कर रही हैं। आप कहती हैं आज सफाई डे है, वैसे आप कॉल करती हैं तो कुछ ना कुछ या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम होता है या बारबेक्यू मोस्टली आप करती हैं संडे वाले दिन। आज आपने एक कमाल बात कही। आपने कहा काशिफ मेरा दिल करता है मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूं। तो मैंने कहा करें जनाब, क्यों नहीं करती हैं आप? तो आपने कहा, बड़ी हंसी आई मुझे, आपको भी आएगी। तो आपने कहा मैं कैसे करूं, मेरे और आपके बीच में ये सारा, ये सादिया, ये सना, ये सब आपके और मेरे बीच में है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती आपसे इतनी बातें। आपको इन सबसे फुर्सत मिलेगी जब, तो हमारी बातें होंगी ढेर सारी। चलिए जनाब आप बातें करें ना करें, हम तो ये कहते हैं आपके लिए।

जी जना, ब्रेक के बाद हलीमा आपका गीत होगा। आपने मोहब्बती फिल्म का गाना चुना है और हमारे साथ हमारी टिकटॉक की एक फैन है मिसिस शर्मा। आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। आपने कहा हम आपको बड़े अच्छे लगते हैं। अरे वाह, तारीफ बनाने वाले की, आप बहुत अच्छी हैं जिसकी वजह से जनाब हम आपको अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें, आप हमें टिकटॉक भी फॉलो करती हैं, यहाँ पे भी आप फॉलो करते करते हमारा साथ निभा रही हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। आपने ऑफर की जनाब आइस कॉफ़ी की, आपने कहा शुरू से सुन रहे हैं और आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा सुनती हैं और आज आपको हमारी बातें, आइस कॉफ़ी वाली बात आपको याद रह गई और आपने हमें इनवाइट किया जनाब। आपने कहा अगर आपने कभी आइस कॉफ़ी नहीं पीना तो काशिफ हम आपको आइस कॉफ़ी पिलाएंगे। बिल्कुल ज़रूर जनाब, डन हो गया। हमने कभी नहीं पी और अगर पियेंगे कभी तो मिसिस शर्मा के हाथ की आइस कॉफ़ी पियेंगे। आपने कहा जी गाना कोई सा भी लगा दें, सारे गीत आपके हमें बड़े पसंद हैं और आपकी बातें खास तौर पे अच्छी लगती हैं। मिसिस शर्मा, आपकी बातें तो हमें अच्छी लगी हैं, हमारी बातें क्या हैं। और जब्बार भाई ने जनाब आते साथ ही आके ऐसा किया वार कि क्या क्या बताएं आपको, हजूर छलनी कर गए वो अपनी बातों से दिल हमारा। बड़े मज़े आए, बहुत हंसाया जब्बार भाई ने और बड़े ही प्यारे हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं और सनराइज रेडियो के बड़े ही लॉयल से लिसनर हैं और आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने भी कहा है कि, बल्कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या बताएं और कहां तक बताएं। जनाब उनके लिए गाना होगा जवार भाई आपके लिए, नंबर एंडिंग विद 716 आपके लिए होगा गाना, कोई पंजाबी का गाना आपने कहा था। और सामिया है जनाब हमारी टिकटॉक की दुनिया की एक, हमारी बड़ा ही हौसला अफजाई करती हैं, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करती हैं। आज उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने कहा है काशिव हम नेक्स्ट आवर में वी आर लीविंग टू गो समवेयर, तो उससे पहले पहले मेरा गाना लगा दो। लगा देंगे जनाब। अच्छा जनाब, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी हैं और उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको मिसिस शर्मा के नाम ये गीत होगा, उम्मीद है आपको ये गाना अच्छा लगेगा। जब्बार भाई के नाम गीत होगा, लेकिन ये चॉइस है हमारी प्यारी सी लिसनर भी हैं, टिकटॉक की फैमिली की एक मेंबर भी हैं, मुझे फॉलो करती हैं और बड़ा ही बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत बड़ा

0: आरजू मूवी का गाना कहा है और उन्होंने कहा है खास तौर पे, जो कहा है वो कहा है, उन्होंने कहा ये गाना मोहब्बतें फिल्म का काशिफ आपके लिए होगा, आरजू फिल्म का गाना तेरे दिल में आगे वो भी आपके लिए होगा। ठीक हो गया, अब आपकी रू राजी होगी। वैसे मैं ये कहना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाँ ये गाने सारे आपके लिए होते हैं, लेकिन अब आपकी जिद सर आंखों पे कभी कभी सुनने वाले समझ गए होंगे कि क्या क्या जिद्दें होती हैं आपकी, तो फिर आपका दिल ना टूट जाए, तो इसलिए हमें ये कहना पड़ा ताकि आपकी रूह राजी हो, आप जिस नीयत से मेरे शो में शामिल होती हैं वो आपका जो मकसद पूरा हो जाए, आपका दिन अच्छा हो जाए, आपका मूड और अच्छा हो जाए, तो आप और ज़्यादा हमारे साथ रिलेट कर पाएँ, इंटरेक्ट कर पाएँ और जुड़ के सही तरह से जिस तरह आप हमें सुनती हैं। तो मैंने कहा ना कि आपकी मोहब्बतों का, आपके इतने प्यार का, आपकी सपोर्ट का कर्जदार होता हूँ मैं आप सबकी, बल्कि तो कोशिश करता हूँ कि आपकी बातों को और ज़्यादा प्यारे अंदाज से उनका हक अदा कर पाऊँ, आपकी फरमाइशों का हक अदा कर पाऊँ, आपका जो टाइम आपने मुझे दिया, चंद लम्हे मुझे कॉल करते हैं उसका हक अदा कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। बहरहाल एनीवे कोशिश है, ब्रेक के बाद जनाब आप सबके लिए खूबसूरत सा गीत जो कि हलीमा का फेवरेट गीत और बाकी दूसरा गीत है तेरे दिल में आगे आरजू फिल्म का, वो मुझे जैसे ही मौका मिला, क्योंकि कुछ और कॉलर भी साथ हैं तो उनकी भी कुछ फरमाइशें होगी। मिसेस शर्मा आइस कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करेंगे आपके हाथ की, वादा रहा, कभी ना कभी ज़रूर। ठीक है जी, आपने मैं बता दिया आप कहाँ होती हैं, तो ज़रूर हम, अब आपके बिज़नेस का नाम तो नहीं मैं ले पाऊँगा, लेकिन ज़रूर आपकी जो है ना उस पे, आपके बिज़नेस पे हम आएंगे और ज़रूर आइस कॉफ़ी आपके हाथ की हम ट्राई करेंगे, ये वादा किया है, वादा हम निभाते हैं हमेशा। और मिलते हैं जनाब एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जनाब टाइम हो चुका है 3:18 हो गए हैं, तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद एक खूबसूरत सा गीत, बिल्कुल मोहब्बतें मूवी का, जो करेगा अकासी हमारे दिल के ख्यालात आप सबके लिए।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: जनाब दोबारा आना पड़ा, क्या करूं जनाब, कॉलर कुछ इतने प्यारे प्यारे से साथ में शामिल होते हैं और हाय लियाकत भाई जान, इससे अच्छा था आप तलवार लेते और बस काम तमाम कर देते, वो मुझे कम दर्द होता। आपने कहा जनाब कॉल मलाने हैं, आपने भी जबार बाई वाली वो जो है ना वो छुरी इस्तेमाल की हमें काटने के लिए, खुंडी छुरी, तो आपने काटा तो है लेकिन आपने चीथड़े उतार दिए हमारे, तो आपने कहा सरकार कॉल मलाने हैं, तो मलाने तो बाद फिर इस तरह लटकी जाने हैं, तो लटकड़िया सरकार असं पुजी आए हैं BRI तोड़ी, तो टैक्सी ड्राइवर सारे जड़े वो भी जनाब कोशिश करने जो असं कॉल करने तो आने अगली जाब असं को नहीं चाही, असं आखिया कि हूँ कॉल मलाई छोड़ी है तो हूँ जिचर पापे नाल गल ना हो जाए काशिफ नाल, इचर असं अगली जाब ना चाहे ताने गड्डी चलाने चलाने जाब ना किन्ने ना किन्ने ना किन्ने टोने चू दोस्ता BRI तोड़ी पुजी आए हो।

ते तुसानियां गल्लां नहीं मुकियां लेकिन गल्लां सोहणियां करने हो ते इसे मारिया कॉल करने हां ते तुसां नाल गल करने नूं दिल करना ते बहु रौनकां लाने हो ते रौनकां लाई रखो बहुत शुक्रिया तुसानियां दुआवां सुणे हो लियाकत भाई तुसां आपूं बहुत चंगे हो कसमे ये किसे तुसां की ना बाया हो सी या बाया हो सी किसे ना किसे ते लेकिन मैं तुसें बाई छोड़ा तुसां आपूं बहुत चंगे हो एडा वेट ते कौन किसे ना करना कोई भी नहीं करना या तुसा कीता या जबार भाई कीता ता या मिसेस शर्मा कीता ता या अली मारा कीता ता या फिर सामी करनी भी है उन्हें जाना भी है कुदरत है वो भी लटके हुए साढ़े नाल उन्हें कीता यासर भाई कीता वाजिद भाई कीता ते सोनिया रा कीता जिन्हें असं की दोबारा कॉल करी ते बाया उन्हें आया सरकार असं बनाई छोड़े ने कीमे वाले चावल ते नाल मैं तुसें बाया भी गोश्त भी थोड़ा विच बाया सी ते आने मी गोश्त कीमे वाले चावल मी किधरे होर मैंने नहीं सुने वो भी बनाने ये साढ़े घर ही बनने मेरा ख्याल है ते आने माड़िया भैन की बहुत चंगे लगने ते मैं उन्ना मरिया बनानी हाँ आपू मैं कौन खानी कीमा कीमे वाले चावल ताने काजब जी तुसां भुली जाने हो बदाम खाया करो मैं तुसें बाया सी नाल मैं मसरां दी दाल भी चाढ़ी है ते मसरां दी दाल ने ते कीमे वाले चावल ने ते नाल थोड़ा जिहा गोश्त दीआं बोटियां मैं विच बाईआं ठीक हो गया जी दोबारा कॉल करी ते मेन्यू तुसां सैट करी छोड़िया दोबारा बाई छोड़िया असां की ते अल्लाह पाक तुसां ने रिज़की च और इजाफा करा इसे तरह तुसां अपने मेन्यू तुसां ने दस्तरखान सारे जितने सुनने पे हो ना अल्लाह पाक तुसां ने दस्तरखान च तुसां ने रोजी च तुसां ने रिज़की च बरकत पाए ते इसे तरह तुसां की कदे कमी ना आवे कदे रिज़क नहीं इतनी तुसां की रिज़क होवे कि तुसां देने वालेयां चो वो लेने वालेयां चो कदे अल्लाह पाक तुसां की ना करे आमीन गुनाहगार जे बंदा जी बस दिले च जो आवना ते आखी छोड़ना ते क्या पता कदे ओ जिहड़ा देने वाला ओ भी लहरी च होना कदे क्या पता मारी सदा पूजी जाए तुसा मारे दुआ करना तुसा मारे मारे भी दुआ करया करो अला कदा याद अच्छा ना मारी कुत्ते अच्छी उसी याद तुसा की तारे मारी याद आवनी है जिस दिन मैं तारे इत्थे अच्छना संडे ते तुसा की आवाज बुझने मारी ते तुसा की याद अच्छना वो होए ते वो ही पागल है झला वो दीवाना जहा वो सीधा साधा काशिफ बट एनीवेज गाइस अभी हमें जाना है इस खूबसूरत से गीत की तरफ और गीत के लिए हमें फरमाइश की थी हलीमा ने और हलीमा ने कहा कि गाने सारे अच्छे हैं लेकिन ये गाना लगाएं और एक और कॉलर आई उन्होंने नाम नहीं बताया उन्होंने कहा काशिब आप आज मेरा दिल खुश कर दें मैंने कहा कैसे गाना बताएं उन्होंने कहा गाना नहीं आप शायरी किया करते थे आपने शायरी क्यों छोड़ दी हाय का छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम निकले गंदे चले आपको खुश करने के लिए जनाब ये गाना आपके लिए और जो कॉलर्स हमारे साथ हैं उनको कहेंगे थोड़ी सी ठंड रखिएगा लेकिन आप सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे गाने को सुनिएगा समझ जाएंगे आप लेकिन इस गाने से पहले ये भी बता दें आपको न जाने कौन सी दुआ का असर बन कर आए हो तुम वीरान दिल की दुनिया में रोशनी बन कर आए हो तुम जिन लम्हों में सांस लेना भी मुश्किल लगता था उन लम्हों में सबसे हसीन खबर बन कर आए हो तुम तुम्हारा साथ मिला तो खुद से मोहब्बत हो गई मेरी पूरी जिंदगी की कमी बन कर आए हो तुम न जाने कौन सी दुआ का असर बन कर आए हो तुम आप सबके लिए कहा है हमने

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
5: जी जनाब, खूबसूरत गीत और हमें तानिया, आपने कॉल की पहली बार, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन आपने गिला किया जी, हम कॉल करते हैं, आप पिक नहीं करते हैं या कॉल मिलती नहीं है, ये कैसे हुआ? चले आपका, अब खवातीन के साथ बंदा बहस तो नहीं कर सकता ना जी, ना इतने तो हम सादे हैं पर सीधे भी हैं, लेकिन जलेबी की तरह बिल्कुल ही सीधे नहीं है ना। आपने कहा, हमने मान लिया, लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं। ऊपर से आपने जो गाना बताया जनाब, दिन है इतवार का, गाना आपने बताया जुम्मे की रात, दिहाड़ दा टाइम है, उतो इतवार है ना जुम्मा ते ना रात। दसो मैं करां ते की करां, हुण पता लगा तानू, मेरी जगह ते होवो ते की तुहानू, तुहाडे दिल ते की ना, मैनू दसो ना, करां ते मैं की करां, ठंडा ठार पानी पी पी मरां। तुसी कहंदे हो मन्नू नहीं लगता तुसी कॉल कीती, तुसी खाली गाना लवाने वास्ते ना, मुझे लगता है कि सिर्फ पता नहीं क्यों, ये मेरा वहम भी हो सकता है, आप माइंड ना कीजिएगा, मेरे दिल में जो बात आती है मुझे करना अच्छा लगता है, वरना मेरे जो है ना ऐसे चुन्ने मुन्ने से पेट में ना मरोड़ उठते रहेंगे और आपको ऐसे ही वो जो है ना फिर अच्छा नहीं है ना, आपको किसी बेचारे के पेट में मरोड़ उठे आपकी वजह से, आपको उसकी आ लग जाए, तो मैं इसलिए बात करके ना अपना पेट हल्का रखना चाहता हूँ। तो जो बात है वो है, मुझे लगा कि तुसी कोलू अपने गल बनाई है खाली अपना गाना लवाने वास्ते, वैसे आप वैसे भी कह देती ना कि मैं आपको पहली बार कॉल कर रही हूँ और गाना लगवाना है तो मैं लगा ही देता, आफ्टर ऑल आई एम अ जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट भाई साहब। तानिया आपका फेवरेट गीत आपके लिए, हम भी सुनेंगे ना, आप भी सुनेंगे ना, सुनेंगे ना हाँ। और सोनिया ने कॉल की छोटी सी स्वीट सी, उन्होंने कहा काशिफ जी आपसे मुझे एक इख्तलाफ है। मैंने कहा क्या इख्तलाफ है? कहती है मैं एक बात का जवाब देने आई हूँ फटाफट। मैंने कहा क्या, मेरी कौन सी बात आपको लड़ गई? कहती है आपने कहा कि मैं हम आपको भूल जाते होंगे। मैंने कहा हाँ मैंने कहा। आपने कहा खाली संडे आपको सुनते होंगे, फिर याद आता होगा अरे ये तो काशिफ है। आपने कहा काशिफ आप हमें भूलने ही नहीं देते, हम आपको भूलना चाहें भी। मैंने कहा वो कैसे? कहती है सुबह उठती हूँ, टिकटॉक ऑन करती हूँ तो आगे आपकी वीडियो, आपका स्टेटस, आपका स्टोरी लगी होती है, फिर मैं भूलने की कोशिश करूं भी तो दिन को काम खत्म करके टिकटॉक ऑन करती हूँ, आपकी वीडियो, आपका स्टेटस, टिकटॉक पे आपकी स्टोरी। कहती है फिर शाम को मैं सोने लगती हूँ तो सोने से पहले मैं एक बार कहती हूँ टिकटॉक देख लूं, आगे देखती हूँ फिर आपकी एक नई वीडियो, नई पोस्ट, स्टोरी, स्टेटस। तो बोलो तो आपको बोलूं कैसे और कब, आप बोलने ही नहीं देते हमें। हाय सोनिया, वाकई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।

जी तानिया, इससे ज्यादा जो है ना ये गाना मैं नहीं सुन पाऊंगा, ना सुनवा पाऊंगा अपने लिसनर्स को। और कुछ का गीत होते हैं उनके बोल जो है ना उनसे मुझे इख्तलाफ होता है, तो फिर जिस जगह हम बैठे हैं जनाब वहां हम कभी कभी फायदा उठाते हैं अपनी जो है ना वो चॉइस का, मर्जी का। और सभी मुझे बहन भाई सुनते हैं, फैमिली सुनती हैं, तो कभी कुछ गीतों की शायरी जो है ना वो मुझे चुभ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए माजरत तानिया आपसे, आइंदा जब आप रिक्वेस्ट करें मुझे गीत की तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा गीत रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सब सुन पाए, सभी दोस्त अहबाब बहन भाई, बहुत सारे दोस्त जो है ना अपनी फैमिलीज के साथ मिल के भी मुझे सुनते हैं, तो मुझे जो है ना वो सारे अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। तो पहले तो आपसे माजरत कि मैंने आपका गाना आधे में से काट दिया, अपना इख्तियार कभी कभी मैं इस्तेमाल करता हूँ, हर बार नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं हद से मजबूर होता हूँ तो मैं अपने इख्तियारात में से किसी एक इख्तियार का इस्तेमाल करता हूँ, अच्छी सोच के लिए, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो एनीवेज उम्मीद है कि आप बेशक मुझे कोई और गाना प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन ऐसा गाना हो जो हम फैमिलीज के साथ मिलके सुन सकें। ये गाना मुझे भी पसंद है लेकिन मैं अकेले में सुनता हूँ, सच बताऊँ जो बात है वो है। तो तानिया प्लीज नाराज ना होइएगा, पहली बार आपसे बात हुई थी, लेकिन आप कोई और गाने बताएं, पूरी लिस्ट बताएं। आई एम हैप्पी टू प्ले एनी ऑफ योर सॉन्ग विद योर चॉइस, लेकिन आ गाना नहीं इसी मैं प्ले कर सकता मजीद, ठीक है ना जी। मीन टाइम जनाब ये गाना हमें, आपको पता है हलीमा ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि काशिफ ये गाना आपके लिए, आपने तो कभी नहीं ना गाना लगाया मेरे लिए, नहीं ना, देखें हलीमा ने कहा। एनीवेज हलीमा, ये सारे गीत आपके लिए होते हैं, मेरा सिर्फ एक बहाना होता है, आप हैं तो रौनक है, सनराइज रेडियो आप सबके साथ है और आप सनराइज रेडियो के साथ साथ। हम क्या जनाब, किस बाग की मूली, हमारे जैसे कहीं आए और कहीं गए, लेकिन आप हैं, सनराइज रेडियो है, तो जनाब बात बनी रहेगी। एनीवेज अब आपके दिल में तो आगे हैं, इससे आगे क्या होगा वो बताते हैं आपको, बल्कि समझाते हैं आपको, बड़े सादे हैं ना आप।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 3:46।
2: सनराइज म्यूजिक।
3: तेरी गलियां
4: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
6: विशीज विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बहुत शुक्रिया आयशा जी, आपने कहा कि हमने आपको शायर बना दिया। आपने अपनी शायरी सुनाई, हर हफ्ते आती हैं, शायरी सुनाती हैं। मुझे समझ नहीं लगी हमने कैसे आपको शायर बना दिया। आपने कहा एक दिन इसका हिसाब होगा, डरा दिया आपने। रब रहम करे आप पे, सब पे, मुझ पे। बहुत शुक्रिया। और इतनी प्यारी सी शायरी आपने सुनाई, बहुत प्यारी, बहुत उम्दा। और उसके बाद जनाब कॉल्स कुछ ऐसी आई, हमें हिला देने वाली कॉल्स हैं। और रेगुलर कॉलर हैं सनराइज रेडियो से, इनका बहुत सालों से साथ है और आती है कभी कभार। वैसे हमारे शो में हमेशा आया करती थी, अभी कभी कभी आती हैं मुझसे लड़ाई करने के लिए। पता नहीं कि उनको मजा आता है। पहले हमारा बड़ा इत्तफाक होता था, वो कोई वक्त होता था। वक्त के साथ कहते हैं कि रिश्ते नाते दोस्तियां प्यार मोहब्बत, कि ये जो रिश्ते होते हैं ना अपनों के, ये और ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन शाहीन जी की तरफ जनाब ये सिलसिला उल्टा है, ज्यादा लड़ाइयां हैं, ज्यादा गिले हैं, ज्यादा शिकवे हैं, ज्यादा तकरार है, ज्यादा वहम है। वहम इतना ज्यादा क्यों आपको? और आपने कहा कि काशिफ आप मगरूर हो गए हैं, अब आप बदल गए हैं। सच्ची ऐसा आपको लगा? मेरा ख्याल है ये आपका वहम है। आपने कहा नहीं, अब आप ईगो को पहले बीच में लाते हैं और फिर जो है ना आप पुराने रिश्तों को निभाते हैं। अब वही बात आ गई ना, ख्वातीन के साथ कोई भी मर्द बहस करेगा तो जीतेगा तो नहीं, और वो भी शाहीन जी बड़ी डाडी हैं। तो शाहीन जी आप जीती हम हारे, सारे इल्जाम हमने अपने सिर ले लिए, क्या याद करेंगी आप? आप खुश है ना? दिल की बातों को हमने छुपाया बहुत है, अपनों के लिए खुद को मिटाया बहुत है। लोग समझ न सके मेरी खामोशी का दर्द, हमने हर गम को हंसकर निभाया बहुत है। अब किसी से कोई गिला नहीं रहा, क्योंकि वक्त ने हमें सिखाया बहुत है। दिल की बातों को हमने छुपाया बहुत है, बस इतना ही कहेंगे आपको।

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 4:07।

या ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को। बिल्कुल जनाब, मैं हूँ आपका अपना काशिफ, सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम के जरिए आप हमें डीएबी के जरिए सुन रहे हैं योक्षे की वादियों में। और जनाब इसके अलावा दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए। औरंगजेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने कहा जनाब ये तुसा ही पूरी पाई सकने हो, ठीक आख्या पापा तुसा, कोशिश पूरी होनी ऐसा नहीं कि ऐसा पूरी पाइए, लेकिन ये जड़ी खेड है ना इसने जो पूरी पैनी नहीं कदा किसी ने। बड़े बड़े रुस्तम हारी गए तो काशिफ तो कोई शह ही कोई नहीं। तो पापा रऊफ, जनाब रऊफ साहब साढ़े नाल ने गुजरात दिया वादिया चो कदे खारिया जाके सुनते ने सानू अपने संगियों के नाल, कदे जनाब गुजरात ही। औरंगजेब भाई तुसा दी गल्लां मैं को ना हाले पूरियां करनियां सन, पर विच रऊफ हाशमी हरा निकोल अछनी पीना। तो जनाब जो रऊफ हाशमी आते हैं तो मैंने पता वो कहें पंजाबी गाना कोई ला दियो। और कोइंसिडेंट हुस्ने इत्तफाक उर्दू में कहते हैं इसको, कि औरंगजेब भाई आए उन्होंने कहा कि जनाब वाह वाह रौनक लाई ये था, कोई रौनक ही जिया गाना पर पंजाबी ना गाना लाओ। मैं पापा बाओ ना फिर पंजाबी ना गाना किस ना सुन सो, कुछ साढ़े पल्ले भी सच पाओ ना। असंगीत है एडिया डिया कोलां तो रोमांटिक है, पता नहीं किड़े किड़े पासे ले गए दुनिया वाले। कोई आना जी मगरूर होई गए, कोई आना जी तुसा असा की शायर बनाई छोड़िया, कोई आना जी बस गाने तुसा वास्ते ही न, कोई पता नहीं कितने चाई का खड़ने पे अपर बुलंदियों पर तै सटने ना जिन्हों ना राधा बहुत डाढ़ा। पर खेड असा खेडी भी है पहले, ये पांच सात पलवान चाई ने असा की सटने वास्ते, कले कले अछने ना कले न बंदे ना काम नहीं ना, ये पांच सात रली जासन तो फिर कोई हो सकना कोई सट्टी छोड़ो ना असा की। तुसा फिक्र ना करो औरंगजेब भाई साड़ी, इन राहों चो असा बड़ी बारी लंघे हाँ, समझ गए ना। तो लाने बाबा तुसा वास्ते गाना लोड़ी किंदा ना लम, जो मैं गल्ला लंबिया करा ना तो समझी जाएगा करो कि काशिफ नाल नाल गाने लोड़ना पिया। हरभजन मान तो हंस राज हंस जी ना तुसा आया सी कोई गाना, तो नाल तुसा आया जैजी बी ना गाना। तो पापा हूँ माड़े सामने हरभजन मान ना गाना इस सामने आई गया, ये लाने तुसा वास्ता। तो कोई इंसीडेंट इस वास्ते आख्या रो हाशमी साहब साढ़े नाल लैन तो वेट करते पे ने, तो जदों आते ने ना तो वह बड़ी मस्त तबीयत के बंदे ने। मैं तुहानू की दसा क्योंकि गल साडी होंदी है ना उन्हां नाल, बड़े रौनक मिजाज ने ते पता नहीं की खांदे ने। मैनू तो लगता उत्थे गुजरात के चिड़े बड़े मशहूर ने कि गुजरांवालां दे मशहूर ने, ये नहीं पता भाई चिड़े है मशहूर ने, लेकिन मैनू लगता वो सवेरे सवेरे नाश्ते च चिड़े खांदे ने भुज्जे होए, बड़ी शोख तबीयत दे मालक ने। तो इंजे रब उन्हां नू रखे रौनकी रौनकी तबीयत है उन्हां दी, ते सरकार उन्हां नाल भी गपशप लावांगे, लेकिन एडवांस उन्हां दे वास्ते पंजाबी गाना लाने आ। तो जदों भी आंदे ने ना तो एक गल मैनू कहंदे ने, कहंदे जी काशिफ जी तुहाडा शो सुनने आ ते नाल धमाला पाने आ। हाय तुसी धमाला तो पाते हो तो मैनू किधरे लगता है कि किसी दिन तुहानू पैगी ना चुक, लत्तां नू पै गए वल तो या बखोड़ पै गए तुहानू किधरे सज्जे खब्बे, तो फिर तुसा मैनू ही गिला करना कि भाई साहब तुसी गाने एहो जे लांदे हो असी अड्डियां चुक चुक धमाला पाने हाँ, तो या पै गई है चुक तो या पै गए ने वल। पंजाबी च उन्हूं कहंदे ने कड़ल, कड़ल कहंदे ना, तो कड़ल पै गए तो फिर तुसा मैनू इल्जाम देना है, तो मेरे तो अगे ही चौखे इल्जाम ने जड़े लै लै मैं फिरदा पिया जमाने विच। चलो एक अद्धा तुसी भी दे दोगे तो की होएगा, एक होर सही बंदा ठीठ होना चाहिए, की ख्याल है।
एनीवेज जनाब जबरदस्त गीत। अच्छा जी शाहीन जी आपका गाना हमने लगा दिया था, आज शाम होने आई, शाम होले पई कोई नहीं। सच आपको पंजाबी तो समझ आती नहीं है, आप उर्दू स्पीकिंग हैं और या फिर अंग्रेजी स्पीकिंग हैं। अंग्रेजी हमें क्या पता कैसे बोलते हैं, हाँ उर्दू में आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं कि जनाब आपके लिए गाना लगाया था, आपकी रूह राजी हो गई होगी। मीन टाइम जनाब ये खूबसूरत सा गीत एंजॉय करते हैं और जनाब जहां कहीं भी आप हैं मेरा शो सुनते हुए अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई, और स्माइल की वजह से ना कुछ लोगों की बड़ी क्यूट सी स्माइल होती है, उनके गालों में टोए पड़ जाते हैं। आपके गालों में टोए पड़ते हैं नहीं पड़ते, चेक करें ना जरा, चेक करके बताएं। नहीं पड़ते तो फिर भी आपकी हंसी बड़ी प्यारी है, लेकिन अगर आपके गालों में टोए पड़ते हैं फिर तो गाना ताडे वास्ते वे, फिर तो मर गए जनाब, असी मर गए।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
5: ऋषि's vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

0: जनाब एक कॉलर आई थी और उन्होंने कहा कि आपके गीतों की क्या बात है, जबरदस्त जनाब, ये मेरे गीत नहीं है, ये आपके गीत होते हैं, हम तो एक बहाना होते हैं यहाँ पे आपके लिए। आपने कहा जी बहुत ही अच्छा लगा और जाते हुए जो आप हमें इमोशनल करके जाते हैं वो आप क्यों करते हैं? मैं करता नहीं, मैं हो जाता हूं खुद इमोशनल और आप हो जाते हैं, एक कनेक्शन होता है ना दिलों का, दिल से बात निकलती है तो कहते हैं दिल तक जाती है, खलूस नीयत से दुआ निकलती है तो अर्श तक जाती है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कहां से शुरू करूं ये समझ नहीं आती है। कुछ बातें आपने कही, वो जनाब सर आंखों पे बहुत कुछ आपने पूछा, कहां तक सुनोगे जनाब, कहां तक बताएंगे? जब तक हो सका इस दर्द को छुपाएंगे। बहरहाल ये गीत आप सुनिएगा, शायद आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिले, कोशिश होती है। आपका दिल बहलाया जाए बस। आयशा जी आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा से आप आई हमें खुदा हाफिज करने के लिए इतनी जल्दी। तो आपने कहा नहीं आप रुक जाएं एक घंटा और, तो मैंने कहा काश रुक सकते, तो क्या आपने कहा फिर ऐसे चस्के ना लगाया करो कि इतनी जल्दी खुदा हाफिज कहा है, दुआएं दी हैं तो ले लिया करो। ठीक है जनाब, देख ले हमें ऐसे ऐसे खुदा हाफिज कहते हैं सब, बड़े मान से डांट डपट के। आसान नहीं है यहां पे बैठना हमारा, आप सब के साथ पूरी डालना। मैं वो किताब हूं जिसे कोई पढ़ ना सका, मैं वो ख्वाब हूं जो हकीकत में ढल ना सका, सबने चाहा मुझे अपने मतलब की हद तक। कोई मेरे दर्द की गहराई तक उतर ना सका, दिल में तूफान कहीं उठते रहे खामोशी से, मगर कोई मेरी आंखों को पढ़ ना सका, मैं वो किताब हूं जिसे कोई पढ़ ना सका।
1: आशिक हो जाना
0: साहब आसान नहीं है, आशिक हो जाना
1: सजाना

0: जनाब, होता क्या आशिक, होता क्या इश्क, कहा था ना तुम्हें, बार बार कहा था, ये वक्त तुम्हें बताएगा, हकीकत तुम्हें दिखाएगा, जो हम ना कह पाए, तुम्हारा अपना ही दिल तुम्हें वो हकीकत सुनाएगा।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
5: For your family treat this summer,
6: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
5: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
6: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
5: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
6: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: जनाब, देर आए दुरुस्त आए, तारिक जुल्फी भाई जान, आपके लिए, आपके सभी दोस्तों के लिए ये खूबसूरत सा गीत होगा। हमारी और आपके दरमियान जुदाई डालने वाला गीत होता है ये, आपको पता है। हमारे शो के आखिर में, शो भी इख्तिताम नहीं है, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा आपकी होती हैं और फिर हमें भी बातें करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपकी बातों को आप ही तक वापस पहुंचाना होता है। अमानत होती हैं आपकी बातें, आपका वक्त जो आप हमें देते हैं, कॉल्स करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनायत का एहसास दिलाते हैं हमारे दिल को। अपनी मोहब्बत से जी जनाब और तेज धड़काते हैं। आरव भाई जान, आपकी भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप हमेशा कॉल करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, आप भी आखिर में आए। बार बार आखिर कहता हूँ, आखिर नहीं है शो का। सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को गीत अच्छे लगते हैं, मेरी कोशिश होती है कि शो के आखिर में हमेशा 2-3-4 गीत बैक टू बैक आपके लिए लगाए जाएं। जिन दोस्तों ने गीतों को मिस किया, जो गीत सुनने वाले होते हैं, उनको लगातार गीत 15-20 मिनट आखिर में बैक टू बैक गीत सुनवाए जाएं। और नंबर एंडिंग विद 345, जनाब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अगर आप साथ में इंतजार में रहे तो जरूर आपसे बात होगी, वरना जनाब हम चले, ये चले और वो चले। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सब दोस्तों का जिन्होंने कॉल्स की और वक्त दिया और गपशप लगाई, गीतों का बताया, सभी दोस्तों का बहुत सारे नाम है, आपको पता है आप कौन कौन है जनाब। ये खूबसूरत से गीत और इसके बाद आने वाले सारे गीत आपके नाम होंगे। मेरे सारे जज्बात, मेरे सारे एहसासात, मेरी सारी दुआएं, मेरे सारे लफ्ज और कलमात सब आपके लिए, और सारे के सारे लम्हात आपके लिए। जनाब घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, लेकिन उससे पहले हमेशा एक बात कहता हूं, रिस्पेक्ट एवरीबडी विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट कलर और रिलीजन, जात पात रंग नस्ल मजहब के फर्क के बगैर हर किसी की इज्जत कीजिएगा, सिर्फ एक इंसान समझ के, फिर देखिएगा लोग आपकी भी इज्जत करेंगे जवाब में, सबसे पहले एक इंसान समझ के। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा, इंसानियत का रुतबा सबसे बड़ा, इंसानियत का दर्जा सबसे बड़ा, और बनाने वाला इंसान वो रब। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है, ये बात मैं कहता हूं कि आप उस रब के बनाए हुए बंदों की, इंसानों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें, आसानियों का वसीला बने, आसानियां पैदा करने की वजह बने इंसानों की जिंदगी में, तो वो इंसानों को बनाने वाला रब आपकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे मौजज़े आपको दिखाएगा कि आपकी सोच भी नहीं कभी जा सकती। ये मेरा चैलेंज है, इस बात की गारंटी है, सिर्फ एक बात की गारंटी कि रब आपको मौजज़े दिखाएगा, रब आपकी जिंदगियों में आसानियां लाएगा। अगर आप रब के बंदों की जिंदगियों में आसानियां लाएं, मुश्किलें ना खड़ी करें, दूसरों की जिंदगी में कभी भी मुश्किलात ना खड़ी कीजिएगा, खुदा का वास्ता। बस यही मेरा पैगाम होता है, दिल से होता है, ना स्क्रिप्टेड बात होती है, ना इतना कभी कोई लिखने पढ़ने का शौक रहा, ना इतनी लंबी चौड़ी लिखाई कभी हमने की, ना कलम के साथ कभी दोस्ती रही। जिंदगी की राह में जो कुछ, जितना कुछ देखा, समझा, सीखा, कुछ याद रहा, कुछ भूल गया, और कुछ याद आता है तो आपके सपोर्ट करता हूं कि हमारी ना सही, या शायद हमारी भी जिंदगी में आसानी की वजह यही नेकी हमारी नीयत के मुताबिक बने जो हम आपके सपुर्द ये अल्फाज करते हैं। शायद रब को यही बात हमारी भी पसंद आ जाए और हमारी बातें आपके काम आ जाएं, और आपकी जिंदगियों में भी, और आपकी वजह से दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हों। तो ये सिलसिला अच्छाई का, भलाई का, शायद हमारी आखिरत में भी हमारे काम आए, और दुनिया में भी, और आपके भी। आमीन सुमामी। तो लीजिए जनाब घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, वचोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन ही पहुंची। अपनी यादों में, बातों में और चाहतों में, और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे अपने काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी। जनाब सांसों की डोर से जुड़ी है सारी रौनकें, सारी बातें, तो इसलिए कहते हैं बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते साजगार हालात, बशर्ते सेहत, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए आपका और मेरा, मेरा और आपका, अल्लाह।

0: पकड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
4: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
5: Sunrise and Music.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274 488 935.

0: हो आयु।
1: मैं अपनी तारीफ करूं क्या, लंबी बड़ी कहानी, हिंदुस्तान पे राज है मेरा, दिल्ली राजधानी, मैं एक हिंदुस्तानी।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735, 043.

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: ठंडियाँ छाव।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा दे बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: Gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: Always Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश.

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वीकार खुश आमदीद, वेलकम है टू सुन गाइस रेडियो 103.2 एफएम, आपका होस्ट दोस्त यहाँ भी हाजिर है, मेरा नंबर वेज़ आम ही है टिल 11 का वीडियो शाम, और आप सबके नाम रंगे महफिल का प्रोग्राम है। टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, एज यू नो टुडे इज अ संडे इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, एंड यू आर लॉक्ड इन विद द स्टेशन सुंदर रेडियो ऑन 100.6 एफएम, 103.2 एफएम अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस, ब्रैडफोर्ड, कीटली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अकिंगटन, मिंटन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, और वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी सून इज गोना बी लॉन्चिंग ऑन डार्बी इन मिडलैंड में। और एक और खुश नसीबी है, और क्या कहेंगे क्या कहेंगे, आर यू रेडी टू ब्रेक द ब्यूटिफुल ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू ऑल दोज ब्यूटिफुल कॉलर्स, और उनके लिए खुशखबरी है कि क्या खुशखबरी खबरी है कि यहाँ पे आपको पता है कि सुनर रेडियो अगेन बिग ऑन पैच है, वेरी वेरी वेरी वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग ऑन लंदन ऑन डीएबी पे, और क्या कहने जी, और वाओ दैट विल बी द ब्रेक थ्रू एंड दैट विल बी द अमेजिंग, एंड यू कैन हेयर अस ऑन द राउंड द वर्ल्ड अराउंड द कंट्री ऑन www.sunriseradio.fm, और नॉट फॉरगेट www.sunrise.radio, that is all about on, yes definitely, long as you got the facility for the internet you can catch me anywhere, and yes Sunrise Radio coming to your house, your place, your factory, your mill, your office, wherever it is, सुंदर रेडियो गेटिंग बिगर एंड द बेटर एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो हमें याद करें फ्लश करें, और थोड़ी देर के बाद आप सबकी हाजिरी लगा यहाँ पे लगाऊंगा डेफिनेटली, और हाजिरी लगाने के नंबर वही है 01274306 7, काफ़ी यहाँ पे रौनक आ रही है, काफ़ी दोस्त हमें याद कर रहे हैं, और आज हमारी खुश नसीबी है सबसे पहले कॉल आ रही है मदरसा कियानी साहब, वाह वाह वाह वाह, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, और कियानी साहब वेलकम जी, अन खुश आमदीद आपको भी, कहने सिमी जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, वेलकम जी, अन खुश आमदीद, वाजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा, रेखा जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, विद हेल्थ नंबर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, हिट ऑफ द आवर आई एम गोना बी प्लेइंग फॉर यू ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स जो हमें याद कर रहे हैं और याद करने वाले हैं, उन सब के लिए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर, आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, एंजॉय वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून, एंजॉय
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio, hit of the hour.

0: Right, that was the hit of the hour. आपने enjoy किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के यहाँ पे लाइन ने चमक रही हैं, धमक रही हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका प्यार मोहब्बत अचार खलूस है कि आप हमारा साथ दें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: We're around the time in the studio, 16 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked on with the power of his con. Bobo Shukriya, aap sab ka bhi. Aur yahan pe choti si break, nikki ji break, nikki ji nanni munni ki choti si break hogi. Aur break foran baad geet hoga, sab doston ke naam hoga, jo hame phone kar rahe hain aur kar chuke hain. Bobo Shukriya, aap ka bhi. Aur un sab ka hame naam lunga, dobara Bobo Shukriya, aap ka. Thank you very much. Aur jo with the help number mujhe phone kar rahe hain, Bobo Shukriya, आपको भी थैंक यू वेरी मच. हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच आपका भी. और हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त आ गए और होए होए होए सदके जावा कुर्बान जावा, वाह वाह वाह वाह, देखो ये हमारी महफिल में कौन आया और होए होए होए क्या कहने. और आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच. और आज का मकसद हमारा यहाँ पर बैठने का पूरा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और बहुत अच्छा लगा, यहाँ छोटी खबरें करेंगे, कीप इट लॉक्ड.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ.
4: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ.
3: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
4: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ.
3: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
4: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935.
5: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया गिदन भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पापी जान ने बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, थैंक यू वेरी मच फोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए गीत आने वाला है थोड़ी देर के बाद होगा, अब्दुल कयूम शाह फ्राइडिंग और से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मदरसा कैनी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सेमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच। वाजिद भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप हमें दोबारा फोन करेंगे, आपसे भी हम कलाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। मदरसा कैनी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सारा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या कहने क्या कहने कहने। मैं बाहर किसी जगह पे मैं थी और मैंने सोचा कि परवेज का प्रोग्राम होगा और दौड़ के आप आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, ये होती है खूबसूरती होती है। और हमारे साथ हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त, ओए होए होए सदके जावां, वेलकम वेलकम बाक जी अनु, खुश आमदीद। हमारी रौनक आ गई वापस माशाल्लाह। भाई चौधरी रुखसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ माशाल्लाह ऐसे था कि आप भी हॉलर में थे, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शायद बद रखे, और ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। और आपने इतनी मेरे लिए दुआएं की हैं, और हमारे शमीन के लिए दुआएं की हैं, हमारे भाइयों के लिए दुआएं की हैं, हमारे बेटे के लिए दुआएं की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शायद बद रखे। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आपने भूले नहीं हैं, वहाँ भी जाके और आपने ज़ियारत की है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप आए और दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। एनीवे, आने वाला गीत मैं पेश करूंगा अब्दुल कयूम साहब फ्राइडिंग और से, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है और योर फेवरेट गीत है, आपका फेवरेट गीत है, मेरा फेवरेट गीत है। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। थोड़ी सी रेडी कल हो रहा आ जाओ, या रेडी की आवाज़ ऊपर कर लो। और डॉक्टर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे। चौधरी फरियाज साहब हैं, हमारे दिल जाने हैं, और माशाल्लाह हमारे लाडले हैं, लाडले आ गए। और नशीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे। नशीन जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुबारकबाद पेश की है, मुझे नहीं पता किस वजह से आप मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे। शाहपरी जी हैं, जिलेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यासमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थोड़ी देर के फर्दन फर्दन आपके लिए गीत होंगे, और ये गीत में अब्दुल कयूम साहब फ्राइडिंग और से, ये गीत आपके लिए होगा। एंजॉय द ट्रैक।

0: Wow, what an amazing tune. That was one of my favorite tunes. आपने enjoy किया. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिसेस पटेल. आपने हमें याद किया बर्मिंघम से और आपने तारीफ किया. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. आपके लिए था, आपने enjoy किया. और गिदिन भाई आपके लिए, हमारे पापी अनुष्मिता जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक. उससे पहले हमने यहाँ पर छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक करनी है. ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर योर ब्यूटीफुल गाना होगा, जो आने वाला गीत होगा. और आज कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, वॉट इज़ योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. और बहुत ही खूबसूरत कहते हैं ना कि जिंदगी है और इट डिपेंड ऑन यू. और हमेशा मैं कहता हूँ दोस्तों, ऑल डिपेंड ऑन यू, कैसे आप जिंदगी को इन्जॉय कर रहे हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत अच्छा लगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारे साथ मधु हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाडले, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका नाम लिखा हुआ था यहाँ पे लाडला, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर यू अमेजिंग ट्रैक होगा. सोनी जी आने वाला गीत आपके लिए भी पेश करूंगा. जब मैं वापस आऊंगा आपका नाम लूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
1: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: Right, welcome back. Listen, you're listening to Radio 103.2 FM and 100.6 FM. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Moving on to another beautiful track. और ये गीत में पेश कर जो हमारे जो मैनचेस्टर वाले प्रेजेंटर्स आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. ये गाना आपके लिए होगा और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे. मदरसा कियानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये मैं गीत में आपके लिए पेश करूँगा और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें याद किया है. और बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच. और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. चौधरी मदरसा कियानी साहब ये आपके लिए. चौधरी फैसल साहब हैं, राजा आसिफ साहब हैं, राजा चौधरी बिशारत हुसैन हैं, राजा नबील सफदर कियानी साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, जंगीर साहब हैं और चौधरी फरियाज साहब हैं. ये गीत आपके लिए होगा और आपकी तरफ से उन दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि वो इन्जॉय करेंगे. मदरसा कियानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. आपका फेवरेट गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे. थोड़ी देर रेडी कॉल हो रहा जो रेडी की आवाज़ ऊपर कर लो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यही गीत मैं पेश करूँगा. हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे, शादाबाद रखे, उनके लिए होगा. और थैंक यू वेरी मच. हमेशा ही हमें याद करते हैं और आज भी उन्होंने याद किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और ये हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत और जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है. सोनी जी ये गीत आपके लिए होगा और आपका फेवरेट गीत है. और बिल्लो जी ये गीत आपके लिए भी होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप ही इंजॉय करेंगे. आने वाला गीत बिल्लो जी आपके लिए. अतिका साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. सारा जी ये गीत आपके लिए भी. आप ही क्या याद करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बहुत सारा बटर आज लगाया और बहुत बहुत अच्छा आपका. और हमें अच्छा लगा मदरसा कियानी साहब आपके लिए. और रुखसार भाई हमारे जान प्यारे भाई ये आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. आसिफ रियासत साहब ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और तौकीर शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. आपकी तरफ से होगा. हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए होगा. और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और थोड़ी देर के बाद मैं आप सब दोस्तों का नाम लूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये गीत है जो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करें. बड़ा ही नायाब और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रक. एंजॉय.

वाओ दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के बेन भाई का और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मुझे अच्छा लगा कि आपने हमें याद कर रहे हैं और दोबारा आपने फ़ोन किया वाजिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपकी तरफ से होकर सब सुनने वालों के लिए आपने सबको सलाम पेश किया फर्दन फर्दन और जो लाइव कॉल में आएंगे मैं उनको बता दूंगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और सलाम दुआ की है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच हमें अच्छा लगा और हमारा साथ दे रहे हैं नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा और सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अतिका साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये आने वाला गीत में पेश करने जाए अतिका साहब आपके लिए होगा और आपके जो सखियाँ सहेलियाँ हैं उनके लिए गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे और यही गीत मैं पेश करूँगा आपकी जो सखी सहेलियाँ हैं और गिदन भाई हैं और हमारे पापी जान हैं सुमित्रा जी हैं उनके लिए गीत होगा शकील साहब हैं ईरा खान हैं और हमारे मोहतरम हैं भाई हैं उनके लिए आपने सुनने की ख्वाहिश की है और जो भी प्रेजेंटर साथी हमारा मंचस्टर वाले हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे अब्दुल कजीम साहब ये गीत आपके लिए भी होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मुझे आपने हमें याद किया और थैंक यू वेरी मच ये गीत आपके लिए पेश करें और ये खूबसूरत गीत होगा और उससे पहले छोटी सी हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारा साथ कौन दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी छोटे पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपने सलाम पेश किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमें पैगाम दिया है और बहुत अच्छा लगा मैं आपका जो पैगाम है मैं आगे पहुँचा दूंगा और देखता हूँ क्या होता है और आपने याद किया और बड़ा ही अच्छा और बड़ी अदब अदाब से आपने याद किया और हमेशा कहते हैं कि मैंने काम पर होता हूँ और शाम के वक्त और आपका लाजमी प्रोग्राम में सुनता हूँ वेनसडे और संडे को और बड़ा ही अच्छा लगता है बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू वेरी मच है और आपने हर खुशी ने सलाम पेश किया है और छोटे पीर साहब तो की शाह जी को अपने सलाम पेश करें और अपने सब सुनने वालों को सलाम पेश किया है और आपने सलाम पेश किया जवेद मीर साहब को भी सलाम पेश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच है और आपने सलाम पेश किया है हमारे गिदन भाई और हमारे पापी सुमित्रा जी को उनको आपने वेलकम किया है जी एन के खुशामदी किया है उनके लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून है और कहते हैं कि हम दिन को हम सोए होते हैं तो रात को हम जागते हैं और रात को प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगा हमारे छोटे पीर साहब हैं बड़े अच्छे हैं बड़े प्यार करने वाले हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है और तो कीशा जी आपके लिए गाना सुनने की फरमाइश की है बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच आपने भी हमारा साथ दे रहे और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के लिए होगा आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून बहुत ही नायाब गीत है वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉल्स आर वर्किंग अवे हरकत नाल बरकत होनी है ये गीत आपके लिए होगा इफ यू ड्राइविंग एंड ड्राइव विद द केयर एंड इफ यू आउट एंड अबाउट स्टिक अराउंड विद द सुन्नत रेडियो और जो बच्चों के साथ पार्टी वगैरह मना रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया बारबेक्यू हो रही है काफ़ी और आपने हमें भी इन्वाइट किया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच है और मैंने वैसे हमेशा भी कहता हूँ कि मैं अगले जो महीना है दो महीने हैं मैं बहुत ही बिजी हैं और आपने मेरे लिए खुशन दुआ करनी है और अल्लाह पाक हमेशा आपको भी खुश रखे और आपने हमारे लिए दुआएं करनी है दुआएं के लिए हमेशा मैं ग्रीडी हूँ इंतज़ार करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआएं करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शकील साहब ये गीत आपके लिए होगा हमारे छोटे पीर साहब हैं उन्होंने हमें याद किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच

0: वाओ दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, और बहुत अच्छा लगा. आप हमारा साथ हैं, थैंक यू वेरी मच. और छोटे पीर जी, आपने गाने को पसंद किया, कहते हैं बड़े दिनों के बाद में गाना सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ. एफ रहमान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर को देख रहा हूँ कि ये कंप्यूटर जी हमारा ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने करना है, टाइम चेक करना है, और कंप्यूटर जी हमारे साथ आपने देना है ये मस्ती मेरे साथ. आज मस्ती नहीं करनी है और किसी की लाइन ड्रॉप नहीं करनी है और ना करेंगे. तो यहाँ पे आपने जो भी मसले मसाइल हैं अभी कर लें और उसके बाद आपने नहीं करना है.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: Right, according to Sunday Radio, it's 44 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Barbies Khan. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पर छोटे से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद एक खूबसूरत गीत आने वाला है और नायाब गीत आने वाला है, वन ऑफ माई फेवरेट गीत होगा. और क्या गीत होंगे और क्या ज़बरदस्त गीत है और क्या कहेंगे उसके बारे में, जितनी भी मैं उसकी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि वो गीत ही ऐसा है. ओए होए होए होए होए, क्या गीत, क्या जबरदस्त गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, और क्या कहेंगे. और काश यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई भी गाना पेश करें, यहाँ पे वो टिक करें, वहाँ पे वो गाना आ जाए, क्या है ऐसा भी होता. वो भी इंशाल्लाह वो टाइम आने वाला है, टाइम आएगा, वो भी टाइम आने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम आने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एनीवे यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Right, and that was one of my favorite tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much. और हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं जो मैनचेस्टर में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. वो हमारे साथी प्रेजेंटर हैं मैनचेस्टर में, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. एंड यू नो व्हाट, थैंक यू फॉर लवली वर्ड, लवली कॉमेंट इज वेल. और बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आपसे मुलाकात भी हुई है, और बड़ा ही अच्छा लगा, दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने माशाल्लाह ब्रेफ में थे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अजान होनी चाहिए, मगरिब की अजान इन ब्रेफर्ड यॉर्कशायर में अभी टाइम होने वाला है, और कोई बात नहीं, और यहाँ पे अजान शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं हूँ ना, और मैं खुद पेश कर देता हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, अपनी अपनी मकामी टाइम देखे सुन के अपने नमाज अदा करेंगे, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और मेरी पूरी टीम के लिए दुआ करनी है. कीप लॉक टू द सुन राइट रेडियो, और यहाँ पे मगरिब की अजानों की ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त बाब अजीज हैं, हमारे अपने हैं, हमारे सज्जन हैं, या अपनों की महफिल है, सज्जनों की महफिल है, सज्जन आ रहे हैं और एक बैठक है और माशाल्लाह एक फैमिली प्रोग्राम है जिसमें आप शिरकत करते हैं और अफजाई करते हैं, दुआएं करते हैं एक दूसरे के साथ माशाल्लाह। और एक फूलों का गुलदस्ता है यहाँ पे, महक आ रही है, खुशबू आ रही है और आप दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, खलूस है और बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 9:09 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. और शिवाकर रसूल जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने थोड़ी देर के बाद हमें याद करेंगे तो बहुत शुक्रिया थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। और आपसे भी हम गाना सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। नदीम मंसूर साहब, आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, किसको कहेंगे यहाँ पर, और देखते हैं हमारा साथ कौन दे रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, वो हमारा साथ दे रहे हैं। वेलकम, जी आइए, खुश आमदीद कहेंगे।

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो और यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ पे वन एंड ओनली वन हमारे लाडला जी हैं और यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब बिस्मिल्लाह, जी आई खुश आमदीद अहलन व सहलन। शेषी ठीक है मेरे भाई की?
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके लिए सर ये जी हजूर
1: जी तुसा बड़ा शुक्रिया जरा तुसा इतना सारा ख्याल रखने हो।
0: माशाल्लाह क्यों ना सर, क्यों ना सर, आंखों पे
1: ठीक है
0: जी।
1: और कोई हुक्म?
0: माशाल्लाह हुक्म कहते हो आन आ रहे हो हवा के दोष में और माशाल्लाह आए हो और बड़ा खुशी हुई है। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बाहर आ गई है और दिल बाग बाग दिल गार्डन गार्डन हो गया जी।
1: वाह
0: क्या कहने।
1: अच्छा मेरे तो पीछे मेरे बाजी ने,
0: हाँ अतिका साहब है ना, जी जी जी और जी जी
1: जी
0: जी
1: जी पहले
0: नशीन भी और एक और हमारे बहुत ही प्यारी बहना है सोनिया जी, वो हमेशा आपको सलाम पेश करनी है, हमेशा ही आपको सलाम दुआ और भी प्रोग्राम सुनने पे तो कहने के सब कुछ काम शाम करके बैठे हैं प्रोग्राम सुनने पे तो ठीक है थोड़ा होल्ड करो। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया और ये आपके लिए दोबारा वाह। ये हैं हमारे मोहतरम भाई दोस्त चौधरी फरियाज साहब, देखो इनका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा दिल है और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमारे कमेटी जी कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक कर लें। वाह जी वाह, सदके जावा कुर्बान जावा कमेटी जी, आज आपने मेरे साथ कोई मस्ती नहीं करनी, ठीक है ना, आज मस्ती नहीं करनी, ठीक है, ये ना हो कि ये जो कमेटी जाना बार रोड पर पड़ा हो और ये जो ना यहाँ पे एनी वे कोई मसला नहीं। और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा हुक्म है और अतिका साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: Three-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब का, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, अतिका साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उनके हम वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: आप ठीक ठाक? अच्छे ठीक है आपकी?
4: सब आपकी दुआएं हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब का जिन्होंने आपको मौका दिया, वैसे वो पहले थे,
4: उनका बहुत बड़ा दिल है, वो वैसे भी भाई हैं तो भाई तो ऐसे ही सलूक करते हैं ना। अच्छा
0: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने,
4: उनके क्या कहने, उनका बहुत बड़ा दिल है
0: जी जी,
4: तो अल्लाह पाक उन्हें ऐसा ही रखे और बड़े दिल के साथ, क्योंकि वो अतिका के भाई हैं तो अतिका की तरह वो भी बड़े दिल वाले।
0: हाय हाय क्या कहने क्या कहने। और सुन लो सुन लो जी, सुनो सुनो क्या हाल है। और वाजी वाह
4: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: वाजी वाह क्या कहने क्या कहने,
4: बहुत बहुत सलाम,
0: वालेकुम सलाम।
4: और सबसे पहले तो इस रंगे महफिल के जितने सितारे हैं
0: जी जी माशाल्लाह
4: और चांद हैं
0: जी जी
4: उन सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वाह जी वाह।
4: आपको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम माशाल्लाह।
4: आप मौका देते हैं इस रंगे महफिल में शामिल होने का
0: माशाल्लाह
4: सब आप ही की वजह से है
0: जी।
4: और आप आते हैं तो वो कहते हैं ना आप दिल गार्डन
0: दिल बाग बाग हो गए माशाल्लाह क्या कहने जी। और आपकी आवाज़ को सुनने और वो हमारे मोहतरम भाई हैं मैनचेस्टर में हमारे प्रेजेंटर साथी हैं वो प्रोग्राम सुनने वो आपको सलाम पेश करें और चौधरी फिराज साहब उन्होंने सलाम पेश किया जी।
4: उनको बहुत बहुत सलाम जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती है
0: जी जी
4: सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं।
0: वाह जी वाले।
4: और आपने सॉन्ग आज भी इतने खूबसूरत सॉन्ग लगाए मैं कहती हूँ क्या उनकी तारीफ करें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
4: बहुत ही खूबसूरत आप सॉन्ग चुन चुन के लाते हैं और बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाते
0: हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया
4: आपका। बहुत शुक्रिया।
0: वाह जी वाह क्या कहने।
4: बाकी ये जो हमारी सारी सखी सहेलियाँ हैं सुमित्रा जी हैं गीदर भाई हैं सुमित्रा जी और गीदर भाई ने लास्ट टाइम भी
0: बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाए जी जी
4: बहुत खूबसूरत जब भी आते हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं। आज भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उसी तरह
0: आज तो धमाका करेंगे आज क्या करेंगे
4: आज
0: बम फोड़ेंगे आज। वाह जी वाह।
4: बहुत ही खूबसूरत आवाज होती है। अल्लाह पाक सलामत रखे। रेखा जी हैं नशीन जी हैं शाहपरी हैं जुलेखा जी हैं सलीना जी हैं आसिया जी हैं रुखसाना अफजल हैं और हमारे भाई चौधरी फरियाद साहब हैं जिनकी खूबसूरत शायरी सुनने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं आज भी वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत शायरी होगी। तो जवेद मीर साहब हैं और नदीम मंसूर साहब है उनकी क्या तारीफ करें।
0: वाह जी वाह। उनकी क्या तारीफ करें क्या कहें। वो आएंगे थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वो आएंगे। और हमारे मोहतरम में इशफाक रसूल साहब बड़ी उनकी खूबसूरत आवाज है बड़ा खूबसूरत गीत गुनगुनाते हैं वो भी आएंगे थोड़ी देर के बाद।
4: जी इशफाक साहब को सलाम।
0: जी
4: शान साहब है उनको सलाम।
0: जी
4: और पापा जी है उनका भी वेट करेंगे।
0: जी
4: और शकील जी है वो तो आएंगे जरूर।
0: हाय हाय क्या कहने
4: शायरी से सबका दिल लूटे।
0: हाय हाय क्या कहने वो लूटने के लिए आते हैं वाह क्या कहने। वाह जी वाह।
4: महफिल लूटते हैं सबके।
0: जी, जी।
4: सलीम भाई हैं
0: मोहम्मद रफी साहब
4: अब्दुल कय्यूम साहब हैं।
0: वाह
4: अब्दुल कय्यूम साहब के क्या कहने।
0: उन्होंने जो गीत गुनगुनाया था वो क्या खूबसूरत गीत था बड़ा प्यारा गीत है। वाह वाह
4: बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी और बहुत खूबसूरत वो गीत और शायरी करते हैं।
0: जी जी
4: तो सजाद साहब हैं और मुदसर कियानी साहब हैं वाजिद भाई हैं साजिद पहलवान साहब हैं एफ़ए रहमान साहब हैं और महबूब इलाही साहब हैं वो बनाएं और खूबसूरत सॉन्ग सुनाएं
0: माशाल्लाह।
4: और तारिक भट्ट साहब हैं राना नवीद साहब हैं चौधरी रुखसार साहब हैं रावजर हुसैन साहब हैं सबको आसिफ रियासत साहब हैं सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: और कुछ अशआर हैं सबकी नजर करेंगे।
0: जी अशआर।
4: ख्वाबों की देखभाल में आंखें उजड़ गई तन्हाइयों की धूप ने चेहरा जला दिया।
0: वाह वाह क्या कहने।

0: के आएगी वो बहार,
1: वाह
0: क्या फिर कभी ना आंख में उतरेगी वो धनक,
1: वाह क्या कहने,
0: जिसके बफूरे रंग से जलकी हुई हवा करती है आज तक एक जुल्फ में सजाए हुए फूलों का इंतजार,
1: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
0: ख्वाबों की देखभाल में आंखें उजड़ गई, तन्हाइयों की धूप ने चेहरा जला दिया,
1: वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब।
0: टूट कर बरसे तेरी याद के फूल,
1: वाह।
0: फिर हुई रात ना गहां बारिश, एक नए कर्ब का प्यासा बेवजूद, एक नए ख्वाब का जहां बारिश,
1: वाह।
0: एक नए ख्वाब का जहां बारिश, हिजर की धूप दिलाती है याद, प्यास भड़काती मेहरबान बारिश,
1: वाह।
0: हब्स जहां किस तरह सहारेंगे,
1: वाह क्या कहने,
0: पल दो पल दे हमें अमा बारिश,
1: वाह क्या कहने,
0: ख्वाहिश वसल इस्तआरा है, भूल सकते हैं हम कहां बारिश,
1: वाह।
0: कर्बे यारा की तेज तर खुशबू, किश्ती ख्वाब बादबां बारिश,
1: वाह।
0: टूट कर बरसे तेरी याद के फूल,
1: वाह बहुत खूब।
0: फिर हुई रात ना गहां बारिश, किधर चलाई
1: जी जी,
0: जिसकी बातों से खुशबू से रूह तक महक जाए, ये हमने लिखा है थोड़ा सा
1: जी जी,
0: जिसकी बातों की खुशबू से रूह तक महक जाए,
1: वाह।
0: कोई तो ऐसा हो
1: वाह,
0: जिसकी मोहब्बत से मोहब्बत हो,
1: वाह क्या कहने,
0: जिसके कदमों की आहट से दिल में हलचल हो, कोई तो ऐसा हो,
1: वाह बहुत खूब।
0: जो वफाओं में बा कमाल हो, जो मोहब्बतों में लाजवाल
1: हो, वाह क्या कहने,
0: जो मोहब्बतों में लाजवाल हो,
1: क्या कहने,
0: कोई तो ऐसा हो, जो मेरे जैसा हो,
1: क्या कहने, बहुत खूब।
0: जिसकी बातों से खुशबू से रूह तक महक जाए,
1: वाह वाह वाह,
0: कोई तो ऐसा हो,
1: क्या कहने,
0: बिखरे हुए माजी के कर्ब जरा समेट लेना, बिखरे हुए माजी के कर्ब जरा समेट लेना,
1: वाह।
0: फुर्सत मिले तो खोए लम्हे जरा समेट
1: लेना, वाह वाह वाह वाह।
0: आंखों में जो बरसों से ठहरी है नमी,
1: वाह।
0: वो बेसदा सी बहते कतरे जरा समेट लेना,
1: वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: मुमकिन है फिर ना लौट के आए वो एक शाम, यादों के सब सुनहरे लम्हे समेट लेना,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: हर शख्स छोड़ जाएगा एक दिन निशाने गम,
1: वाह।
0: अपने ही दिल के सारे जख्म जरा समेट
1: लेना, वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: शायद मेरी आहट में कोई दर्द भी शामिल हो,
1: वाह।
0: शायद मेरी आहट में कोई दर्द भी शामिल
1: हो, वाह।
0: दिल पर बिखरे सब अफसाने समेट लेना,
1: वाह।
0: उम्र भर जिस रियाजत में खुद को खो बैठे, वो ख्वाब वो सब पैमाने जरा समेट
1: लेना, वाह।
0: वक्त की गर्द ने धुंधला दी सब तस्वीरें, वक्त की गर्द ने धुंधला दी सब तस्वीरें,
1: वाह।
0: याद के रोशन वीराने जरा समेट
1: लेना, वाह वाह वाह वाह।
0: हम भी एक रोज तेरी याद से रुखसत होंगे, हम भी एक रोज तेरी याद से रुखसत
1: होंगे, वाह।
0: मेरे हिस्से के सब नजराने समेट
1: लेना, वाह।
0: मेरे हिस्से के सब नजराने समेट
1: लेना, वाह।
0: बिखरे हुए माजी के कर्ब जरा समेट
1: लेना, वाह।
0: फुर्सत मिले तो खोए हुए लम्हे समेट
1: लेना, वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
0: तो ये थोड़ा सा सहमे नहीं दरिया के धारे की बात कर, इस दश्त बेकरा के किनारे की बात कर,
1: वाह।
0: दुनिया के मसलों में मुझे भी शरीक रख,
1: वाह।
0: मेरे दरीदा दिल के बिचारे की बात कर, रहने दे जिक्र सूद किसी और वक्त पर,
1: वाह।
0: राहे वफा में मेरे खसारे की बात
1: कर, वाह।
0: मैयार के नाम मुझको कमोबेश में हर परख, तुझको अगर कबूल हो सहारे की बात कर,
1: वाह क्या कहने बहुत खूब।
0: हम बोरिया नशी तेरे शाह भी तो हैं, हम बोरिया नशी तेरे शाह भी तो हैं,
1: वाह।
0: या लौट जा या साथ गुजारे की बात कर, सहमे नहीं दरिया के धारे की बात
1: कर, वाह वाह। अब
0: दस्त बेकरा के किनारे की
1: बात कर। वाह जी का
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपका कि आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत शायरी की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। राइट, दैट वाज अतीका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उनका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमारा मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, चौधरी फ़िराज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजूर,
2: जी वालेकुम सलाम,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह, और खैरियत ठीक है मेरे भाई की? अल्लाह पाक का शुक्र, करम है करम है करम है, तुखाना क्या कहते हैं कि शहर भी ठीक है, तो यूके भी ठीक है, तो आपने अपनी सुनाओ कि तुखाना मौसम क्या कह रहे थे, ठीक है मौसम तुखाना था, दिल्ली का मौसम
2: ठीक ठाक,
0: सब ठीक है, दिल्ली का मौसम क्या कह रहे हैं?
2: मौसम बारिश होनी रहनी है हर रोज हो जानी
0: है। अच्छा चलो,
2: निकी
0: निकी बारिश, निकी बारिश होनी रही है,
2: ਪਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਬਾਈ ਨੇ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਆਰਜ਼ੂ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ,
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ,
2: ਔਰ ਮੁਹਤਰਮ ਆਮਰ ਬਾਈ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਜਿਦ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਯੂਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਵੇਦ ਮੀਰ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਸੀਮ ਬਾਈ ਨੇ, ਨਵੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਜ਼ੀਮ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਰੁਸਕਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਇਕਰਾਮ ਬਾਈ, ਬਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਈ, ਨਸ਼ਮਰੇਜ ਬਾਈ, ਅਰਫਾਨ ਬਾਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਈ, ਔਰ ਮਨੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਲੀਫੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਜੀਤ ਜੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਦਮ ਸਹਿਲੇ, ਸਭਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ,
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ,
2: ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ
0: ਜਿੱਥੇ
2: ਪਰਵਾਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਮਾ ਅਦਬ ਜਲਾਨ ਨੂੰ ਜੀ
0: ਕਰਦਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
2: ਕੋਲ ਵਾ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਕਮ ਨਬੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਖਾਦਮ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਨਾਨ ਨੂੰ
0: ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
2: ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਫੇਰ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ, ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਰੂਹ ਸੰਗਾਰਾਂ ਕਦੋਂ,
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ,
2: ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ਮਾ ਰਸਾਲ ਦੀ ਲੋ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵਾਰਾਂ ਕਦੋਂ,
0: ਵਾਹ
2: ਖਾਦਮ ਅਸਰਤ ਹੈ ਬੇਤਾਬ ਸੀਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦੋਂ,
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ,
2: ਬਾਬਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ,
2: ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ
0: ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਐਸੀ ਐਸੀ
2: 105
0: ਜੀ ਜੀ मेरे ख्याल 125 जी जी जी ऐसा ही था जी जी
2: जी
0: हाँ ऐसा ही था जी जो कह रहे ना वो फरमा रहे सही फरमा रहे जी
2: जी जी
0: जी जी
2: उन्होंने शेर उन्होंने महबूब ना नासिक करना उन्होंने शेर उन्होंने शायरी में चन्ना ना अक्सर ना जिक्र होना
0: जी जी
2: शेर पढ़ा चन्ना तो आखो पुछ पुछ लोक ना थके हो साफ दिल बार दस दस के जीव विच दर्दान थक गई है।
0: वाह जी वाह।
2: जिस दी याद उस कदी ना याद कीता, जिस दी याद उस कदी ना याद कीता, कर कर शोर फगां कट गई है। मुनसफ होया जमाना चन मेरा, ओदे बेवफाई दे खौफ दी जान भी कट गई
0: है। हाय हाय हाय हाय। वाह जी वाह, बहुत खूब।
2: ये लिखने ने के अचन चेत प्यारियां कुछ कीता, चाचित अवेलियां बंद कर गए, जेडी उबदी जंदरे मार पके संगल गमा दे नाल पे बंद कर गए।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: जिन्नो कैद कर इजर दे जेल खाने, अति खोलना फेर सुगंध कर गए, खूबे चेत जमान मोहब्बतां दे पे सारी उम्र दी कैद पसंद कर गए।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: अच्छा फिर लिखने ने के बाग बेशदी सैर खोलूं, बाग बेशदी सैर खोलूं, कुछ यार दी करनी गदाई चंगी, हर हाथ जंबीर सदा दिए करनी दोस्तां संग पलियाई चंगी।
0: वाह जी वाह, चलिए सब। वाह।
2: दर से जा दीदार दी भीख मंगिए, दर से जा दीदार दी भीख मंगिए, असर वसल दी गल छपाई चंगी, पावे आप जमान जद खैर सोना, पावे आप जमान जद खैर सोना, उदों होर केड़ी बादशाही चंगी।
0: वाह जी वाह, चलिए सब। वाह, मन गया।
2: अखिया तरसदा रूह मजरूह मेरा, जिने तरसदी है मच्छी बिन पानिया दे। तरसदा रूह मजरूह मेरा, जिने तरसदी है मच्छी बिन पानिया दे, विच दीक दे उम्र विच दीक दे मुद्दतां गुजर गिया, मिले खत पैगाम ना जानिया दे।
0: वाह जी वाह, चल शबा।
2: अखी नीर जारी चम चम बरसे, कर कर याद वेले वे मौजा मानिया दे, गुजरे चन जमान ना चन दिता, जाली जान मेरी दुखा आनिया दे।
0: हाय हाय हाय हाय। वाह चौधरी साहब, मन के
2: ते जनाब, और कुछ और शायरा ने एक दो शेर पेश करता हूं।
0: जी जी।
2: ते फिर तुसा को इजाजत कीता कि टाइम ज्यादा ना हो जाए।
0: जी जी।
2: ते साडे अमजाब भाई ने
0: अली हमजा साहब
2: ने उन्हां ने शायरी बड़ी खूबसूरत होनी है।
0: जी अली हमजा
2: साहब। देवाने ने के चल दिला वीराने नु जा मिले।
0: हाय हाय हाय।
2: चल दिला वीराने नु जा मिलिए, इस मेले विच सारा गुजारा नहीं है, दौलत मंदा नहीं ते सब कदर कर दे, तेरा मेरा कोई इत्थे सहारा नहीं है।
0: वाह चौधरी साहब वाह।
2: बस्ती दूर जा अपनी आबाद करता, इस अलावा कोई होर विचारा नहीं है, जिंदगी उधरे गुजारता अली हमजा, इत्थे वापस मुड़ाना दोबारा नहीं
0: है। वाह जी वाह, क्या कहने।
2: फिर आखने ने के हुसन मंदा ने गहरे गहरे फरेब कोलो, हुसन मंदा ने गहरे फरेब कोलो, दामन अपना उन लगना बचाना पैसे, है बचन वास्ते मकरो फरेब कोलो, बचन वास्ते मकरो फरेब कोलो, किसे दूर वीराने विच जाना पैसे, छोड़ मकतब हुसन परस्तिया ने उन्हें अखियां की खूब समझाना पैसे।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: जिंदगी ऐश विच कटी, कटन ले अली हमजा, नाजक दिले के पत्थर बनाना पैसे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: ते आखरी शेर जनाब खलील आसम साहब ना।
0: जी जी जी।
2: खूबसूरत शेर आने ने के फुल गया है ते फुल प्यार साडा,
0: वाह
2: फुल गया है ते फुल प्यार साडा, कीता ही चंगा तो यादा फुलाइया होइया, अपना आप फुले वो तेरी याद अंदर, अपना आप फुले तेरी याद अंदर, आता कलता गैर बनाइया होइया।
0: वाह चौधरी साहब।
2: तेरा वादा इकरार मासूम कसमा, तेरा वादा इकरार मासूम कसमा, अज तक आसा वसाल दियां लाइया होइया, यादा तेरिया कसम है यार तेरी, यादा तेरिया कसम है यार तेरी, आसम सीने नाल ला के सजाइया होइया।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने चली साहब। वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें याद करने पे ने हमारे छोटे पीर साहब ने, वो हमें याद कर रहे हैं, और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रोग्राम सुनने पे ने, माशाल्लाह बड़े दिल लगा के प्रोग्राम सुनने में, हेडफोन ला के प्रोग्राम सुनने पे, और कहने ने कहा दिल पर रहा नहीं है, तो जब भी मौका मिल जाए तो अच्छी जाए, दोबारा जो टाइम आया था, बड़ी मेहरबानी, तो शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया
2: पीर साहब।
0: हाँ छोटे पीर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखे और दुआ में याद रखे, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई का आना, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खूबसूरत शायरी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक मिशा को खुश रखे, शादाबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
2: शुक्रिया, अल्लाह
0: अल्लाह सुनने वाले, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे लाडला जी, और लाडला जी ने कमाल कर दिया इन्होंने, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे ओए होए होए होए सदके जावा सदके जावा सदके जावा कुर्बान जावा। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, गिदन भाई हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे भाभी जान ने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारे मदरसे कियानी साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स। तेरी
4: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
0: राइट वेलकम बैक लिसनिंग, योर लिसनिंग टू 93.2 FM। और यहाँ पे मेरा साथ देने काफ़ी टाइम हो गया, हॉल पे हैं हमारे मोहतरम गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम भाई जान,
0: मेरे भाई जान कैसे टीवी ठीक है? ठीक है आपकी?
2: बस एकदम ठीक ठाक। आज अतिका जी को सुना।
0: वाह जी वाह,
2: हमारा
0: उस्ताद, हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद,
2: हमारा उस्ताद भाई को सुना हमने
0: जी,
2: तो मजे आए,
0: मजा आ गया जी। वह क्या कहने, क्या कहने, और आप ही हमारे अपने हमारे सज्जन हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं शिरकत करते हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको सलाम पेश करें, और सिमी जी हैं उनकी पूरी फैमिली आपको सलाम पेश करें।
2: उन सबको हमारा बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो ये कुछ शकील भाई के लिए पैगाम है।
0: शकील साहब के पैगाम है? वाह जी वाह, क्या कहने
2: कि शकील भाई हर प्रोग्राम में
0: जी जी
2: महफिल में आके सबको लूट जाते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह।
2: तो पैगाम है कि अभी लूटना तो बंद करो।
0: हम क्या,
2: क्योंकि लूटने के लिए अभी बचा ही नहीं,
0: बचा ही नहीं। वाह जी वाह, वाह क्या कहने, वाह जी वो आएंगे हम उनको बता देंगे। इसका मतलब है कि वो आपके पास जो चीज, देखो आपके पास भी कितना खूबसूरत खजाना है माशाल्लाह। क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने, वाह।
2: बहुत बहुत अच्छा इंसान है,
0: बहुत बहुत खूबसूरत, जैसे आप है ना, इज वेरी जोली माशाल्लाह, वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड गुड माशाल्लाह, वेरी नाइस।
2: तो सबसे पहले हम शकील भाई को बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: उसके बाद हमारा जवीद मीर भाई है
0: जी,
2: मोहम्मद हनीफ भाई है, साजिद भाई है, वाजिद भाई है
0: जी,
2: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई है, आपका आपका लाडला,
0: हमारा लाडला, सबका लाडला।
2: अच्छा, सलमान भाई है, इकबाल भाई है, प्रोफेसर शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है, हमारा रफी जी है, फिर अब्दुल करीब साहब है, फिर नवाब परवेज खान है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: हमारी बहना समीना खान है, आतिया जी है, अशिका जी है, सलीमा जी है, सिमी जी है, रेखा जी है, सिमी जी, समीदा जी, सितारा जी, मिस्टर मिसेस पटेल, और जो जो सुनते सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और आपको खसूसन सलाम पेश किया था उन्होंने सितारा जी ने, और वो काफी बिजी हैं, और वो उन्होंने सलाम पेश किया आपके लिए और सब सुनने वालों के लिए जी,
2: उनको भी हमारा बहुत सलाम
0: जी।
2: तो ये छोटी सी है कुछ गजल है मेरा
0: जी जी जी जी जी, गो अहेड।
2: हो तो सही चूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, हो तो से चूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ
6: मीत मेरे मैं प्रीत अमर कर दो
0: क्या कहने
6: ओ तो से रूलो तुम
0: वाह वाह वाह वाह

0: वाह जी वाह वाह वाह
1: सीमा हो
0: वाह
1: ना जन्म का हो बंधन
0: वाह वाह वाह वाह
1: जब प्यार करे कोई
0: वाह
1: तो देखे केवल मन
0: क्या कहने
1: नई रीत चला कर तुम
0: वाह
1: रीत अमर कर दो
0: वाह
1: नई रीत चला कर तुम रीत अमर कर दो
0: क्या
1: आकाश का सीनापन
0: क्या कहने
1: मेरे तन्हा ये मन में आकाश का सीनापन तेरे तन्हा ये मन में
0: क्या कहने
1: पायल चन काती तुम आ जाओ जीवन में से देकर अपनी

0: प्यारा
1: बहुत खूब
0: जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे।

0: वाह
1: तुम्हार के लिए अपना मेरी जीत अमर कर दो, ओ तो से चुलो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वन ऑफ माई फेवरेट गजल, और क्या कहने, हाय हाय हाय।
2: मेरा गीत अमर कर दो,
0: वाह,
2: होठों से झूलो तुम।
0: ब्यूटिफुल, आपने तो कमाल ही कर, इसीलिए हम आपको कहते हैं गुरुजी, और गुरुजी तो कमाल ही करते हैं, और लता जी क्या कहेंगे, और उनको भी वेलकम है जी, आने खुश आमदीद कहेंगे। और बाबी जान, हाउ आर यू?
3: भैया
0: मैं ठीक ठाक है, आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने कहा ना मुझे हम घर वाले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी, इसमें कुछ शक नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी यूनिक।
3: कभी वो गुस्से नहीं होता
0: जी,
3: कभी किसी की बुराई नहीं करती।
0: ये खूबसूरती है आप में, और बहुत अच्छा लगता है जी।
3: बच्चे की चाट भी कभी गुस्से में बात नहीं करते,
0: मुझे पता है, मुझे पता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बाबी जान, वी ऑल लव यू माशाल्लाह, हम आपसे प्यार करते हैं, सब सुनने वाले आपसे प्यार करते हैं माशाल्लाह, और देखो सब के लिए आप दुआएं करते हैं, और आप वो आपके लिए दुआएं करते हैं जी। बहुत अच्छा, खुश ये गुस्से लिए हम लोग इनको कहते हैं, देखो इतना बहुत सारा इनका खिताब दिया हुआ है जो गुरु जी का, गुरु जी देखो कौन होते हैं गुरु जी।
3: तो भैया 55 साल शादी हो गई
0: माशाल्लाह,
3: 55 साल
0: वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, लता और आपको जिंदगी दे, और 55 हो, और 55 हो, और 55 हो, वाह क्या कहने, वाह थैंक यू।
3: जो वो डराता है ना, मेरे को डर लगता है,
0: बाबा क्या कहने क्या कहने, और आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे मदरसा क्या नहीं साहबे आपको दोनों का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने आपके लिए बहुत सारे फूल के भेजे हैं, और वो आपके लिए दुआएं करते हैं, हमेशा ही वो हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, आपका शुक्रिया अदा करें जी।
3: नाम बोल देती हूँ अभी
0: जी जी जी,
3: शकील भाई हमारा, बल्ली भैया
0: जी,
3: भैया है
0: जी,
3: चौधरी फरियाद भैया है,
0: वो प्रोग्राम सुन रही है, वो प्रोग्राम सुन रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको वेलकम जी।
3: इकबाल भैया है
0: जी,
3: शफी भैया है, डॉक्टर मलिक साहब है
0: जी,
3: भैया है, कयूब भैया है,
0: अब्दुल कयूब साहब जी जी,
3: उसको भी हमारा सलाम
0: जी, वालेकुम सलाम।
3: जितने लोग आते हैं सब लोग एक से एक बढ़कर,
0: एक से बढ़कर, कोई शक नहीं, कोई शक है ही नहीं है जी,
3: रेडियो में बहुत अच्छा अच्छा इंसान आते
0: हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, अपने जी।
3: चलो मैं पुराना गाना ये गा लेती हूँ
0: जी जी जी।
3: राजा की आई बरात, रंगली होगी रात, मगन में नाचूंगी,
0: वाह वाह,
3: मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी बरात, रंगली होगी रात, मगन में नाचूंगी, आए मगन में नाचूंगी, राजा की मांग राजा की माते तिलक लगेगा, रानी की मांग सिंदूर, रानी की मांग सिंदूर, ये भी अपनी मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूं जरूर, मेहंदी से ले पीले होगी साथ, सही ले यो के साथ, मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी बरात,
0: वाह वाह वाह,
3: रानी के संग राजा, चूली सजा के चले जाए पर तेरे हाँ के संग राजा चूली सजा के चले जाए पर
0: तेरे
3: बोने की याद आएगी दिल की लगेगी होगी बरसा अंधेरी होगी रात अकेली में नाचूंगी अकेली में नाचूंगी राजा की आएगी
0: वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं कम है जी जी
3: दूसरा एक छोटा
0: गाना जी थोड़ा आप थोड़ा इंतजार करेंगे जब मैं छोटी सी ब्रेक करनी है तो आपने माइंड नहीं करना है मैं छोटी सी ब्रेक करूंगा और ब्रेक के बाद हम आपके ख्याल में दोबारा मिलूंगा ठीक है आप छोटी सी थोड़ा होल्ड कर लें प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि थोड़ा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक
4: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 49 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on, keep it locked on with the Babi's Khan. Yeah, we're going to break the break for the Bada Malasha. Then, our Babi Jan, welcome, Kahenge, Dubara, Gianna Kush Ahmedid.
5: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
6: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
5: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
6: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
4: Looking for a quality home to rent?
7: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Sunrise
8: Music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर यू ऑल लिस्टनर रेडियो 103.2 एफएम और यहां पे हमारा साथ है हमारे पापी जाने सुमित्रा जी हैं वेलकम जी एन खुश आमदी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं पापी जान कोई बात ये प्रोग्राम आपके लिए
3: ये छोटा 2 मिनट
0: ना कोई कोई बात नहीं डू द मैटर ओके गो अहेड जी जी
3: तू मेरा मन का मोती है इन नैनों की ज्योति है रहे मेरे बचपन की
0: माया
3: मिटा पर देखी
0: वाह
3: अब दिल तोड़ के मत जाना
0: वाह
3: रोटी छोड़ के मत आना
0: वाह
3: तुझे मेरी असुवन की घर आया मेरा परदेसी
0: वाह वाह वाह ब्यूटीफुल जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया दोनों के दोनों खूबसूरत गीत है और गुरुजी ने वो गाना गाया वो भी बहुत खूबसूरत गीत था बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत मेमोरी को रिफ्रेश किया है और बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप आए वालेकुम अस्सलाम
3: जी
0: वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया तो राइट दैट वाज गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने थोड़ा सा होल्ड करेंगे यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, मदसर की अनिशा भी हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत आवाज है, वाह
10: कैसे आपकी चीज कैसी है
0: मेरे भाई, आपकी आवाज में सुन रहा दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया
10: माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इस नचीज को यहाँ
0: हमेशा ही याद करते हैं आपके लिए। देखो आपकी गैर हाजिरी लगी मेरे भाई, यहाँ पे मैं रजिस्टर हो गया और यहाँ पे दो तीन हफ्ते की गैर हाजिरी लगी हुई है,
10: थोड़ी दो तीन वीक के लिए, माना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी इस टाइम में बिजी हूँ
0: जी,
10: फिर भी मुझे आप जो आप मुझे याद करते हैं मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता
0: हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, आप हमारा भाई है, हमारा फर्ज है जी,
10: शुक्र अदा करता हूँ सब दोस्त बाप जितने भी सुन रहे हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, सबका दिल से एहतराम करता हूँ, अल्लाह पाक सबको सेहत कामला अता फरमाए,
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।
10: मैं सबसे पहले तो कलामी इलाही से शुरू करूंगा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से
0: जी जी,
10: जो नहायत ही मेहरबान रहीम और रहमान है,
0: रहमान है माशाल्लाह।
10: और मैं दो अली नात के शेर पढ़ूंगा
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह।
10: तो शेरा के नबी के रोजे पे जाने वाले
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह,
10: नबी के रोजे पे जाने वालों मेरा भी उनको सलाम कहना,
0: सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह,
10: नबी के रोजे पे जाने वालों मेरा भी उनको सलाम कहना,
0: वाह वाह,
10: मिलो तो कहना कि कब मिलोगे,
0: वाह
10: मिलो तो कहना कि
0: कब मिलोगे,
10: ऐ वक्ते बेबस मैं तमाम कहना,
0: वाह
10: इनसे कहना कि चलते चलते मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ,
0: हाय हाय हाय हाय हाय वाह,
10: इनसे कहना कि चलते चलते मैं काफिले से बिछड़
0: गया हूँ, वाह
10: मुझे बुला लो तो मैं भी देखूं कहां से रास्ता है जन्नतों का,
0: माशाल्लाह क्या कहने,
10: निजामतों के चिराग सारे हमारे अश्कों से जल रहे हैं,
0: वाह
10: यहां पे उम्मत की बख्शिशें हैं वहां पे हमको भी माफ करना,
0: वाह जी वाह,
10: सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो जूमते हैं,
0: वाह
10: हमें अता हो मेराज कुर्बत हमें भी आता है चूम लेना,
0: माशाल्लाह
10: नबी के रोजे पे जाने वालों मेरा भी उनको सलाम कहना,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने।
10: और दो शेर अक्सा
0: जी जी जी जी
10: करबला ने बारिश
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी जी,
10: कि कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से,
0: आहा
10: कह दो गमे हुसैन
0: मनाने
10: वालों से मोमिन कभी शदा का मातम नहीं करते,
0: हाय हाय हाय हाय वाह,
10: कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शदा का मातम नहीं करते, ऐ इश्के ऐ इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से,
0: वाह क्या कहने,
10: ऐ इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से,
0: वाह
10: यूं सरे आम हम इनका तमाशा नहीं करते,
0: वाह जी वाह,
10: और रोए जो रोए वो जो मुनकर है शहादते हुसैन के, रोए वो जो मुनकर है शहादते हुसैन के,
0: वाह
10: हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते,
0: वाह जी वाह क्या कहने।
10: और शेर है कि अफजल है,
0: वाह
10: अफजल है कल जहां से गिराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का,
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह,
10: और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की,
0: वाह
10: सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का,
0: माशाल्लाह वाह।
10: और लाशेरा के जिसने
0: जी जी
10: हके करबला में जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नामे का वादा वफा कर दिया,
0: माशाल्लाह सुभानअल्लाह,
10: जिसको तीरों से छन्नी कराया गया जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया,
0: वाह वाह वाह वाह,
10: उस हसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे लाखों सलाम।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और क्या कहने, और बहुत ही अच्छा लगा मेरे भाई का आप आए और इतना खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, और हमें भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज आपका, बहुत प्यारा अंदाज है माशाल्लाह जी।
10: और टाइम को नहीं, थोड़ा मिशन का शॉर्ट है क्योंकि
0: जी जी एक मिनट रह गया जी, एक मिनट रह गया, और आपने थोड़ा होल्ड कर लें, नेक्स्ट खबर में आपको लेके आऊंगा,
10: होल्ड कर लेना,
0: चलो चलो होल्ड कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, ये हमारा साथ दे रहे हैं और आयशा जी भी हमारा साथ दे रही, आपने थोड़ा सा होल्ड करेंगे, नेक्स्ट आवर में हम आपको लेके आएंगे, और यहाँ पे उनको मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
11: वालेकुम सलाम
0: माशाल्लाह, और आपने थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्योंकि अभी मैं न्यूज़ ब्रेक के जा रहा हूँ, और आपने थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं कंवल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं माशाल्लाह, इनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून इनका कि इन्होंने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद छोटी सी ब्रेक होगी, और मुदस्सर कियानी साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और कंवल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये भी हम दुआ को हैं सब के लिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, और आप हमारे लिए दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ देने वाले हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, ममनून उनका। और कुछ ऐसे दोस्त हैं वो कोशिश करें कि फ़ोन करने की, तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि प्लीज़ नेक्स्ट आवर में हमें याद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा सबके साथ गुफ्तगू करूँ, अच्छी गुफ्तगू करूँ, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कीमती वक्त देने का।
12: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
13: From the Sky News Centre at 10. An alleged organised crime boss has been charged with directing a criminal organisation hours after landing in Dubai following his extradition from Dubai. Daniel Kinahan's appeared at a special criminal court following his arrest in the UAE in April. He's been remanded in custody and is expected to be held at the highest security prison in Ireland. Hopes for a long-term settlement to rebuild Gaza through Donald Trump's 15-point plan are in tatters. Benjamin Netanyahu's rejected what's been put forward by the US President's Board of Peace.
14: Now we are talking with the Americans about this issue. They have ideas, some of which are acceptable to us and some are not. We know how to stand up to these things. We have proven it in the past, and we are proving it today as well.
13: The Israeli Prime Minister says his military won't make any withdrawal from the Palestinian territory until Hamas fully disarms. The militant group says Israel must stop attacks before they'll agree to put weapons to one side. Andy Burnham's getting ready for a national tour to hear people's concerns about the cost of living. Officials say that from tomorrow, the Prime Minister will go into listening mode. When he does get to have his say, he'll be telling his voters all about his 10-year plan for the UK. These people in Wakefield and West Yorkshire are hoping that includes financial support and investment.
15: It's a real struggle. I mean, me and my wife work, and we work 40 hours a week, and you're still struggling to pay your bills then.
16: Put more things on to try and like revamp this area a bit.
13: A man's died after getting into difficulty in water at a beauty spot in the Lake District. The 19-year-old was helped ashore at Grasmere Lake yesterday, but later died in hospital. In sport, Hibs scored a late winner at Ibrox to beat Rangers 2-1 in the Scottish Premiership. It leaves Derek McInnes still searching for a first win since taking over as manager of the Glasgow club. Celtic thrashed Kilmarnock 5-1 to make it back-to-back wins. That's the latest.
9: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर रेडियो 103.2 एफएम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: My time in the studio is 3 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Because I'm going to do it quickly, because I'm going to do an azan. And here we have our saath, our mohtaram, Mudassir Kiani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ji, bismillah khairan ji. जी
2: सारे की दोबारा मैं सलाम आखना जितने जनाब चौधरी फरियाल साहब आए और जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी की थी है
0: जी
2: और जितने भी महफल इंशाल्लाह मैं अपना सलाम आखसा
0: जी जी
2: थोड़ी जी मारे को जानी है क्योंकि मैं थोड़ा दो दो तरह तरह वीक थोड़ी जी बिजी रहने की वजह मतलब बिजी वजह तू
0: जी जी
2: जरा लेट हो जाना लेकिन मैं दिला हर बंदे की दिला याद कर
0: वाह जी वाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू
2: तुसा भी परवेज भाई तुसा भी साडे दिला रहने तुसा इना हो के दिल दे दिला से कोनी निकली सकना
0: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर
2: थैंक यू सारे दिला ही बसना सब भाई सारे 24 घंटे ना रहना
0: हाय हाय क्या कहने
2: अच्छा
0: जी
2: तो एक अक्सर इक्वालिद नहीं अक्सर कि एक अच्छे से अच्छा फूल की खुशबू भी कुछ दिन खत्म हो जाती है
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने
2: एक अच्छे से अच्छे
0: फूल की खुशबू
2: कुछ दिन खत्म हो जाती है
0: जी
2: लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे खलूस की खुशबू इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती
0: है हाय हाय हाय हाय हाय बहुत ही आला बहुत ही खूबसूरत अंदाज वाह क्या कहने बहुत खूबसूरत शायरी वाह क्या कहें
2: शेरा के
0: जी जी
2: शेरा के यूं ही बेयकीन यूं ही बेनिशान मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: हाय हाय हाय हाय वाह
2: यूं ही बेयकीन यूं ही बेनिशान मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: वाह
2: कहीं हो ना जाऊं मैं रायगां मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या कहने
2: कभी कभी साहिबान न था बहम कभी कह के शांति कदम कदम
0: वाह
2: कभी बेमकां कभी लामकां मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: वाह वाह क्या कहने
2: तेरे वसल की जो नवीद है वो कुर्ब है शहीद है मुझे कुछ खबर हो जाने जा मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: वाह वाह क्या कहने
2: कोई तानो जान मेरी जात पर कोई खंद जान किसी बात पर
0: वाह
2: पै दिल नवाजी दासता मेरी आधी उम्र गुजर
0: गई वाह वाह
2: कभी जिक्र हुरमत अर्ज में कभी फिक्रो आमदे जर्फ में
0: वाह
2: यूं ही रिज़्क़ के इश्क के दरमियां मेरी आधी उम्र गुजर गई
0: वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने बहुत खूब
2: शेर के खाली हाथ पड़े हुए हैं
0: आहा
2: खाली हाथ पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो
0: आहा
2: खाली हाथ पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो
0: वाह
2: कोई भी नहीं है मेरे साथ देख लो
0: क्या कहने
2: और मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से
0: वाह
2: जाते जाते क्या गए औकात देख लो
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब
2: अरे भाई इंसानों की बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं
0: क्या कहने
2: इंसानों की बस्ती
0: में
2: मुनाफ़िकत के डेरे हैं
0: वाह
2: यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे
0: तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब क्या कहने वाह क्या कहने
2: तुमने गिरते हुए पत्तू को तो जरा देखा होगा
0: वाह वाह
2: तुमने तो गिरते पत्तू को
0: वाह
2: देखा होगा
0: वाह
2: अपनी हर सांस में वो टहनी पे गवा देते हैं
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने
2: तुमने तो गिरते हुए पत्तू को तो देखा होगा
0: वाह
2: अपनी हर सांस वो टहनी पे गवा देते हैं
0: वाह
2: और कितने बेरहम है शजर
0: वाह
2: नए पत्तू के लिए कितने बेरहम शजर है नए पत्तू के लिए पुराने पत्तों की वफा को बुला देते हैं
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने वाह
2: पर डूब गए हैं लोग सभी हैरानगी में डूब गए हैं लोग सभी हैरानगी में जाने क्या कह दी है बात रवानगी में
0: वाह
2: मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने
0: पानी में हाय हाय क्या कहने बहुत खूब
2: पर लास्ट शेर अक्सर
0: जी जी
2: कि ए दोस्त अब सारू की आदत नहीं रही, ए दोस्त अब सहारू की आदत नहीं रही,
0: वाह
2: तेरी तो क्या किसी की जरूरत नहीं
0: रही। वाह वाह क्या कहने,
2: अब के हमारी जंग है खुद अपने आप से,
0: वाह वाह
2: अब के हमारी जंग है खुद अपने आप से,
0: वाह वाह
2: यानी के जीत हार की वक्त नहीं रही।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब।
2: आदत अकेलेपन की जो पहले अजाब थी, आदत अकेलेपन की जो पहले अजाब थी,
0: वाह
2: अब लुत्फ बन के गई है अजियत नहीं रही।
0: हाय हाय हाय हाय वाह वाह
2: अब लुत्फ बन गई है अजियत नहीं रही। और बरसेगा टूट कूट कर अबर मोहब्बतों का,
0: वाह
2: बरसेगा टूट कूट कर अबर मोहब्बतों का,
0: वाह
2: हम चींगते रहेंगे के हाजत नहीं रही।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब।
2: एक रोज आएगा लेकर पुलते,
0: वाह
2: उस रोज हम कहेंगे जरूरत नहीं रही।
0: हाय हाय क्या कहने वाह।
2: ऐ दोस्त अब सहारों की आदत नहीं रही,
0: वाह
2: तेरी तो क्या किसी की जरूरत नहीं
0: गई। वाह वाह वाह वाह बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए बहार आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज और आपको सब सलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी उनकी मैं तारीफ करूँ कम है। मदरसा किया निकाब और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि अजान पेश करनी है और वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और सबके लिए ज़रूरी है। अपने अपने मकामी टाइम को देख के सुन के ना अपने नमाज अदा करेंगे। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है, स्पेशली दुआ करनी है हमारे वाजिद भाई हैं उनके लिए दुआ करें, जो भी बीमार हैं हर खुश उनके लिए दुआ करें। कीप लॉक्ड विद द सुन रेडियो 103.2 FM। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने हमारा साथ दे। और यहाँ पर अजान शो तो हो रही है तो कोई बात नहीं, हमने यहां पे मैं खुद पेश कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: Right, so welcome back and listen, you're listening to the Sunday Radio 103.2 FM. And Boba Shukriya, all friends, who are my friends, brothers, and friends, and Baba Aziz. And Boba Shukriya, all thank you very much. And here we are, our Sadhani, Kawal Sahiba, our Sadhani, and here we are, Bismillah, Kahenge, Jiyan, Kahenge, Khush Amdeed, Kahenge, Sat Bismillah, Kahenge, and Nikliye, and here we are, Unkiliye, Yeh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: वालेकुम सलाम
4: जी। बिस्मिल्लाह कहना, ठीक है आपकी?
5: बस ठीक
4: है, पाक
5: आप कैसे हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र जी।
5: मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ, काफी टाइम के बाद मैंने रब्ता किया है।
4: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा काम किया। माशाल्लाह, रब्ता में रास्ते में रब्ता है, रब्ते में रास्ता है जी।
5: ऐसा ही है, तो आज मैं 2 शायरी लेके आई हूँ।
4: जी जी जी,
5: लगता है कि अगर मैं किसी का वक्त ना लूँ तो।
4: जी जी, शुरू करें। जी जी, शुरू करें, शुरू करें। जी जी,
5: तो शायरी कुछ यूँ है।
4: जी जी,
5: सहरा की तपती धूप में कोई साया मिल जाए।
4: हाय हाय हाय, क्या कहें,
5: ऐसी ठंडी छाँव जैसे तो कभी अपना अक्स लगे हो।
4: बहुत खूब।
5: कभी भूली बिसरी कोई याद तो कभी छू कर गुजर जाने वाले नरम हवा के झोंके का एहसास लगे हो।
4: बहुत खूब।
5: कभी सीने में दास्तान कोई छुपाए हुए रेगिस्तान की रातों में टूटी अमीर तो कभी खामोश खिलता हुआ कोई चांद सा लगे हो।
4: बहुत खूब।
5: दिल में यूं ना उतरो कि कमजोर लम्हे में कैद हो जाओगे, किसी भटकती हुई बेकरार रूह का सुकून सा लगे हो।
4: वाह।
5: तेरा ख्याल जब भी दिल की दीवारों से टकराए ऐसा लगे जैसे कहीं दूर जंगलों में मीठी सुरों में कोई कोयल गाए।
4: बहुत खूब।
5: कभी यूं ऐसा संगीत सा लगे हो।
4: वाह।
5: सोचूं तो चारों तरफ तुम ही तुम हो, देखूं तो आसमान पर सितारों के जुर्मट में गुमनाम होता कोई तारा सा लगे हो।
4: वाह, बहुत खूब।
5: दिल की वैरान बस्ती में तेरा बसेरा सा लगे, यूं अपने तो कभी अजनबी से लगे हो।
4: वाह वाह वाह।
5: कभी सुबह की ओस जैसे तो कभी बहार में खजां से लगे हो।
4: वाह।
5: कभी महकते फूलों में कोई गुल तो कभी तन्हा उदास किसी बुलबुल का दिल सा लगे हो।
4: वाह, क्या कहने,
5: कटी है उम्र सफर में चलते चलते कहां से कहां जिंदगी ले आई।
4: वाह वाह।
5: देखा जो मुड़ पर तो उड़ती हुई गर्द में धुंधला कोई तस्वर सा लगे हो।
4: बहुत खूब।
5: कभी आकर अपनी सुनाओ कभी मेरे दिल की सुनो।
4: वाह।
5: अक्सर ख्यालों में नामुकम्मल ख्वाहिशों का कोई गुजरा हुआ पल सा लगे हो।
4: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
5: तो एक शायरी और है अगर इजाजत हो।
4: जी जी जी, अरशाद अरशाद, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं।
5: शायरी कुछ यूं है।
4: जी जी, अरशाद।
5: गुजरे वक्त के साथ सब भूल जाएंगे, उसे बुला देंगे,
4: आए,
5: क्या याद करेगा, याद उसकी भी कहीं दूर दफना देंगे।
4: आए, आए, आए,
5: कितना रोए कितना याद किया, दिल की बात कभी ना जुबान पर लाएंगे।
4: वाह।
5: ख्वाब जो देखे थे कभी मिलकर वो सब जला देंगे।
4: वाह।
5: उनके लिए अजनबी हो जाएंगे, उनको अजनबी कर देंगे।
4: बहुत खूबसूरत।
5: इन राहों पर हम कभी चले थे, इन रास्तों पर जाना हम छोड़ देंगे।
4: वाह।
5: बेवफा सितम कर को हमेशा के लिए दिल से निकाल देंगे।
4: वाह।
5: पछतावे की आग में जलने की सजा उम्र भर की उसे देंगे।
4: बहुत खूब, बहुत।
5: आगाज मोहब्बत में उसने किया था,
4: आगाज मोहब्बत में उसने किया था। वाह।
5: आखिरी अंजाम उसे हम देंगे।
4: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
5: क्या दिल की तड़प क्या होती है, कभी वो समझ पाएंगे।
4: वाह।
5: गुमान जब सब तोड़कर हम उन्हें खास से आम कर देंगे,
4: खास से आम कर देंगे। आए आए आए क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत।
5: क्या करेगा याद, उसकी भी कहीं दूर दफना देंगे।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल कमाल, और क्या कहेंगे। और बहुत ही शुक्रिया, आप आई हैं और इतने खूबसूरत शायरी की है और नज़म आपने सुनाई है, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत आपका अंदाज है। और आपने खुद लिखी है किसी और की है
5: शायरी? तो मेरी अपनी है।
4: माशाल्लाह, बहुत
5: समटाइम कोई इधर उधर से लफ्ज़ भी ज़हन में आ ही जाता है।
4: नहीं नहीं, बहुत खुशी, बड़ी कमाल की आपने की है और बड़ा बड़ा अच्छा लगा। और आपको फूलों का तोहफा जो लेके आ रहे वो मुझे भेजा उन्होंने आपके लिए, और बहुत अच्छा लगा। और ये हैं हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, अली भाई हैं, वो उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया, पसंद किया माशाल्लाह, और बाकी जो सुनने वाले वो भी पसंद करें। मदरसा कियानी साहब ने
5: मेरा वो अंदाज नहीं था शायरी सुनाने वाला, क्योंकि मेरा गला कुछ ना साफ था।
4: कोई बात नहीं, इतना जो भी आपने सुनाया ना, बेमिसाल कमाल को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब, वो उन्होंने फूल भेजे आपके लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं।
5: जी मेरी तरफ से सब सुनने वाले को बहुत बहुत सलाम दुआ। तो अगर मेरी शायरी पसंद की है,
4: जी जी सबने पसंद की है, इंजॉय की है माशाल्लाह, और ऐसी शायरी करती रहें और आती रहें, और ये ना हो कि आप दोबारा गैर हाजिर हो जाएं, और कोशिश किया करें कि वेनसडे और संडे के प्रोग्राम में शिरकत किया

0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के हमें याद किया, फोन किया।
0: आप ना याद करें तो फिर हम आपको मिस करते हैं।
1: माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने,
0: ये तो हो ही नहीं
1: सकता। वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: आप हमें याद करते रहते हैं तो हम क्यों ना आपको याद करें।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने।
0: और सुना, आप ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे वक्त गुजर रहा है आपका?
0: बहुत फंटास्टिक अल्हम्दुलिल्लाह।
1: माशाल्लाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा।
0: आपकी दुआओं से।
1: माशाल्लाह, हमारी दुआ में शाह के साथ है जी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
0: मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिन पे हमको नाज है।
1: वाह,
0: परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, सदके सदके, क्या कहने,
0: दिल ठड्डा ठड्डा हो गया।
1: मैंने क्या बात है, क्या बात, वाह जी वाह। इस मौसम
0: और ये फरमाइशी गीत पेश करने चला हूँ आपकी खिदमत में, मुबीन साहिल, डॉक्टर बशीर पास, डॉक्टर बशीर पाशा, बाबी सेबा, बाबी सेबा, गुरु भाई माजद साहिब।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
0: अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते।
1: हाय हाय बाबा।
0: अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते, के मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुरत न करते। जिन्हें तूने समझा मेरी बेवफाई, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी। जिन्हें तूने समझा
1: क्या की?
0: हमारी मोहब्बत का एक इम्तिहान था, वो दे दो दिन की थोड़ी सी जो दूरियां थी, जो दूरियां थी। अगर होती सच्ची मोहब्बत तुम्हारी तो घबरा के तुम यूं शिकायत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। जो हम पे है गुजरी हमें जानते हैं, सितम कौन सा है नहीं जो उठाया। जो हम पे है गुजरी

0: राम आया पे राम आया, अगर जानते तुम भी इल्जाम दोगे तो भूले से भी हम तो उल्फत न करते, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। आज की रात ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जा आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात।
1: वाह क्या खेल।

0: मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ा शैतान। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ा शैतान। तुम्ही देखो करो कोई बात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ ना बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सम चांदनी हो तुम, न जाए रोशनी तुमसे के ऐसी रोशनी हो तुम, न सीने से हटाओ हाथ के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती। ला ला ला ला थैंक यू।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहें, कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल ट्रैक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोनों को गीत गुनगुनाए और बहुत अच्छे लगे मेरे। बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह
1: हाफिज। राइट, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा मोहतरम, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे जितनी भी इनकी तारीख कम है, और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे। कीप लॉक्ड विद द सनराइज रेडियो।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुनर रेडियो, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई हैं, और जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, यहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम हैं माशाल्लाह, और हमारे ब्रैडफोर्ड की रौनक है, हमारे सुनर रेडियो की रौनक है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और ये हैं हमारे उस्ताद मोहतरम अहम खान जी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातु। बड़ी खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आके।
1: माशाल्लाह,
7: आपने एक फिल्म की तो क्या बोलते हैं वो फायर जला हुआ है।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी।
7: आप अपनी हसीयत से लोग फूल डालते हैं ताकि फूल फैलती जाए।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, वाह।
7: आलम इकबाल इरशाद फरमाते हैं,
1: जी जी इरशाद,
7: इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात,
1: वाह,
7: इलम काम में सफात,
1: वाह जी वाह।
7: अलामा बड़ी ऊंची बात,
1: बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी खूबसूरत जी।
7: इश्क तमाशाए जात, इलम मकाम में सफात, वो इश्क, इश्क तमाशाए जात,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह।
7: इश्क सुकून व सबात,
1: वाह।
7: इश्क हयात व ममात, इलम है पैदा सवाल इश्क है पहना जवाब
1: हाय हाय हाय हाय वाह जी वाह बहुत खूब
7: आगे मियां साहब का
1: मियां साहब का अपना ही मकाम है जी जी माशाल
7: मैं पेश करना चाहता हूँ
1: जी जी अरशाद
7: मियां साहब फरमाते हैं
1: जी जी
7: मेले के सुकून भी लदा
1: वाह वाह वाह माशाल्लाह
7: पी पी मस्त प्याले
1: हाँ हाँ हाँ वाह वाह वाह वाह
7: खाली रह गए मटू मुहम्मद ओ खाने मजलस वाले
1: माशाल्लाह
7: किधरे किधरे नजर ना आवे
1: वाह
7: कोई भरे प्याले वाला
1: वाह
7: ये जिससे ता बरसे नहीं
1: वाह वाह वाह
7: ना एक कचन नवाला
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
7: ये असा थी ओले होए ओ साकी मट प्याले हाय अफसोस मोहम्मद
1: बख्शा
7: कौन करे ऊपर आले यारा बाजू शराब सुखंदा
1: माशाल्लाह
7: यारा बाजू शराब सुखंदा बर्तन कद वरते कद जैसी सुचा मेला सुचा मेला कद मोहम्मद जो पीसी सो पीसी
1: क्या कहने
7: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मजलिस में मुख्तलिफ शुआरा
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है
7: पूरे
1: जी
7: यूरोप शहर और पूरी दुनिया में फैलती है
1: माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया ये उस्तादों की बात होती है माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगा माशाल्लाह और हम इंतज़ार में हैं हमारे शकील साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने जितने भी तारीफ करूँ कम है और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज़ है बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कय्यूम साहब हमारा साथ हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
8: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी तबीयत है मेरे भाई की
8: बस पहले से बेहतरी है कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने और जो गाना गुनगुनाया था आपने पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा और मैंने गाना भी पेश भी किया था माशाल्लाह आपके लिए माशाल्लाह जी
8: चलो आज भी इंशाल्लाह एक गीत गुनगुनाऊंगा लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों को जो जहाँ के भी ये नशरियात सुन रहे मेरी तरफ से अब सबका इनफरादी तौर पर नाम लेना मेरे लिए मुमकिन है
1: नहीं, कोई, कोई, कोई भी सबके लिए सलाम पेश कर कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं
8: मैं इसलिए सबको इज्तिमाई तौर
1: पर आपने अच्छा करते हैं जी बहुत शुक्रिया थैंक यू
8: एक एक एक गजल के चंद शार हैं उसके बाद एक गीत है
1: जी जी
8: वो मैं बताऊंगा कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ
1: जी जी
8: गजल के बोल हैं पास आओ एक इल्तमास सुन लो
1: आहा
8: पास आओ एक
1: इल्तमास सुन लो
8: प्यार है तुमसे बेहपना सुन लो
1: हाय हाय हाय हाय
8: पास आओ एक इल्तमास
1: सुन लो
8: प्यार है तुमसे बेहपना
1: सुन लो वाह
8: एक तुम ही को खुदा से मांगा है
1: वाह
8: एक तुम ही को
1: खुदा से मांगा है वाह
8: जब भी मांगे कोई दुआ सुन लो
1: सुन लो हाय हाय हाय
8: शुक्रिया जनाब एक तुम ही को खुदा से मांगा है जब कभी मांगे कोई दुआ सुन लो और इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे तुम चाहत की इंतहा सुन लो
1: वाह वाह
8: शुक्रिया जनाब इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे तुम हो चाहत की इंतहा
1: सुन लो वाह
8: बिन तेरे जी नहीं सकते हम
1: वाह
8: बिन तेरे
1: जी नहीं सकते हम
8: लौट आओ मेरी सदा सुन लो
1: वाह वाह वाह वाह
8: शुक्रिया जनाब बिन तेरे जी नहीं सकते हम लौट आओ मेरी सदा सुन लो
1: वाह
8: और देख लो जिंदगी अधूरी है, देख लो
1: जिंदगी अधूरी है,
8: न रहो अब और जुदा, सुन लो तुम सिर्फ तुम ही हो जिंदगी मेरी,
1: हाय हाय
8: सच है सच बा खुदा, सुन
1: लो वाह वाह वाह वाह वाह
8: वाह, शुक्रिया जनाब,
1: कमाल की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मजा आ गया जी, चश आ गया, वाह।
8: तो एक गीत है
1: जी,
8: एक गीत में स्पेशल जो है ना, मेरे कजन फारूक गनी और उनकी शमीम फारूक है, उनकी बेगम है, ये दोनों मेरे कजन है,
1: माशाल्लाह उन दोनों के लिए जी,
8: तो उनकी फरमाश पर आप
1: हाय हाय हाय हाय
8: कुछ गीत गुनाने की कोशिश
1: जी जी जी, क्यों ने जी,
8: अगर आवाज ने साथ दिया, क्योंकि जब आदमी हद से गुजर जाए ना तो आवाज भी साथ छोड़ देती है।
1: वाह जी वाह, क्या कह रही,
8: जो तुम
1: हाय हाय हाय
8: पसंद,
1: वाह क्या कहने,
8: वही बात कहेंगे जो तुमको

जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, देते न साथ आप तो मर जाते हम कहीं के, देते न साथ आप तो मर जाते हम कहीं के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे सराहेंगे निभाएंगे आप ही को, आंखों में जब हम

0: क्या कह रहे अब्दुल कयूम साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ यहाँ पे। क्या गीत आपने गुनगुनाया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, आपकी आवाज़ को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बड़ी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, यहाँ भी हमारे अब्दुल कयूम का बहुत शुक्रिया, आपका भी। और यहाँ भी हमने वेलकम करना है जी एन ए खुश आमदीद। यहाँ पर मेरा शहजादा आ गया, और शहजादा आ गया और छा गया, और वेलकम जी एन ए खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पे। और यहाँ भी वेलकम कहेंगे, जी एन कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा शहजादा, हमारा लाडला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रान भाई।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: सर जी कैसे आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास में
1: माशाल्लाह। तो शेर है कि छोटा सा के दफनाना देखभाल कर हसरत जदा की लाश।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: दफनाना देखभाल कर हसरत जदा की लाश, लिपटी हुई कफन से कोई आरजू ना हो।
0: हाय हाय, इसको दोबारा करें जी, क्या कहने। वाह जी वाह, मैं सलूट करता हूँ। वाह।
1: दफनाना देखभाल कर हसरत जदा की लाश,
0: वाह,
1: लिपटी हुई कफन से कोई आरजू ना हो। इसी के साथ मैंने गाना जो बनाया ना, एक सेट जैसे कहते हैं ना, दो चीजें मिला के,
0: मिला के आपने किया। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मुझे वो गाना भी याद आ रहा है, मुझे एक गाना मुझे
1: कोई कोई
0: फरियाद
1: मेरे दिल में।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या मैं सोच रहा था कि यही गाना होना चाहिए आपके लिए। मैं सोच रहा था कि यही गाना होना चाहिए, और जब आपने बात की है ना, तो उसी वक्त मैंने गाना को रेडी कर दिया। हाय हाय हाय, वो गाना आप सुनाएंगे, आप सुनाएंगे, क्या क्या कहने।

0: Да.
1: Кои фарьяды
0: Ай-ай-ай.
1: Тере дил ме.
0: Да.
1: Дби хо кете.
2: Кя кене?
1: Жагте, жагте.
0: Ха-ха.
1: Ек умре. कटी हो जैसे
0: आए, आए, आए।
1: जान बाकी हो मगे सांस रुकी हो जैसे जान बाकी हो मगे
0: आए, आए, आए।
1: सांस रुकी हो जैसे हर मुलाकात पे महसूस यही होता है हर मुलाकात पे महसूस
0: वाह वाह वाह वाह
1: यही होता है
0: हाय हाय हाय
1: मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे
0: हाय हाय हाय हाय वाह
1: मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे
0: वाह
1: जान बाकी हो मगर
0: वाह
1: सांस रुकी हो जैसे जान बाकी हो मगर सांस रुकी हो जैसे
0: वाह वाह वाह
1: हर मुलाकात सॉरी सॉरी सॉरी मैं भूल गया हूँ सॉरी
0: कोई कोई कोई बात नहीं कोई राम से

0: जैसे ये नजर छुप के मुझे देख रही हो, जैसे जान बाकी हो मगर सांस रुकी हो, जैसे
1: वाह क्या कहने, वाह वाह वाह वाह
0: कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू
1: सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका शुक्रिया अदा करते, इतनी खूबसूरत शायरी भी की आपने, गाना भी गुनगुनाया और मेरा फेवरेट गीत गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपके लिए, और ये वो गीत था

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आपने पाई मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, ये थे हमारे भाई, हमारे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और शुक्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 46 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे भाई हैं, मीठा जी हैं, वो भी आ चुके हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको, जल्दी जल्दी हम छोटी सी ब्रेक करेंगे।
2: छापा नी कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो, और यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दो मेहमान हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा साथ दे रहे हैं भाई चौधरी रुखसार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چشم روشن دل ماچا باکم جواب بہت اللہ با عزت با وقار با باشوک ہر دل دی شخصیت، اور بہت نفیس، بہت لطیف، بہت شفیق میرے پیارے بھائی چیمپئن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کیسی طبیعت ہے میرے بھائی کی؟
5: الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم، ماشاءاللہ آپ کے اتنے خوبصورت لسنوں کی دعائیں ہیں،
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
5: خوبصورت دعائیں ہیں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فٹ۔ آپ سنائیں، آپ کیسے؟
0: اللہ پاک کا شکر ہے، شکر ہے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں، اور ماشاء اللہ جس جگہ پہ تھے ماشاء اللہ، آپ ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ماشاء اللہ وہاں پہ، ماشاء اللہ۔
5: جی بے شک، بے شک، یہ کیونکہ یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، جہاں پہ ہم گئے تھے یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جنت ہے، وہ یقین کر کے وہ جنت ہی، یقین کر دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے آنے،
0: ماشاء اللہ کیا کہنے کہنے، وہ ہستی بہت بہت پیاری ہستی ہے جی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت، کیا کہنے جی۔
5: سبھی کے لیے دعائیں کی ہیں، واجد بھائی کے لیے کی ہیں، آپ کے لیے ماشاء اللہ، اور آپ کے بیٹے کے لیے
0: ماشاء اللہ، بہت بہت
5: شکریہ۔ لیکن یہ کسی پر آسان نہیں ہے،
0: جی جی بہت بہت شکریہ۔
5: پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا دیجئے، دعا لیجئے،
0: دعا دیجئے، دعا لیجئے، واجد بھائی کیا کہنے، بہت خوب۔
5: جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کو اپنے لیے، وہ کہتے ہیں جو کسی کے لیے مانگتا ہے اس کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
0: ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھی،
5: تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بالکل میری نظر کے سامنے ہے، اور میرے بعد جو ہستیاں آنے والی ہیں وہ مجھ سے تقریباً ہزارہ نہیں بھر کے،
0: نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہ کریں، آپ اشعار شروع کریں، ایسی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔
5: میں بسم اللہ اسی والے سے کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ، میرے خیال ہے مدثر کیانی صاحب آئے تھے، انہوں نے وہ ماشاء اللہ پڑھا تھا،
0: بڑا خوبصورت واقعی،
5: سلام سرکار کی، اور میں بھی وہی جناب
0: ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی،
5: چند اشعار ہیں کیونکہ وہیں پہ میں سجدہ جو یقین کرے کہ کر،
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
5: اور کربلا میں گئے تھے، نجف میں،
0: نجف میں گئے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
5: آزمین کوفہ میں گئے تھے، سبھی جو ہے نا زیارات کی ہیں، اور
0: خوبصورت زیارت، خوبصورت خوبصورت واقعی۔
5: تو سرکار کی ایک حدیث ہے کہ ذکر امام حسین میں جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل ہی بنائے نا، تو واجبات الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہے کہ
0: جی،
5: میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم
5: فرما رہے ہیں،
0: جی جی جی۔
5: تو ایک اور حدیث ہے جناب رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں رو رہے تھے، تو جناب سلمہ، جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور یہ مجھے کربلا کی
0: بارے بات کر رہے ہیں، جی جی جی،
5: तो ये वाकयात हमारे सामीन को सभी को याद है, लेकिन कोई किसी के मजहब या किसी के कीदे पर जो है ना वो कोई नजर सानी या कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम किसी को ये नहीं कहते कि कोई रोए मातम करे या जंजीर बने करे। देखें हाथ हाथ हमारे हैं, सीना हमारा है, ठीक है, हम अपने आँख से मातम करते हैं, अपने सीने पे मातम करते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि आप मातम करो ना करो, आप रो ना रो, लेकिन हम तो हजरत
0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी जी जी
5: सल्लम ने फरमाया कि मेरे चाचा मीर हमजा की मैयत पर जो रोएगा उस पर भी जन्नत वाजिब है, मैं उस पर राजी हूँ। फिर क्या ऐसी बातों में चले जाऊंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा।
0: जी जी जी जी जी कोई बात नहीं।
5: लेकिन कोई किसी को जो ना माशाल्लाह बंदा खुद अपनी सलाह करे, ठीक है, कोई किसी भी मजहब में है कोई कुछ को रहने रुके।
0: नहीं नहीं, वो अपनी बात कर ले, आप अपनी बात करें, कोई बात नहीं चलो जी जी कोई बात नहीं। वो बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, आप ही प्यारे भाई हैं, वो उनकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, तो कोई बात नहीं। चलो जी कोई
5: जी कुरान जीत में जो लिखा हुआ है कि आप देखते जी तो वही है ना।
0: नहीं नहीं वही बात है। चलो चलो आप क्या हमें सुनाएंगे माशाल्लाह, क्योंकि आपकी जो खूबसूरती है कि आपका जो इल्म है, नॉलेज है माशाल्लाह, और आमी माशाल्लाह बड़े अच्छा लगता है जी जी।
5: मैं देखे कहता हूँ कि कुरान जी का छठा पारा जो है ना सूरह निसा से पढ़ ले, ठीक है, मैं ऑन दी एयर कह रहा हूँ कि शुरू से छठा पारा पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि रोना जो है किसी पर बका करना हम है, लेकिन जिस पर जुल्म किया हो ना, जिस पर जुल्म किया हो उस पर जायज है, ठीक है
0: जी।
5: क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान को सिर्फ पढ़ लेना जो ना वो जरूरी नहीं होता, उसको समझना भी वाजिब।
0: माशाल्लाह जी जी ऐसे ही माशाल्लाह ऐसे जी जी।
5: तो मेरी किसी को अगर बात बुरी
0: नहीं नहीं कोई बात, आपकी अपनी खूबसूरती है, उनकी अपनी खूबसूरती है, हर बंदे की अपनी एक
5: ये बात अच्छी नहीं होती, ठीक है, जो किसी के कीदा अपना अपना, ठीक है, लेकिन किसी की दिल आजारी करना ये
0: ना दिल आजारी कोई कोई नहीं करता, कोई भी करना ना करनी चाहिए, और कोई ना कोई करता है, और उनका अपना एक बयानी है, आप अपना बयानी है माशाल्लाह जी, जी।
5: तो मैं जनाब ये चंद शहर है
0: जी जी जी जी जी माशाल्लाह
5: इमाम ये हाजरी के लिए है मेरा सलाम हुसैन।
0: वाह जी वाह क्या कहें, बहुत खूब।
5: ये हाजरी के लिए है मेरा सलाम हुसैन, मेरे सुखन को अता कीजिए दवाम हुसैन।
0: वाह
5: हुसैन मुझसे है
0: और हुसैन में मुझसे जी। वाह क्या कहने,
5: बता गए हैं मोहम्मद तेरा मकाम हुसैन।
0: माशाल्लाह
5: जो दिल में बुग्ज रखते हैं पाई तन का, जो दिल में बुग्ज रखते हैं पाई तन का, उसके लिए मेरी जुबान मेरी तलवार बेनियाम है हुसैन।
0: वाह
5: करूंगा पहले गुजारिश नबी आखर से, फिर उसके बाद लिखूंगा मैं खत बनामे हुसैन।
0: माशाल्लाह बहुत खूब।
5: और आखिरी शेर है
0: जी जी।
5: मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए अज़ादारी, मैं ले रहा हूँ जमाने से इंतकाम हुसैन।
0: माशाल्लाह क्या कहने,
5: सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, अल्लाह ताला
0: सर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इल्मी गुफ्तगू करते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और हमें अच्छा लगता है। और
5: छोटा सा ताला बिलू मैं ये कहता हूँ कि
0: नहीं नहीं नहीं, वो भी हमारे भाई हैं और आप भी हमारे भाई हैं, देखो वो भी आपसे प्यार करते हैं, हम उनसे आपसे प्यार करते हैं, सब एक दूसरे के प्यार करते हैं, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा, और वो भी आपसे प्यार करते हैं माशाल्लाह, उन्हें हमेशा ही आपके लिए फूल ही भेजे, हमेशा ही आपके लिए जी
5: माशाल्लाह पे है, लेकिन पता क्या होता है मजहब अकीदा अपनी जगह
0: जी, अपनी जगह जी।
5: किसी के मजहब अपना मजहब छोड़ो ना, किसी के मजहब को छेड़ो ना,
0: छेड़े ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा रुखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा हमारे रुखार भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे सुपर स्टार हैं, वन एंड ओनली वन सुपर स्टार, और यहाँ भी वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाए सही ठीक है आपकी?
6: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, और बहुत अच्छा शो एज ऑलवेज।
0: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
6: सारी प्यारी बातें माशाल्लाह,
0: बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, सब आए ना अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: तो मैं कोशिश करता हूँ एक गीत सुनाने।
0: जी जी जी जी, गो हेड।
6: तेरी प्यारी प्यारी सूरत को,
0: वाह क्या कहने,
6: तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू, यू ना अकेले फिरा करो सबकी नजर से डरा करो,
7: यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर पे डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो।
0: वाह क्या कहने,
7: जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे मैं बदू,
0: क्या कहने,
7: तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू,
0: क्या कहने,
7: एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है, देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदूर, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदूर।
0: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सईद एहसान साहब का शुक्रिया अदा करें, और आप उन्होंने आपको वेलकम किया, बड़ा अच्छा लगा, उन्हें को लाइन तो ना मिली है, तो चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपकी बात दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेंदे की शाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
6: थैंक यू वेरी मच,
0: इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा, ये थे हमारे सुपरस्टार वन एंड ओनली वन सुपरस्टार, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और बहुत अच्छा लगा, सुपरस्टार थे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें टाइम दिया और दोबारा आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और इसमें एक मिनट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी फ़ोन किया, उजरा अफजाई किया और आपने सब ने आपकी शायरी को पसंद किया, इंजॉय किया, और चौधरी रुखसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से बड़े प्यारे अंदाज से आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज मुझे दुख हुआ है, मलाल हुआ है, क्योंकि हमें लाइन नहीं मिली है, हमारे मोहतरम नदीम मंसूर साहब को, शकील साहब को लाइन नहीं मिली, राना नबी साहब आपको भी लाइन नहीं मिली है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दिया, और सईद एहसान साहब आपको भी लाइन नहीं मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें दुख हो रहा है, मलाल हो रहा है, और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छा लगा, और हमें आपने हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन डेफिनेटली इंशाल्लाह jal on Wednesday evening between hours of 8 and 11 where we're going to be having a party in the studio as always. Allah Hafiz and Shab Akhair.
8: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
9: From the Sky News Centre at 11. A gangland figure has been charged with directing a criminal organisation hours after landing in Dublin following his extradition from Dubai. Daniel Kinahan has appeared at a special criminal court following his arrest in the UAE in April. He's been remanded in custody and is expected to be held at Ireland's highest security prison. The Prime Minister will spend Parliament's summer recess touring the country in listening mode as he promises action on the cost of living. Andy Burnham says he wants everyday fixes for rising bills. Number 10 says he also wants to see improvements to local high streets. Craig Beaumont from the Federation of Small Businesses outlines what firms need.
10: Increase the small business rates threshold. They've promised it, it's supposed to be there and it hasn't arrived. Something on the cost of employment and one would be on late payments. And if you do those three things, I think you would sweep up a large majority, the 5.7 million small businesses, to saying, yeah, he's done it.
9: Benjamin Netanyahu says he rejects a 15-point plan for Gaza by Donald Trump's Board of Peace. The Israeli Prime Minister also said his military won't make any withdrawal from the Palestinian territory until Hamas fully disarms. Fire crews have been tackling two big blazes in Hampshire tonight. More than 20 fire engines are at Ringwood after a vehicle fire on the side of the A31 spread to Heathland nearby. Crews are also dealing with another fire described as significant in Holbury, where bungalows and vehicles caught alight after flames spread from a hedgerow. In sport, Celtic summer signing Casper Hoog scored his first hat-trick for the Scottish Premiership champions as they thrashed Kilmarnock 5-1. Assistant manager Sean Maloney says Hoog's all-round game was a major factor in today's win.
11: He scored a brilliant hat-trick, but he also a big part of his game was when Kilmarnock went man for man. He had to hold it, and it's something the boss is really, really strong on.
9: Hibs scored late to beat Rangers 2-1, while Hearts eased past Dundee United 4-0, and Sheffield United progressed to the second round of the EFL Cup. That's the latest.